सुप्रभात। मीडियम वेव 303.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्स और FM 100.1 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता है। आज दिन गुरुवार, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 19वीं तिथि, तदनुसार 9 जुलाई सन 2026 है। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:55 हो चुके हैं। प्रारंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा।

ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और जनसंपर्क मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। श्री मोदी मेलबर्न में प्रवासी भारतीयों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम मेलबर्न पहुंचे थे। प्रधानमंत्री ने मेलबर्न में भारतीय समुदाय का गर्मजोशी से स्वागत के लिए आभार व्यक्त करते हुए इसे अविस्मरणीय बताया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वागत समारोह में स्थानीय कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए।
1: सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने एआर रहमान के प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नागेश सिंह ने बताया कि एक दशक में श्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया की तीसरी यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति दर्शाती है। उच्चायुक्त ने कहा कि दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग में वृद्धि भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों की मजबूती और विविधता दर्शाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश में कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकता है। उन्होंने कहा कि एआई के उपयोग से प्रत्येक किसान सालाना लगभग 5,000 रुपए की बचत कर सकता है। नई दिल्ली में कल 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन में डॉक्टर सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य है। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों के लिए तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इससे उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिलेगा और उन्हें बाजार में उतार चढ़ाव की कीमतों से राहत मिलेगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किसानों के हितों की रक्षा और उनका विश्वास बहाल करने के लिए तंबाकू कंपनियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तंबाकू की खरीद प्रक्रिया तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया है। अमरावती में अधिकारियों और व्यापारियों के साथ तंबाकू खरीद की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तंबाकू की कीमत 200 रुपए प्रति किलोग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कंपनियों से नीलामी प्रक्रिया में तेजी लाने का भी निर्देश दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में खुले समुद्र में मत्स्य पालन के लिए प्राधिकरण पत्र जारी करेंगे। श्री राधाकृष्णन ओडिशा डीप सी फिशिंग मिशन दस्तावेज का भी विमोचन करेंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान खुर्दा के 15वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के चालू वर्ष में 7% की वृद्धि दर के अनुमान के साथ भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में अपना स्थान बरकरार रखे हुए है। आईएमएफ द्वारा कल जारी की गई प्रमुख अर्धवार्षिक रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट के अनुसार अगले वर्ष भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 6.4% की मामूली वृद्धि का अनुमान है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सीएसआईआर यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। ये परीक्षा 17 और 18 जुलाई को आयोजित की जाएगी। परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र आधिकारिक वेबसाइट

0: www.csirnet.nta.in पर डाउनलोड कर सकते हैं। अमरीकी सेना ने कहा है कि वह ईरान पर फिर से हवाई हमले कर रही है। ये हमले एक दिन पहले होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान द्वारा जहाजों पर किए गए हमलों के बाद शुरू हुए। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में पहुंचने की संभावना है। वहीं राजधानी दिल्ली में रात से वर्षा जारी है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। कुछ क्षणों में आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।
2: जिंदगी बहुत कीमती है,
3: उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना।
5: नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम,
6: RHL गोल्ड टीम टिसरिया। 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
7: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
1: भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिक चेतना से ओतप्रोत कार्यक्रम वंदना में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। प्रभु का स्मरण मन को शांति, शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। जब भक्ति के स्वर गूंजते हैं तो मन के सारे विकार दूर होने लगते हैं। आइए प्रभु के श्री चरणों में श्रद्धा के पुष्प अर्पित करते हुए आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं।

ईश्वर की आराधना केवल शब्दों से नहीं बल्कि सच्चे मन और निर्मल भाव से होती है। जब हृदय में विश्वास और समर्पण हो, तब जीवन का हर मार्ग सरल प्रतीत होने लगता है।

0: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
1: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
2: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
2: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
2: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
1: For details, log on to www.ddindia.com।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700014242।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
5: जब दिल ने किसी को याद किया हो, जब कोई धुन दिल में उतर गई हो और कभी किसी को सुनाना हो कोई गीत, तो बस आपका अपना कार्यक्रम हेलो फरमाइश लेकर आ रहा है आपके दिल की आवाज, जहां आपके प्यार भरे संदेश और आपके पसंदीदा गीत बनेंगे किसी की मुस्कान। तो उठाइए फोन, कीजिए हमें कॉल हर शनिवार सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0551220-5386 और आप इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं हर रविवार 10:05 पर। हमें रहेगा आपका इंतजार, जहां दिलों की दूरियां गीतों से मिटती हैं।
6: जीवन के व्यस्तताओं के

ईश्वर हमारा सब प्रकार से मंगल करें, इसी भावना के साथ आज का वंदना कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए

0: समर्पण का स्वरूप क्या होना चाहिए प्रायः हम इसे समझ नहीं पाते, और मुझे लगता है हनुमान जी की कथा, राम जी की कथाएं हम श्रवण करते रहते हैं तो हनुमान जी के जीवन चरित्र में एक दर्शन मिलता है कि एक बार हनुमान जी महाराज अयोध्या में राघवेंद्र सरकार के सभा में विराजमान थे और राघवेंद्र सरकार हनुमान जी की तरफ देख रहे थे, और जब हनुमान जी राम जी की तरफ देखते तो हनुमान जी को देखता हुआ देख करके राम जी के नेत्र दूसरी तरफ मुड़ जाते। यह घटना कई दिनों से माता जानकी जी देख रही थीं। एक दिन अंतःपुर में उन्होंने पूछा प्रभु से कि क्या कारण है कि आप हनुमान जी को देखते हो और हनुमान जी जब आपकी तरफ देखते हैं तो आप अपनी नज़र क्यों फेर लेते हो। तो राघवेंद्र सरकार ने कहा उसका इतना ऋण है कि आज तक जीवन में उसने इतने बड़े बड़े काम किए और मेरे लिए किए, फिर भी उसने जीवन में कोई अपेक्षा नहीं रखी, तो मैं सोचता हूँ कि मैंने उसे कुछ नहीं दिया जिसने मेरे लिए सब कुछ किया। तो जानकी जी ने कहा तो आप उनसे कहिए कि क्या चाहिए आपको। तो राघवेंद्र सरकार ने कहा मैं कई बार पूछा और हनुमान ने कहा कि मेरे समर्पण को द्रव्य से तौलने की चाहे पद से तौलने की आवश्यकता नहीं, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे अंतर मन में यह भाव बार बार उदित होता है कि मुझे हनुमान को कुछ देना चाहिए। तो जानकी जी ने कहा जब वह कुछ नहीं लेते, चाहे आप कुछ नहीं दे पा रहे हो, तो एक सरल सहज उपाय है कि एक पत्र में आप कह दो, लिख दो कि हनुमान मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सकता। अगले दिन सभा लगी, फिर प्रभु आसन पर विराजमान हुए और एक पत्र जानकी जी का कहा मान करके और एक पत्र में उन्होंने लिखा कि हनुमान तुम्हारे ऋण से मैं कभी उऋण नहीं हो सकता। हनुमान जी आए, हनुमान जी के हाथ में उन्होंने धीरे से वह पत्र दे दिया। हनुमान जी ने पढ़ा कि मैं तुम्हारे ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता, तो हनुमान जी के नेत्र सजल हो गए और हनुमान जी ने कहा प्रभु देखिए आपकी कृपा मेरे समर्पण के दिव्यता को और श्रेष्ठ कर देता है कि प्रभु आप कहते हो कि हनुमान तुम्हारे कारण ही सुग्रीव को किष्किंधा का साम्राज्य मिला और विभीषण को लंका का साम्राज्य मिला, और दूसरे की बात छोड़ दो मुझे अयोध्या का राज्य भी तुम्हारे कारण मिला, लेकिन प्रभु अयोध्या का राज्य, किष्किंधा का राज्य, चाहे लंका का एक एक राज्य, एक एक पद प्राप्त हुआ, लेकिन नाथ पूर्ण समर्पण का भाव और आपके प्रति समर्पण का भाव मेरा था कि आप मुझे प्राप्त हो गए। कहने का आशय इस हनुमत चरित्र का मात्र इतना है कि जब आपका समर्पण शुद्ध होगा, जीवन में किसी के प्रति, किसी कार्य के प्रति अगर समर्पित हैं आप, समर्पण है, तो निश्चित है उस समर्पण का फल आपको प्राप्त होगा। अगर समर्पण में अशुद्धि है तो आप कोई कार्य कर रहे हो, पूर्ण समर्पित नहीं हो, तो आपको वह फल प्राप्त नहीं हो सकता जिस फल की आप कामना कर रहे हो। बिना मांगे हनुमान जी को जो प्राप्त हुआ, केवल एक समर्पित भक्त के कारण हनुमान जी महाराज चतुर्दिक पूज्य हुए, और मुझे लगता है कि संपूर्ण विश्व में हनुमान जी महाराज की पूजा इसलिए होती है कि जिन्होंने केवल रामानास्ति परायणम परतरम रामस्य दासोस्मी हम रामे चित्तलदम सदा भूत मे भो राम मामुद्र, जिन्होंने राम के अलावा कुछ समझा ही नहीं, इतना समर्पण, इतना अद्भुत समर्पण। अगर ऐसा ही हमारे जीवन में भी समर्पण का भाव बने तो मुझे लगता है कि हमारा भी जीवन उस जीवन में वो प्राप्त हो सकता है कि जिसकी हम अपेक्षा करते हैं। तो सबसे पहले हम विचार करें कि जिस कार्य के प्रति, चाहे जिस संबंधों के प्रति, जिससे हम कुछ अपेक्षा रखे हुए हैं, क्या हमारा समर्पण दिव्य है, क्या हम पूर्ण रूप से समर्पित हैं कि नहीं है। आज पूर्ण समर्पण का ही देन है कि राघवेंद्र सरकार हनुमान जी महाराज से पूछते हैं कि तुम्हें बताओ क्या चाहिए। यह समर्पण का स्वरूप अद्भुत हनुमान जी के चरित्र से आपको प्राप्त होता है। तो जीवन में समर्पण का स्वरूप दिव्य रखिए, निश्चित है जो आप चाहते हैं आपको प्राप्त होगा।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन बिंदु, ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं आज प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों के विवरण। रामचरितमानस से संगीत में पाठ का समय होगा प्रातः 6:40 पर।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम पूर्वा सुहानी प्रसारित होगा 7:31 पर। इसके अतिरिक्त आप फिल्म संगीत के कार्यक्रमों का आनंद ले सकते हैं 8:45 पर, 12:23 सायं 7:31 पर। इसके साथ ही फेसबुक कमेंट पर आधारित फरमाइशी फिल्मी संगीत का कार्यक्रम गाते गुनगुनाते आप सुनेंगे 10:05 पर।

लोकगीतों का समय होगा प्रातः 11:05 पर और सायं 6:45 पर। सुगम संगीत का आप आनंद लेंगे प्रातः 9:50 और अपराह्न 12:50 पर।

उर्दू कार्यक्रम सुनेंगे आप दोपहर 1:15 पर। खेती किसानी का कार्यक्रम होगा 1:50 पर, जिसमें आप सुनेंगे भेंट वार्ता। विषय होगा अरहर की प्रजातियां और बुआई विधि। बातचीत करेंगे डॉक्टर अंगद प्रसाद से विनय कुमार।

युवा साथियों के कार्यक्रम युवाणी का समय है सायं 5:35 पर आप सुनेंगे घर आंगन और 6:10 का समय होगा कार्यक्रम खेती बारी का। हिंदी कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 8:00। ये थे आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रम।

निषाद राज के साथ भरत प्रयाग के मार्ग पर अग्रसर हैं। उन स्थानों को देखकर उनका मन परिताप से भर उठता है जहां कभी श्रीराम ने रात्रि विश्राम किया था। कुशों की साथरी और सोने के उन कणों को देख जो सीता जी के वस्त्राभूषणों से गिर पड़े होंगे, भरत विचलित हो जाते हैं। जिन सुकुमारी के श्वसुर महाराज दशरथ थे, जिनके पिता योग तथा भोग दोनों के स्वामी राजा जनक हैं, उन पतिव्रता शिरोमणि सीता जी का ऐसा बिछावन देख किसका हृदय नहीं फट जाएगा। कोमल स्वभाव तथा स्वामी भक्ति की प्रतिमूर्ति लक्ष्मण सरीखे छोटे भाई वन में न जाने किन विपत्तियों का सामना कर रहे होंगे। स्वयं श्रीराम जो शील सुख और समस्त गुणों के सागर हैं, कुशा बिछाकर पृथ्वी पर सोते हैं। भरत का परिताप इस सोच से और भी गहरा हो जाता है कि अपनी आंखों से ये सब कुछ देखकर भी उनकी छाती क्यों नहीं फट जाती। हे शंकर, क्या उनका हृदय वज्र से भी अधिक कठोर हो गया है?

0: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
1: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
0: करिए अपने मनपसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
1: प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
0: गाने के बोल,
1: गीतकार
0: और संगीतकार,
1: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
0: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
1: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास।
0: गाते गाते
1: गुनगुनाते सुनिए सुबह 10:05 पर।
0: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से अब होगा आपका अपना कार्यक्रम हेलो फरमाइश सप्ताह के सातों दिन यानी हर सुबह 10:05 पर और रिकॉर्डिंग रोजाना सुबह 11 से 12 तक हमारे टेलीफोन नंबर 0551225386 पर कॉल कीजिए और सुनिए अपनी पसंद के गीत सात के सातों दिन सिर्फ आकाशवाणी गोरखपुर से हमारे कार्यक्रम हेलो फरमाइश में। हेलो फरमाइश हर सुबह 10:05 पर।
1: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।

0: स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
2: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
3: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
3: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
3: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
2: For details, log on to www.ddindia.com।
4: आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे क्रमशः संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
5: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः।

0: यात्रा के दौरान मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी आधिकारिक मंच को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापारिक साझेदारियों को हमें ऊंचाइयों पर ले जाना है।
1: भारत आपके फंड्स को सेफ, स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका ट्रस्ट भी बढ़े और आपका कैपिटल भी बढ़े। एजुकेशन और स्किल्स में दोनों देशों के बीच नेचुरल सिनर्जी है। डिकिन यूनिवर्सिटी और वुलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने कीप सिटी में कैंपस खोलकर एक नया अध्याय शुरू किया। यह भारत के प्रति उनके कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब है। हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्टूडेंट मोबिलिटी को टैलेंट पार्टनरशिप में बदले।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से बातचीत करेंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, शिक्षा और जनसंपर्क को मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री ने मेलबर्न में भारतीय समुदाय को गर्मजोशी से स्वागत के लिए उनका आभार व्यक्त करते हुए इसे अविस्मरणीय बताया। ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नागेश सिंह ने कहा कि एक दशक में श्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया की तीसरी यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में हुई महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाती है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ष 2026 के दौरान इसकी 7% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। IMF ने यह भी अनुमान जताया है कि अगले वर्ष में भारत की GDP वृद्धि दर कुछ घटकर 6.4% रह सकती है। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इससे उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिलेगा और उन्हें बाजार में उतार चढ़ाव की कीमतों से राहत भी मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक नकदी रहित चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत 15 लाख से अधिक शिक्षण कर्मचारियों को 5 लाख रुपए तक का चिकित्सा उपचार मिलेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश में कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकता है। नई दिल्ली में 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन में डॉक्टर सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में खुले समुद्र में मत्स्य पालन के लिए प्राधिकरण पत्र जारी करेंगे। श्री राधाकृष्णन ओडिशा डीप सी फिशिंग मिशन दस्तावेज का भी विमोचन करेंगे और इसके बाद उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान खुर्दा के 15वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। अमरीका ने ईरान पर फिर हवाई हमले किए हैं। ये हमले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के फिर से किए गए हमलों को दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की समाप्ति के बाद किए गए हैं। केरलम के 5 उत्तरी जिलों में कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत जिलों में अगले 36 घंटों के दौरान तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं राजधानी दिल्ली में रात से ही लगातार बारिश हो रही है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का 4th मुकाबला आज ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। इससे पहले 3rd मैच में भारत को इंग्लैंड से 125 रन से हार का सामना करना पड़ा था। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi will hold talks with his Australian counterpart Anthony

0: कली कली।
1: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
2: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
1: करिए अपने मनपसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
2: प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
1: गाने के बोल,
2: गीतकार
1: और संगीतकार
2: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
1: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
2: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास। गाते
1: गुनगुनाते
2: सुनिए सुबह 10:05 पर।
1: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।
3: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये मारा। डॉलकर ही नहीं, किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।

अभी आप सुन रहे थे देश गान, आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे केंद्र से।

0: चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का किया शुभारंभ। विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म और स्टेशनरी के लिए जारी किए 1,320 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री ने चित्रकूट में 951 करोड़ रुपए की 124 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, इको टूरिज्म का नया केंद्र बन रहा है चित्रकूट। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता के मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी। 3 आरोपियों को रिमांड पर लेकर की गई पूछताछ। और

0: वाराणसी हवाई अड्डे के नए टर्मिनल पर बनाया जा रहा है देश का पहला 6 लेन वाला अंडरपास। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया। इस योजना से प्रदेश के 12 लाख शिक्षक, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों और उनके आश्रितों को स्वास्थ्य सुरक्षा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने 1,10,00,000 विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, स्वेटर, स्कूल बैग और स्टेशनरी के लिए अभिभावकों के खाते में करीब 1,320 करोड़ रुपए की धनराशि का अंतरण भी किया। इस अवसर पर 10 लाख शिक्षकों और संविदा कर्मियों को सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ एमओयू किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां इस योजना को लागू किया गया है।
1: हर एक शिक्षक को भी, शिक्षा मित्र को भी और अनुदेशक को भी एक नई गारंटी दी जा रही है, जिसमें अस्थाई शिक्षक और कार्मिकों को जिनका वेतन 10,000 रुपए से अधिक है उन्हें 10 लाख का ग्रुप टर्म इंश्योरेंस कवर, जिसमें 1 करोड़ का पर्सनल एक्सीडेंट कवर, 1 करोड़ का स्थायी दिव्यांगता कवर, 1.6 करोड़ का ईयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर के साथ ही किसी अनहोनी की दिशा में शिक्षक या कार्मिक के बच्चों की शिक्षा और पुत्रियों के विवाह के लिए भी एड ऑन कवर इसमें प्रदान किया जाएगा। यह एक नई सामाजिक सुरक्षा की गारंटी मिली है।
0: प्रदेश के अन्य जिलों में भी मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के शुभारंभ के मौके पर कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। इस अवसर पर सिद्धार्थनगर जिले में आयोजित कार्यक्रम को डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल ने संबोधित किया। श्री पाल ने कहा कि प्रदेश सरकार की इस पहल से शिक्षकों की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हुई है। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश के लाखों परिवारों को लाभ होगा। मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के लिए आभार जताते हुए जौनपुर के शिक्षक राजेश पांडे ने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस योजना के माध्यम से शिक्षकों को बड़ी सौगात दी है।
2: उत्तर प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए समस्त शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा योजना की जो शुरुआत की है, यह बहुत ही सराहनीय पहल है। इसके लिए पूरे शिक्षा विभाग की तरफ से सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। यह योजना लाखों लाख शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के चिकित्सा संबंधी समस्याओं और उनकी चिंताओं का समाधान करेगा।
0: वाराणसी के बाद मुख्यमंत्री ने मिर्जापुर में पहुंचकर माँ विंध्यवासिनी देवी का दर्शन पूजन किया और विंध्य कॉरिडोर का निरीक्षण किया। श्री योगी ने विंध्य मंडल के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास परियोजनाओं से संबंधित सभी प्रस्ताव 15 जुलाई तक शासन को भेज दिए जाएं। श्री योगी ने कहा कि 15 अगस्त तक स्वीकृत योजनाओं के लिए धनराशि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल चित्रकूट में 951 करोड़ रुपए की लागत वाली 124 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार समाज के हर वर्ग के विकास के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि चित्रकूट में अब निवेश आ रहा है, जिससे जनपद के विकास को गति मिल रही है।
3: अब निवेश यहाँ भी आ रहा है, क्योंकि अब भय नहीं है, अब तो निवेश का वातावरण है। 4 लेन की सड़कें हैं, एक सुंदर चित्रकूट हम सबके सामने है और वह आज हम सबको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आज तो यहाँ पे हम लोग एक पर्यटन के नए केंद्र के रूप में, यानी ये आध्यात्मिक टूरिज्म तो था ही, अब इको टूरिज्म के भी एक नए केंद्र के रूप में इसको विकसित करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे रानीपुर टाइगर रिजर्व को भी यहाँ पे के लिए आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया है।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता मामले की जांच कर रही पुलिस टीम ने कल 3 आरोपियों अनुकल्प मिश्रा, लोकुश मिश्रा और

0: परवेश पांडे को रिमांड पर लेकर पूछताछ की। पुलिस तीनों आरोपियों को लेकर 14 कोसी परिक्रमा मार्ग भी पहुंची। वहीं श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी से कल कई साधु संतों ने मुलाकात की। मुलाकात के बाद महंत राजकुमार दास ने कहा कि आगामी दिनों में ट्रस्ट में बड़े परिवर्तन होंगे, जिसकी जानकारी जल्द ही ट्रस्ट द्वारा साझा की जाएगी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा है कि वाराणसी हवाई अड्डे के नए टर्मिनल पर देश का पहला 6 लेन वाला अंडरपास बनाया जा रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में कल उन्होंने बताया कि 450 मीटर लंबा यह अंडरपास देश की अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। वहां ऊपर विमानों के संचालन के दौरान नीचे सड़क यातायात सुचारू रूप से चल सकेगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में लखनऊ स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय का कल 11वां दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद डॉ. सुधांशु त्रिवेदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह में 1246 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गईं। इस अवसर पर अपने संबोधन में राज्यपाल ने भाषा विश्वविद्यालय में शुरू होने जा रहे नए कोर्सेज के बारे में चर्चा की।
1: ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय में पूर्व से संचालित भाषाओं के साथ साथ अब जर्मन, जापानी और चीनी जैसी अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं का अध्ययन प्रारंभ किया जा रहा है। यह पहल विद्यार्थियों के लिए विश्व के ज्ञान द्वार खोलने के साथ साथ उन्हें वैश्विक अवसरों से भी जोड़ेगी। इसके साथ ही अवधि भाषा में स्नातक पाठ्यक्रम प्रारंभ करने का प्रयास विशेष रूप से अभिनंदनीय है।
0: प्रदेश में 12 जुलाई को होने वाले पौधरोपण महाभियान को लेकर वन विभाग ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस अभियान के तहत 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए प्रदेश की 2600 से अधिक नर्सरियों में 57,62,00,000 पौधे तैयार किए गए हैं। प्रयागराज पहुंचे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार के प्रयासों से प्रदेश के वन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वृद्धि हुई है।
2: पूरी दुनिया इस समय ग्लोबल वार्मिंग के संकट से जूझ रही और इस बार 35 करोड़ जब हमारे यहाँ पेड़ लग जाएंगे, जब से 9 साल में हम लोग 275 करोड़ पेड़ लगाने का रिकॉर्ड, 35 करोड़ का इस बार का लक्ष्य है, उससे ज्यादा ही लगते हैं जितना लक्ष्य होता है, तो यह हम लगाने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है, वन आच्छादन का जो क्षेत्र है वो घटा नहीं, वो बढ़ा है।
0: राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई अन्य जिलों में कल हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी। वहीं गोरखपुर सहित कई पूर्वी जिलों में हल्की बूंदाबांदी का क्रम जारी है। इस अंचल में हल्की हवाओं के चलने के बावजूद उमस का असर कायम है। इस बीच मौसम विभाग ने 3 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का किया शुभारंभ। विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म और स्टेशनरी के लिए जारी किए 1,320 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री ने चित्रकूट में 951 करोड़ रुपए की 124 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, इको टूरिज्म का नया केंद्र बन रहा है चित्रकूट। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता के मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी। 3 आरोपियों को रिमांड पर लेकर की गई पूछताछ। और वाराणसी हवाई अड्डे के नए टर्मिनल पर बनाया जा रहा है देश का पहला 6 लेन वाला अंडरपास। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
4: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
5: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार हमारे केंद्र से, आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम पूर्वा सुहानी।

की तरह मेरा भी एक सुंदर साजन था। उसकी आंखों में नशा, बाजू में ताकत और दिल में हिम्मत थी। बिजली की तरह नाचता हुआ वो मेरे पास आता था, गाता था, नाचता था।

ये गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और आरडी बर्मन के स्वर में, बोल थे गुलशन बावरा के। कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं फिल्म पहचान से।

मुकेश की आवाज़ में आप सुन रहे हैं फिल्म पहचान से, गीत संगीत है शंकर जयकिशन का, बोल नीरज के।

0: कश्मीर की कली फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। संगीत था ओपी नैयर का और बोल थे एसएस बिहारी के।
1: गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली कली।
2: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
3: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
2: करिए अपने मनपसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
3: प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
2: गाने के बोल,
3: गीतकार
2: और संगीतकार
3: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
2: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
3: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास। गाते
2: गाते
3: गुनगुनाते सुनिए सुबह 10:05 पर।
2: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।

अनामिका फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में, संगीत आर डी बर्मन का और बोल थे मजरू सुल्तानपुरी के।

0: इस गीत के साथ ही पूर्वाश्वानी कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, अनिश्चितता सप्लाई चेन में रुकावट

0: संकट और ऊर्जा संकट वाले दौर में भारत और ऑस्ट्रेलिया का भरोसेमंद साझेदार के तौर पर आगे बढ़ना स्वाभाविक और जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता करेंगे। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किसानों के हित में खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना शुरू की। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2026 में 7% की विकास दर रहने का अनुमान जताया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्ध विराम खत्म होने की घोषणा के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हमले किए और भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर इतिहास रचा। पिछले 36 वर्षों में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने आज सुबह मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भाग लिया। दोनों नेताओं ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के उद्योग जगत के प्रमुखों से भी मुलाकात की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अनिश्चितता, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और ऊर्जा संकट के दौर से गुजर रहा है। ऐसे समय में भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए स्वाभाविक और विश्वसनीय साझेदार के रूप में आगे बढ़ना स्वाभाविक है और आवश्यक भी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों ने अपनी शक्तियों का लाभ उठाते हुए भविष्य की साझेदारी के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 में रिकॉर्ड समय में संपन्न हुए आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से दोनों देशों के आर्थिक संबंधों में मजबूती आई है।
1: साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है। अब हम व्यापक सीका समझौता करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन प्रयासों से दोनों देशों की सरकारों ने एक नया रनवे तैयार किया है। अब इस पर इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन का विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने विनिर्माण, स्वच्छ ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, खनन, अवसंरचना, शहरी विकास, विमानन, रसद, उन्नत प्रौद्योगिकी, एआई, खाद्य प्रसंस्करण और डिजिटल अर्थव्यवस्था क्षेत्रों में भारत में उपलब्ध विशाल अवसरों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के निवेशकों को भारत में दीर्घकालिक निवेश के अवसरों का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया।
1: भारत आपके फंड्स को सेफ, स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका ट्रस्ट भी बढ़े और आपका कैपिटल भी बढ़े। एजुकेशन और स्किल्स दोनों देशों के बीच नेचुरल सिनर्जी है। डिकिन यूनिवर्सिटी और वुलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने किप सिटी में कैंपस खोलकर एक नया अध्याय शुरू किया। यह भारत के प्रति उनके कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब है। हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्टूडेंट मोबिलिटी को टैलेंट पार्टनरशिप में बदले।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से बातचीत करेंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, शिक्षा और जनसंपर्क मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। श्री मोदी मेलबर्न में प्रवासी भारतीयों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम मेलबर्न पहुंचे थे। ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नागेश सिंह ने कहा है कि एक दशक में श्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया की तीसरी यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में हुई महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाती है।
2: तीसरा एनुअल लीडर्स समिट भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, इस वर्ष और पिछले सालों में जो आपने देखा कि जो एक पूरे विश्व में एक हल्का सा तनाव है, चाहे युद्ध का है, जो डिस्प्यूट्स है, जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, उस संदर्भ में इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है हमारी रिलेशनशिप को उस क्षेत्र में जिसको हम लोग इंडो पैसिफिक बोलते हैं।
0: ये समाचार

0: आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इससे उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिलेगा और उन्हें बाजार में उतार चढ़ाव की कीमतों से राहत मिलेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि स्वीकृत खरीद का कुल MSP मूल्य 1,000 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना MIS के तहत इस वर्ष तमिलनाडु में 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आमों की खरीद को भी मंजूरी मिल गई है। यह खरीद MIS के तहत की जाएगी, जिसमें बाजार हस्तक्षेप मूल्य 1,000 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक निर्धारित किया गया है। अनुपम मिश्र के साथ सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किसानों के हितों की रक्षा और उनका विश्वास बहाल करने के लिए तंबाकू कंपनियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तंबाकू की खरीद प्रक्रिया तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया है। अमरावती स्थित सचिवालय में अधिकारियों और व्यापारियों के साथ तंबाकू खरीद की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तंबाकू की कीमत 200 रुपये प्रति किलोग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कंपनियों से नीलामी प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक नकदी रहित चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत 15 लाख से अधिक शिक्षण कर्मचारियों को 5 लाख रुपए तक का चिकित्सा उपचार मिलेगा। और ब्यौरे के साथ हैं हमारे संवाददाता।
3: इस योजना के तहत राज्य भर के शिक्षकों और उनके परिवारों को 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से जुड़े लगभग 15 लाख शिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारी इस योजना से लाभान्वित होंगे। नियमित शिक्षकों के अलावा इस योजना से शिक्षा मित्रों, प्रशिक्षकों, रसोइयों और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के पात्र कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। शिक्षकों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने शिक्षकों के स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा करने के अपने वायदे को पूरा किया है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए ये व्यापक सामाजिक सुरक्षा और बीमा कार्यक्रम देश में अपनी तरह की पहली पहल है। इस योजना के तहत 10,000 रुपए से ज्यादा मासिक वेतन पाने वाले संविदा कर्मचारियों को 30 लाख रुपए से 80 लाख रुपए तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ष 2026 के दौरान इसकी 7% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। IMF ने यह भी अनुमान जताया है कि अगले वर्ष में भारत की GDP वृद्धि दर कुछ घटकर 6.4% रह सकती है। अमरीका ने ईरान पर फिर हवाई हमले किए हैं। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर हमला करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि अमरीकी हमले जवाबी कार्रवाई में किए गए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने फिर हमले किए तो अमरीका इसका और कड़ा जवाब देगा। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल तथा हिमालय के निचले इलाकों, सिक्किम और पश्चिम उत्तर प्रदेश में दिन में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया।

0: रात से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। केरलम के 5 उत्तरी जिलों में कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों में येलो अलर्ट पहले से ही जारी है। इन जिलों में कल रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में लड़कों के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। पिछले 36 वर्षों में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले वे भारत के पहले खिलाड़ी हैं। 18 वर्षीय पापरकर ने प्री क्वार्टर फाइनल में जापान के रियो ताबाता को मात्र 52 मिनट में 6-2, 6-1 से हराया। पापरकर का अगला मुकाबला आज शाम 5 बजे क्वार्टर फाइनल में अमरीका के जॉर्डन ली से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों ने ईरान अमेरिका युद्ध विराम खत्म होने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान और बारिश के चलते देश में प्रभावित जनजीवन के समाचारों को सुर्खियों में जगह दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया यात्रा का समाचार भी कई अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने इंडोनेशिया के प्रम्बानन मंदिर में पूजा अर्चना करते प्रधानमंत्री का चित्र सबसे ऊपर छापा है। खबर को शीर्षक दिया है इंडोनेशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर में मोदी ने की पूजा। वीर अर्जुन ने इस खबर को प्रधानमंत्री के इस बयान के साथ प्रकाशित किया है कि सांस्कृतिक विरासत हमें जोड़ती है। देश बंधु की सुर्खी है इंडोनेशिया के सबसे बड़े शिव मंदिर में पहुंचे मोदी। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय से स्वागत स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री का चित्र भी कुछ अखबारों ने प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय में दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत के ढहने के समाचार को देश भर में भवन निर्माण संबंधी अनियमितताओं के मामले से जुड़ी स्थिति का विश्लेषण प्रकाशित किया है। पत्र का कहना है कि नियमों का उल्लंघन कर लोग 5 से 6 मंजिला भवन बना रहे हैं। स्थिति को सुधारने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए ताकि ऐसी अप्रिय घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। लोकसत्य ने नौकरी पेशा पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी शीर्षक से पीएफ खाते में 8.25% की दर से ब्याज देने की सरकार की घोषणा को प्रकाशित किया है।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा अनिश्चितता, सप्लाई चेन में रुकावट और ऊर्जा संकट वाले दौर में भारत और ऑस्ट्रेलिया का भरोसेमंद साझेदार के तौर पर आगे बढ़ना स्वाभाविक और जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता करेंगे। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किसानों के हित में खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्ध विराम खत्म होने की घोषणा के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हमले किए और भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर रचा है इतिहास। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेसेस इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीईओज फोरम इन मेलबर्न, सेज इट इज नेचुरल एंड एसेंशियल फॉर इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया टू मूव फॉरवर्ड एज ट्रस्टेड पार्टनर्स इन अ वर्ल्ड मार्क्ड बाय अनसर्टेनिटी, सप्लाई चेन डिसरप्शंस एंड एनर्जी क्राइसिस। Prime Minister Modi to also hold talks with his Australian counterpart Anthony Albanese in Melbourne today. Centre approves procurement of Khopra and Totapuri mangoes from farmers in Tamil Nadu to safeguard farmers' interests. Uttar Pradesh government launches cashless health scheme for teachers as well as non-teaching staff in the state. IMF projects India to remain world's fastest growing major economy with 7% growth this year. US launches new strikes on Iran after President Donald Trump said ceasefire is over. And India's Arnav Papadkar creates history by becoming first Indian in 36 years to reach boys singles quarterfinals at Wimbledon Juniors 2026. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and his Australian counterpart Anthony Albanese participated in the India-Australia CEO Forum in Melbourne this morning. Both leaders also

0: met the leading business leaders from India and Australia. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi said the world is currently navigating a period marked by uncertainty, supply chain disruptions and energy crisis. He said that in such times, it is both natural and essential for India and Australia to move forward as natural and trusted partners. The Prime Minister further said economic cooperation and trade agreement concluded in record time in 2022 has further strengthened the economic ties between the two countries.
1: साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एकता समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है। अब हम व्यापक सी का समझौता करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन प्रयासों से दोनों देशों की सरकारों ने एक नया रनवे तैयार किया है। अब इस पर इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन का विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है।
0: Prime Minister Modi also noted the complementarities between the Indian and Australian economies, underlining vast opportunities available in India across a number of sectors.
1: हमारी पार्टनरशिप केवल दोनों राजधानियों या कुछ शहरों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। हमें हमारे राज्यों, छोटे बड़े शहरों, विश्वविद्यालयों, उद्योगों सभी के स्टेक होल्डर्स बनाना होगा। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की क्रिटिकल मिनरल स्ट्रेंथ, उसको हम उड़ीसा और गुजरात की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी के साथ जोड़ सकते हैं। क्वींसलैंड और टेस्मेनिया की क्लीन एनर्जी और एग्रीकल्चर एक्सपर्टीज, पंजाब और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के रिन्यूएबल कॉरिडोर्स और फूड प्रोसेसिंग इकोसिस्टम को नई गति दे सकते हैं।
0: Mr. Modi invited Australian investors to take advantage of opportunities for long-term investments in the country and also welcomed the growing presence of Australian universities in India.
1: भारत आपके फंड्स को सेफ, स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका ट्रस्ट भी बढ़े और आपका कैपिटल भी बढ़े। एजुकेशन और स्किल्स दोनों देशों के बीच नेचुरल सिनर्जी है। डिकिन यूनिवर्सिटी और वुलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने कीप सिटी में कैंपस खोलकर एक नया अध्याय शुरू किया। यह भारत के प्रति उनके कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब है। हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्टूडेंट मोबिलिटी को टैलेंट पार्टनरशिप में बदले।
0: Following the CEO's forum, Prime Minister Modi also addressed the Economic Roadmap Business Event, a large gathering of over 200 CEOs and business leaders from both sides. Speaking about natural synergies between India and Australia, he highlighted that shared democratic values, a common vision for the Indo-Pacific, vibrant people-to-people ties and strong political understanding created fertile ground for the business partnership between the two countries to grow and prosper together.
1: लोकतांत्रिक मूल्यों और इंडो पैसिफिक साझा विजन के आधार पर हमारे बीच गहरा स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस बना है। हम अपनी बिजनेस पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रयास में आप सभी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है कि आज का ये संवाद नए आइडियाज, नई पार्टनरशिप और नए कमिटमेंट्स को जन्म देगा।
0: Now we go over to our Melbourne correspondent who is sharing more details on the Prime Minister's visit.
2: The India-Australia CEOs Forum marked a decisive shift from parallel diplomatic tracks to an integrated, future-proof economic engine. Prime Minister Modi signaled a new era of decentralized economic diplomacy, calling for direct state-to-state corridors that link Australia's raw resources directly with India's massive clean energy, chip manufacturing and digital infrastructure pipelines. Echoing this vision, Prime Minister Albanese mapped out massive capital commitments, anchored by Australian super's multi-billion dollar investments, unprecedented higher education partnerships and landmark industrial projects like the Perdaman plant. Together, both leaders made it clear that while policy sets the runway, it is a direct synergy of our corporate titans and the unstoppable aspiration of 1 million strong diaspora that will pilot this relationship to its $100 billion target. Suhas Ram, Akashwani News, Melbourne.
0: Moreover, Prime Minister Modi will hold talks with his Australian counterpart Anthony Albanese in Melbourne later today. Discussions between the two leaders are expected to focus on strengthening cooperation in trade, defence, critical technologies, education and people-to-people ties. Mr. Modi arrived in Melbourne yesterday.

0: उनकी है और वो 36 साल में ऐसे पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं जो लड़कों के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सुबह मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के अपने हमनसब एंथोनी अल्बनीज के साथ भारत ऑस्ट्रेलिया के सीओज फोरम और इक्तसादी रोडमैप बिजनेस रिसेप्शन में शिरकत की। दोनों रहनुमाओं ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के सरकर्दा कारोबारी रहनुमाओं से भी मुलाकात की। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया इस वक्त एक गैर यकीनी सूरत हाल से दोचार है, सप्लाई चेन में रुकावट के अलावा तवानाई के बहरान से भी दोचार है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ऐसे वक्त में ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए फितरी और लाजमी है कि वो एक भरोसेमंद शराकतदारों की हैसियत से आगे बढ़ें। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि माशी ताउन और तिजारती समझौता 2022 में एक रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल हुआ और इससे दोनों मुल्कों के दरमियान माशी ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम हुए हैं।
1: साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है। अब हम व्यापक सीका समझौता करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन प्रयासों से दोनों देशों की सरकारों ने एक नया रनवे तैयार किया है। अब इस पर इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन का विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बहुत से शोबों में भारत में दस्तियाब वसी मौके का जिक्र करते हुए भारत और ऑस्ट्रेलिया की मईशतों के दरमियान तकमील को भी वाज़े किया।
1: न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया की फाइनेंस, एजुकेशन, मेडिकल टेक और इनोवेशन इकोसिस्टम, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना के साथ मिलकर ग्लोबल सॉल्यूशंस बना सकते हैं। साउथ ऑस्ट्रेलिया की डिफेंस, स्पेस और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी उत्तर प्रदेश और केरलम के साथ नए अवसर बना सकते। मेरा सुझाव है कि हम आने वाले समय में कुछ फोकस स्टेट टू स्टेट और सेक्टर टू सेक्टर पार्टनरशिप की पहचान करें और उन्हें आगे ले जाने के लिए रणनीति बनाए।
0: जनाब मोदी ने मुल्क में तवील मुद्दती सरमायाकारी के लिए मौके का फायदा उठाने की गरज से ऑस्ट्रेलिया के सरमायाकारों को मदद किया और साथ ही साथ भारत में ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटियों की बढ़ती हुई मौजूदगी का भी खैर मकदम किया।
1: भारत आपके फंड्स को सेफ, स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका ट्रस्ट भी बढ़े और आपका कैपिटल भी बढ़े। एजुकेशन और स्किल्स दोनों देशों के बीच नेचुरल सिनर्जी है। डिकिन यूनिवर्सिटी और वुलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने किप सिटी में कैंपस खोलकर एक नया अध्याय शुरू किया। यह भारत के प्रति उनके कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब है। हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्टूडेंट मोबिलिटी को टैलेंट पार्टनरशिप में बदले।
0: सीओज फोरम के बाद वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इक्तसादी रोडमैप बिजनेस से मुतालिक तकरीब से भी खिताब किया जिसमें दोनों मुल्कों के 200 से ज्यादा सीओज और कारोबारी रहनुमाओं ने शिरकत की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान फितरी तालमेल के बारे में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने इस बात को उजागर किया कि मुश्तरका जमहूरी कदरें भारत बहरुल काहिल के लिए एक मुश्तरका विजन, अवाम से अवाम के दरमियान वसी ताल्लुकात और मजबूत सियासी मफाहमत ने दोनों मुल्कों के दरमियान कारोबारी शराकतदारी के लिए एक जबरदस्त बुनियाद की राह हमवार की है जिससे दोनों मुल्क मिलकर आगे बढ़ेंगे और खुशहाली लाएंगे। अब हम मेलबर्न में अपने नामानिगार के पास चलते हैं जो वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के बारे में मजीद तफसील से आगाह कर रहे हैं।
2: भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम ने मुतबादिल सिफारती रास्तों से हटकर एक मजबूत मुस्तकबिल के लिए महफूज इक्तिसादी इंजन की तरफ एक फैसलाकुन तब्दीली की निशानदेही की है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने लामरकजी इक्तिसादी सिफारतकारी के एक नए दौर का इशारा देते हुए बराह रास्त मुल्क से मुल्क के कॉरिडोर का मुतालबा किया है जो ऑस्ट्रेलिया के खाम मसाइल को बराह रास्त भारत के बड़े पैमाने पर साफ सुथरी तवानाई, चिप मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल बुनियादी ढांचा पाइपलाइन से जोड़ते हैं। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज बाद में मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के अपने हमनसब एंथोनी अल्बनीज के साथ मुज़ाकरात करेंगे। तवक्को है कि दोनों

0: गुमराह फिल्म से ये गीत अभी आपने सुना, महेंद्र कपूर की आवाज़ में, संगीत था रवि का।
1: संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
2: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
3: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
2: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
3: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
2: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 और STD कोड 022।
3: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
4: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
5: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
5: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
5: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
4: For details, log on to www.ddindia.com।
6: तुम
0: और आइए अब सुनते हैं आंधी फिल्म से ये गीत, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में, बोल हैं गुलजार के, संगीत RD बर्मन का।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 870-001-4242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 870-001-4242।

ये गीत अभी आप सुन रहे थे आन मिलो सजना फिल्म से, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में। बोल थे आनंद बख्शी के, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का। इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे जिले की हलचल हमारे लखनऊ केंद्र से।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। जिले की हलचल।
1: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है। जिले की हलचल आज सुनिए लखनऊ और रामपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं लखनऊ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मुमताज अली का।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून 2026 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना PMVBRY के तहत लगभग 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित की। लखनऊ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम से जुड़ा। लखनऊ में यह कार्यक्रम इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित किया गया। इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना सिर्फ एक रोजगार योजना से कहीं अधिक है। यह एक ऐसी पहल है जिसका उद्देश्य पहली नौकरी में प्रवेश करने वाले युवाओं की आकांक्षाओं को मजबूत करना और उद्योग व कार्यबल के बीच एक मजबूत सेतु का निर्माण करना है।
3: हमारी सोच सोशल सिक्योरिटी फॉर एवरी वर्कर की है। हमारी सोच सिक्योर एम्प्लॉयमेंट की है। हमारी सोच सोशल सिक्योरिटी फॉर एवरी वर्कर की है। इसलिए आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से EPFO को की व्यवस्था को आधुनिक बनाया गया। पेंशन व्यवस्था को भी सरल और सुलभ बनाया गया। लाखों नए कर्मियों को हेल्थ इंश्योरेंस और सस्ते उपचार की व्यवस्था से भी जोड़ा गया।
2: लखनऊ स्थित मौसम विज्ञान केंद्र अब क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के रूप में कार्य कर रहा है। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 8 जून 2026 को लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में की। इस अवसर पर भारत सरकार के विज्ञान प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा

0: आज लखनऊ इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के एक प्रमुख क्षेत्रीय केंद्र के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर रहा है। यह विकसित भारत की संकल्पना को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत सरकार के विज्ञान प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जो काम पिछले 65 वर्षों में नहीं हो पाया उसे बीते एक दशक में पूरा करने का प्रयास किया गया है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों राज्यों में आधुनिक मौसम उपकरणों की स्थापना से अब सटीक और समय पर पूर्वानुमान लगाना संभव हो सकेगा। योजना भवन लखनऊ में 25 जून 2026 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ हाई लेवल समीक्षा बैठक में कृषि और ग्रामीण विकास की स्थिति पर विस्तृत चर्चा की। बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने रबी विपणन वर्ष 2026-27 के लिए गेहूं, चना, मसूर जैसी फसलों की एमएसपी पर खरीद अवधि 24 जून से 8 जुलाई 2026 तक बढ़ाने की मंजूरी का पत्र मुख्यमंत्री को सौंपा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के नए चरण के तहत यूपी के लिए 6,18,482 पक्के मकानों की स्वीकृति का अनुमोदन पत्र भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया। केंद्रीय रेल और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री रोनी सिंह बिट्टू 1 जुलाई 2026 को लखनऊ स्थित अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन आरडीएसओ पहुंचे। उन्होंने जानकारी दी कि स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम कवच अब भारतीय रेलवे के 3,500 किलोमीटर से अधिक नेटवर्क पर तैनात हो चुका है। यह प्रणाली ट्रेन की टक्कर रोकने और यात्री सुरक्षा बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के 4 जुलाई 2026 को प्रथम लखनऊ आगमन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर नीरज सिंह, लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी सहित कैबिनेट मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और विधायकों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर भव्य स्वागत किया। एयरपोर्ट से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय तक निकली अभिनंदन यात्रा में 42 स्थानों पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया गया। लखनऊ दौरे के दूसरे दिन श्री नवीन ने 5 जुलाई 2026 को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के सहयोगी दलों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। नितिन नवीन ने दावा किया कि 2027 में प्रचंड बहुमत से लगातार तीसरी बार सरकार बनेगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून 2026 को लखनऊ के विभिन्न स्थानों पर योग अभ्यास किया गया। योग अभ्यास कार्यक्रमों में अधिकारियों, कर्मचारियों, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और समाज के संभ्रांत नागरिकों के साथ गणमान्य लोगों ने भी भाग लिया। 22 जून 2026 को लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र में एक व्यवसायिक इमारत में आग लगने से 15 लोगों की जान चली गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित विभिन्न नेताओं ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद घायलों से अस्पताल में जाकर मुलाकात। मामले की जाँच के लिए गठित 2 सदस्यीय विशेष जाँच दल SIT ने रिपोर्ट तैयार कर ली है। यह जांच रिपोर्ट जल्दी मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी। मुख्यमंत्री ने इस घटना की जांच की जिम्मेदारी पर्यटन विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत अभिजात और ADG जोन लखनऊ प्रवीण कुमार को सौंपी थी। 23 जून 2026 को दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्म पुरस्कारों का वितरण किया। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में लखनऊ के प्रसिद्ध रंगकर्मी डॉक्टर अनिल कुमार रस्तोगी भी शामिल थे। लखनऊ के कलाकार को पद्म पुरस्कार मिलने पर शहरवासियों ने प्रसन्नता व्यक्त की है। पूरे विश्व में ताजियादारी और अदादारी के लिए मशहूर लखनऊ में मुहर्रम का महीना शोक के साथ मनाया जा रहा है। इमाम बारगाहों, इमाम बाड़ों और घरों में मजलिसों का दौर जारी है। 26 जून 2026 यानी 10 मुहर्रम को ताजियों को जुलूस की शक्ल में करबला तक ले जाकर दफन किया गया। पहली मुहर्रम को शाही जरी का जुलूस अपने रवायती अंदाज में निकला। 7 मुहर्रम को मेहदी और 8 मुहर्रम को अलम फातह अफराद के बाद 9 मुहर्रम को अलम शब आशूर का जुलूस गमगीन माहौल में निकाला गया।
1: लखनऊ जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं रामपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है शन्नू खान का।
2: रामपुर में उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET शांतिपूर्ण, पारदर्शी एवं नकल विहीन वातावरण में संपन्न हुई। परीक्षा जनपद के केंद्रों पर शासन के दिशा निर्देशों के अनुरूप कड़ी सुरक्षा एवं प्रशासनिक निगरानी के बीच आयोजित कराई गई। परीक्षा में 92% उपस्थिति दर्ज हुई। जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि परीक्षा के सफल संचालन के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गई थी। सभी अधिकारियों ने अपने दायित्वों का पूरी सतर्कता एवं जिम्मेदारी के साथ निर्वहन किया, जिससे परीक्षा पूरी तरह शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न हुई। जिलाधिकारी अजय द्विवेदी ने स्कूल चलो अभियान के द्वितीय चरण की शुरुआत के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान समय में शिक्षा केवल रोजगार प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि बेहतर जीवन जीने, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने, बैंकिंग, डिजिटल सेवाओं तथा दैनिक आवश्यकताओं को सहज रूप से पूरा करने के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जोड़ना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। जिलाधिकारी ने कहा कि शिक्षा बच्चों के सर्वांगीण विकास एवं व्यक्तित्व निर्माण का आधार है। उन्होंने कहा कि विद्यालयों का वातावरण बच्चों के लिए आकर्षक एवं प्रेरणादायी होना चाहिए। इस अवसर पर जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी ने मिशन कायाकल्प के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले ग्राम प्रधानों तथा

0: नामांकन अभियान में उल्लेखनीय योगदान देने वाले शिक्षकों एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। रामपुर में उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने जिला प्रशासन को एक अनुरोध पत्र सौंपा। इस अवसर पर संगठन के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश अग्रवाल ने कहा कि PPE मॉडल पर प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज संचालन के लिए 100 बीघा भूमि ग्राम जगतपुर व ग्राम बेनजीर में अधिग्रहण की कार्रवाई की गई है। कॉलेज स्वीकृत हो चुका है, लेकिन भूमि अधिग्रहण कार्रवाई पूर्ण न होने से मेडिकल कॉलेज शुरू नहीं हो पा रहा है। मेडिकल कॉलेज शुरू न होने से आम जनता समय से बेहतर इलाज न मिल पाने से परेशान है। संगठन ने मांग की है कि भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई जल्द पूरी होनी चाहिए। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जनपद योग में दिखाई दिया। जिला प्रशासन एवं आयुष विभाग के संयुक्त तत्वाधान में पनवड़िया स्थित सांस्कृतिक सद्भावना मंडप में जनपद स्तरीय भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जन प्रतिनिधियों, अधिकारियों, पुलिस कर्मियों, विद्यार्थियों एवं आमजन की उत्साहपूर्ण सहभागिता रही। योग प्रशिक्षकों के निर्देशन में सभी प्रतिभागियों ने कॉमन योग प्रोटोकॉल के अंतर्गत विभिन्न योगासनों, प्राणायाम एवं ध्यान का अभ्यास किया। मुख्य अतिथि कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सतत प्रयासों के परिणाम स्वरूप योग को वैश्विक पहचान मिली है और आज विश्व के अनेक देशों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि भारत की प्राचीन योग, आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा परंपरा को विश्व मंच पर प्रतिष्ठित करने में प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। योग हमारी हजारों वर्षों पुरानी सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, जो आज पूरे विश्व को स्वस्थ जीवन का मार्ग दिखा रहा है। जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी एवं पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र कुमार मीणा ने तहसील सदर के परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधारोपण किया। इस अवसर पर उन्होंने कार्यक्रम में आए लोगों को पौधे वितरित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी मां के सम्मान में कम से कम एक पौधा अवश्य लगाए तथा उसके वृक्ष बनने तक उसकी देखभाल एवं संरक्षण भी सुनिश्चित करे।
1: जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है एक पेड़ मां के नाम, उसको जरूर अपनाएं और सभी लोगों से उम्मीद करूंगा कम से कम एक पेड़ जरूर अपने संरक्षण में उसको बड़ा करें।
0: रामपुर में पल्स पोलियो अभियान का उद्घाटन मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दीपक सिंह द्वारा किया गया। डॉक्टर दीपक सिंह द्वारा शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शाहबाद गेट स्थित पोलियो बूथ पर फीता काटकर एवं बच्चों को पोलियो की 2 बूंद पिलाकर अभियान की शुरुआत की गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने इस मौके पर कहा कि पोलियो जैसी गंभीर बीमारी से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए प्रत्येक अभिभावक जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक जरूर पिलाएं।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।

0: अभी आप सुन रहे थे देश गान। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे उर्दू कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से।
1: ये लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। पेश खिदमत है उर्दू प्रोग्राम।

सा एक्स का निशान क्यों बना होता है? आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कोई डिजाइन नहीं बल्कि पटरी पर दौड़ते हजारों पैसेंजर की जिंदगी से जुड़ा भारतीय रेलवे का एक बेहद अहम हिफाजती कानून है। इस निशान का सबसे बड़ा काम स्टेशन मास्टर या ट्रैकमैन जैसे रेलवे मुलाजमीन को ये बताना है कि पूरी की पूरी ट्रेन हिफाजत से स्टेशन या ट्रैक से गुजर चुकी है। अगर आखिरी डिब्बे पर एक्स का निशान दिख गया तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी डिब्बा रास्ते में पीछे नहीं छूटा है। ये एक्स का निशान अक्सर चमकीले पीले, सफ़ेद या रेडियम पेंट से बनाया जाता है ताकि रात के अंधेरे में, भारी बारिश या कोहरे में भी ये दूर से ही साफ चमकता हुआ दिखाई दे। रात में इस निशान के ठीक नीचे एक लाल रंग की लाइट भी ब्लिंक किया करती है। ये लाइट पीछे से आ रही दूसरी ट्रेन के पायलट को अलर्ट रखने के लिए होती है। सामाइन, चीन की एक खातून को प्लास्टिक सर्जरी कराना इतना भारी पड़ गया कि पिछले 6 साल से वो अपनी आँखें बंद करके सो भी नहीं पा रही हैं। दरअसल गलत सर्जरी की वजह से खातून की आँखें 24 घंटे खुली रहती हैं और उनसे लगातार आंसू बहते रहते हैं। कुल मिलाकर खातून की जिंदगी जहन्नुम बन गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये दर्द भरी दास्तां वांग नामी खातून की है। जून 2020 में उन्होंने जियांगसू सूबे के सुजो शहर के एक कॉस्मेटिक क्लिनिक में डबल आईलिट सर्जरी कराई थी। इसके लिए खातून ने करीब 12,000 युआन तकरीबन 1,70,000 रुपए खर्च किए थे। मशरकी एशिया में ये सर्जरी आम है जिससे आंखें बड़ी और खूबसूरत दिखती हैं, लेकिन वांग का ये फैसला उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुआ। ऑपरेशन के फौरन बाद वांग की आंखों में जबरदस्त दर्द और सूजन होने लगी। हालत इतनी बिगड़ गई कि उनकी पलकें बाहर की तरफ मुड़ गईं और आंखों से लगातार पानी गिरने लगा। उन्हें आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने जो बताया वो होश उड़ाने वाला था। डॉक्टरों ने खुलासा किया कि सर्जरी इतने गलत तरीके से की गई कि खातून की आंसुओं की नस पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। डॉक्टरों ने इसे ठीक करने की कोशिश की लेकिन नुकसान इतना ज्यादा था कि वांग की पलकें हमेशा के लिए पूरी तरह झपकना बंद हो गईं। समाइन, अमेरिका के नेब्रास्का में एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है जहां मुबैना तौर पर एक पालतू कुत्ते ने शॉटगन से फायरिंग कर दी। इस हादसे में सड़क पर मौजूद एक खातून जख्मी हो गई। ये वाकया नेब्रास्का के स्कॉट सबलफ इलाके का है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वाकया गुजरे मई माह का है जब एक शख्स अपनी पिकअप ट्रक लेकर एक गैस स्टेशन पर रुका। वो गाड़ी में अपने पालतू कुत्ते और एक दूसरे पैसेंजर को छोड़कर पास की दुकान से कुछ सामान लेने चला गया। मालिक के जाते ही गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा कुत्ता अचानक उछल कूद करने लगा। इसी दौरान उसका पैर वहां रखी एक लोडेड शॉटगन पर पड़ गया जिससे ट्रिगर दबा और दनादन गोलियां चलने लगीं। गोलियां गाड़ी के दरवाजे को चीरते हुए सीधे बाहर निकल गईं। उसी वक्त पास के ट्रैफिक सिग्नल पर एक खातून अपनी गाड़ी में ग्रीन सिग्नल होने का इंतजार कर रही थी। गोली गाड़ी के दरवाजे को पार करती हुई खातून के हाथ में लगी। मौके पर मौजूद एक शख्स ये नज़ारा देखकर सन्न रह गया क्योंकि गाड़ी के अंदर से एक कुत्ता फायरिंग कर रहा था। सामाइन, कहते हैं कि जिंदगी में कब कौन सा लम्हा इंसान की तकदीर बदल दे इसका अंदाज़ा किसी को नहीं होता। कुछ ऐसा ही हुआ है बहरीन में रहने वाले भारतीय नज़ात कृष्ण कुमार श्यामला रविंद्रन के साथ। बरसों से लॉटरी खरीदते आ रहे कृष्ण कुमार को इस बार एक टिकट करोड़पति बना गया। उसके लिए उन्होंने कोई पैसा भी खर्च नहीं किया था। एक प्रमोशनल ऑफर के तहत मिली मुफ्त टिकट ने उन्हें करीब 52 करोड़ रुपए का मालिक बना दिया। दरअसल 43 साल कृष्ण कुमार पिछले 23 बरसों से बहरीन में रह रहे हैं। तमाम जिद्दोजहद के दरमियान उन्होंने मुस्तकबिल में कुछ बड़ा हासिल करने की उम्मीद से अबू धाबी बिग टिकट लॉटरी में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। पिछले 7 सालों में वो हर महीने टिकट खरीदते रहे। किस्मत ने आखिरकार इस साल उनका साथ दिया। 4 जून को निकले अबू धाबी बिग टिकट ड्रॉ में उनका टिकट फातह करार दिया गया और उन्हें 2 करोड़ दिरहम का जैकपॉट मिला जिसकी भारतीय करेंसी में कीमत लगभग 52 करोड़ रुपए है। दिलचस्प बात यह है कि ये टिकट उन्हें एक खास प्रोफेशनल स्कीम के तहत मुफ्त मिला था। समय, न्यूजीलैंड में एक खातून के साथ एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने मेडिकल साइंस को हैरान कर दिया और उस खातून की जिंदगी में 13 साल बाद उजाला भर दिया। ये अनोखी दास्तान न्यूजीलैंड के ऑकलैंड की लीजा रेट की है। जब लीजा महज 11 साल की थी तब उनके दिमाग में एक ट्यूमर हो गया था। इस ट्यूमर ने उनकी आंखों की नसों को इतना दबा दिया था कि उन्होंने

लेते हैं। बचपन से ही दोनों जबानों को सुनते रहने की वजह से इन्हें दोनों बोलियां पूरी तरह समझ में आ जाती हैं। समाइन 19 साल एक लड़के की कहानी इन दिनों खूब सुर्खियों में है। बिना किसी बड़े कॉलेज की डिग्री या अमीर बैकग्राउंड के इस लड़के ने अपने दम पर एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI बिजनेस खड़ा किया है जिससे वो हर महीने 1 करोड़ रुपए कमा रहा है। इस कामयाब नौजवान का नाम है आयुष सिंह। उनकी ये इंस्पायरिंग कहानी टॉपमेट के शरीक बानी दिनेश सिंह ने शेयर की है जो अब तेजी से वायरल हो रही है। दिनेश सिंह ने बताया कि जब कोरोना का दौर था तब आयुष महज 13 साल के थे और उनके कुनबे पर माशी बुहरान आ गया था। उस वक्त उनके पास कोई महंगी कोचिंग नहीं थी, बस एक पुराना लैपटॉप, रुक रुक कर चलने वाला इंटरनेट और कुछ पुराने कोर्सेज थे। लेकिन आयुष के अंदर कुछ नया सीखने की जिद थी। इसी जिद के दम पर उन्होंने खुद से मशीन लर्निंग, जो AI का एक हिस्सा है, उसे सीख डाला। आयुष की लगन का असर ये हुआ कि कुछ ही महीनों में वो गैर मुल्की स्टार्टअप के साथ काम करने लगा। कमाल की बात यह है कि जब वो सिर्फ 14 साल के थे तब दुनिया के सबसे मशहूर इदारे मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने उनके बनाए कोर्स की तारीफ की और लोगों को इसे पढ़ने का मशवरा दिया। सामान्य दुनिया में कई ऐसी चीज़ें हैं जिनकी कीमत सुनकर लोग हैरान रह जाते हैं। सोना, हीरा और नायाब धात के बारे में तो आप अक्सर सुनते हैं, लेकिन क्या कभी आपने किसी परिंदे के घोंसले के बारे में सुना है जिसकी कीमत लाखों रुपए तक पहुंच जाती है? सुनने में ये अजीब लग सकता है लेकिन ये बिल्कुल सच है। स्विफ्टलेट नाम का एक छोटा सा परिंदा ऐसा घोंसला बनाता है जो दुनिया के सबसे महंगे कुदरती मसनूआत में गिना जाता है। स्विफ्टलेट आमतौर पर जनूब मशरकी एशिया के कुछ ममालिक में पाया जाता है। देखने में ये कोई बहुत खास परिंदा तो नहीं लगता, लेकिन इसकी एक अनोखी आदत इसे आम परिंदों से अलग बना देती है। जहां ज़्यादातर परिंदे अपने घोंसले बनाने के लिए सूखी टहनियां, घास, पत्तियां या दूसरी कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं, वहीं स्विफ्टलेट अपना घोंसला अपने ही राल यानी लाइवा से तैयार करता है। जब घोंसला बनाने का वक्त आता है तब वो किसी पत्थर या गार की दीवार पर अपने राल को लगाता है। वो राल धूप और हवा के रास्ते में आकर सख्त होने लगती है और कई दिनों की मेहनत के बाद एक कटोरे जैसी शक्ल का घोंसला तैयार हो जाता है। यही घोंसला बाद में दुनिया भर में काफी ऊंची कीमत पर बेचा जाता है। इन घोंसलों को इकट्ठा करना भी आसान काम नहीं होता। स्विफ्टलेट अक्सर गहरी, अंधेरी और खतरनाक गारों में अपना घोंसला बनाती है। कुछ ममालिक में इन घोंसलों की मांग बहुत ज्यादा है, खासतौर पर चीन, हांगकांग, मलेशिया और सिंगापुर जैसे इलाकों में इन्हें एक खाने की अशिया की शक्ल में देखा जाता है। वहाँ इन घोंसलों से बर्ड नेस्ट सूप नामी मशहूर पकवान बनाया जाता है। माना जाता है कि ये सूप सेहत के लिए फायदेमंद होता है और जिस्म को ताकत देने में मदद करता है। सामान्य गर्मी के दिनों में अगर आप किसी गांव, खेत या तालाब के आसपास जाएं, तो अक्सर भैंसों को कीचड़ में आराम से लेटा हुआ देखेंगे। बहुत से लोग इसे देखकर सोचते हैं कि शायद भैंसों को गंदगी पसंद होती है या वो साफ सफाई का ख्याल नहीं रखती, लेकिन सच बात इससे बिल्कुल अलग है। भैंसों का कीचड़ में लेटना कोई आदत या शौक नहीं बल्कि उनके जिस्म की बड़ी ज़रूरत है। दरअसल कीचड़ भैंसों के लिए किसी कुदरती हिफाजती खिलाफ से कम नहीं होता। ये उन्हें गर्मी से बचाता है, जिल्द की हिफाजत करता है और कई तरह के कीड़ों और जरासीम से भी दूर रखता है। आसान अल्फाज में कहें तो कीचड़ भैंसों के लिए एक तरह का कुदरती स्पा है जो उन्हें सेहत और आरामदेह बनाए रखने में मदद करता है। सामाइन, अगर आपको लगता है कि इंसानों के अलावा कोई और जानवर बड़ी बड़ी तामीर नहीं कर सकता, तो बीवर के बारे में जानकर आपकी सोच बदल सकती है। ये छोटा सा जानवर अपनी अनोखी मेहनत और इंजीनियरिंग के हुनर के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यही वजह है कि इसे कुदरत का सबसे हुनरमंद इंजीनियर भी कहा जाता है। बीवर देखने में भले ही आम लगे लेकिन इसके काम गैरमामूली होते हैं। ये सिर्फ पेड़ काटने वाला जानवर नहीं है बल्कि पूरे वाटरशेड की बनावट बदलने की कुव्वत रखता है। इसकी एक्टिविटी दरियाओं और आसपास के माहौल पर इतना गहरा असर डालती हैं कि कई बार किसी इलाके का पूरा नक्शा ही बदल जाता है। इस जानवर के सबसे ख़ास हथियार इसके मजबूत और लगातार बढ़ते रहने वाले आगे के दांत हैं। ये दांत इतने धारदार होते हैं कि बीवर आसानी से बड़े पेड़ों के तनों को कुतर सकता है। घंटों की मेहनत के बाद जब कोई पेड़ गिर जाता है
तो वो इसकी लकड़ियों, टहनियों और शाखों को इकट्ठा करना शुरू कर देता है। यही सामान बाद में उसके

0: बड़े तामीरी काम में इस्तेमाल होता है। सामाइन, इन दिनों चीन की एक ऐसी दुकान सुर्खियों में है जिसे देखकर अच्छे अच्छे खतरों के खिलाड़ियों के पसीने छूट जाते हैं। ये कोई आम किराने की दुकान नहीं है, बल्कि चीन के हुनान सूबे के शिनी युझाई नेशनल जियोलॉजिकल पार्क में जमीन से 393 फीट यानी करीब 120 मीटर ऊपर एक बिल्कुल सीधी चट्टान पर लटकी हुई लकड़ी का एक छोटा सा केबिन है। इस दुकान से खरीदारी करना हर किसी की बस की बात नहीं, इसके लिए फौलादी जिगरा होना चाहिए। यहाँ जाने के लिए आपको बाकायदा ट्रेकिंग गियर, रस्सियाँ और मेटल केबल्स पहनकर खड़ी चट्टानों पर चलना पड़ता है। इस दुकान तक पहुँचने में 1.5 घंटे का वक्त लग जाता है, इसलिए ड्यूटी के दौरान यहाँ के स्टाफ पानी पीने से भी बचते हैं ताकि वॉशरूम जाने की ही नौबत ना आए। इस दुकान को चलाना किसी कड़े इम्तिहान जैसा है। सामाइन, इंसान ने आज कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ली हो, लेकिन आज भी वो समंदर के बहुत छोटे हिस्से के बारे में ही जान पाया है। समंदर की यथा गहराइयों में कई ऐसे जानवर हैं जो अपनी अजब बनावट और अनोखी लाइफस्टाइल की वजह से साइंसदान और नेचर लवर को हैरान कर देते हैं। इन्हीं अनोखे जानवरों में से एक है रेड लिप्ड बैटफिश। पहली नज़र में इसे देखकर ऐसा महसूस होता है कि जैसे किसी ने इसके होठों पर चमकीली लाल लिपस्टिक लगा दी हो। यही अनोखी खासियत इसे दुनिया की सबसे दिलचस्प समंदरी मछलियों में शामिल करती है। ये मछली पैसिफिक समंदर में वाक़ गालापागोस जजीरे के आसपास के समंदरी हलकों में पाई जाती है। इसका नाम बैट फिश इसलिए रखा गया क्योंकि इसका सर चौड़ा और चपटा होता है, जो कुछ हद तक चंगादड़ की शक्ल की याद दिलाता है। इसके बदन की बनावट पूरी मछलियों से काफ़ी अलग होती है, जिससे ये समंदरी जानवरों की दुनिया में फौरन पहचान ली जाती है। तो सामाइन, ये थी इस माह की कुछ अजब गजब खबरें। उम्मीद है इन खबरों से आपके इल्म और मालूमात में इजाफा ज़रूर हुआ होगा। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, हमें अपने तासुरात से मुत्तला ज़रूर करें। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी है kklsurdu@gmail.com। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7991778157। तो सामाइन, इसी के साथ आज का ये उर्दू प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम पज़ीर होता है। अपने मेज़बान मोहम्मद उमैर को दे इजाज़त, आदाब।
1: आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से उर्दू प्रोग्राम नशर किया जा रहा था।
2: मीडियम वेव 303.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्स और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्स पे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी गोरखपुर। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम बस कुछ ही क्षणों में।
3: जिंदगी बहुत कीमती है,
4: उससे तो सस्ता ही है।
5: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये मारा।
6: डॉलकर ही नहीं, किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं।
7: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
8: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। BTech पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA B फार्मा M फार्मा और D फार्मा में एडमिशन ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।

जरा अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं।

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी मेरा प्यार है सर्द पानी मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ हाँ।

आपकी पसंद आपका गाना और आवाज होगी आपकी। जी हाँ, आकाशवाणी का सबसे चहेता प्रोग्राम हेलो फरमाइश अब आप सुनेंगे हर रविवार प्रातः 10:05 पर। कर लीजिए तैयारी क्योंकि हर शनिवार दोपहर 11 से 12 बजे के बीच होगी हमारी रिकॉर्डिंग। तो देर किस बात की, अभी उठाइए अपना फोन और डायल कीजिए हमारा नंबर 0551-220-5386। 0551 हमारा STD नंबर है गोरखपुर का। नंबर एक बार फिर से 220-5386। अपनी फरमाइश हमें बताइए और जुड़िए आकाशवाणी गोरखपुर के साथ। कॉल करना भूलिएगा मत, हर शनिवार दोपहर 11 बजे से 12 बजे के बीच।

0: स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: आकाशवाणी गोरखपुर से आप सुन रहे हैं फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम गाते गुनगुनाते। आपके फरमाइशों को अपने सुरों का साथ देते हुए हम लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक सदाबहार और मधुर गीत। कार्यक्रम में अगला गीत है फिल्म आपकी कसम से, आवाज किशोर कुमार, संगीत आरडी बर्मन का, बोल आनंद बख्शी के। और इसे सुनने की फरमाइश की है पूजा, तुली, कुकी, टीटू, गुड़िया, भारत, लक्ष्मी, चन्नू,

0: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करे अपने सपने साकार। बीटेक, पॉलिटेक्निक, MBA, MCA, BBA, BCA, बी फार्मा, एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना खेलिए माना। हर टन में ज्यादा लंबाई, ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
3: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं गाते गुनगुनाते कार्यक्रम आकाशवाणी गोरखपुर से। ये कार्यक्रम आपसे है, आपके फरमाइशों से है। तो आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पे कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म गोरा और काला से, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मुकेश जी ने। इसे सुनना चाहा है बड़ी गैबी चौराहा वाराणसी से अरुण कुमार मालवीय, सरिता मालवीय। आप सभी की फरमाइश पे सुनते हैं गोरा और काला फिल्म से ये गीत।

उम्मीद है श्रोताओं, ये प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। आपकी फरमाइशें ही हमारे इस कार्यक्रम की असली पहचान है। आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगला गीत है फिल्म तीसरी मंजिल से, गायक आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी, संगीतकार हैं आर डी बर्मन। सुनना चाहा है कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजित कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल ने धमधाग्राम, सुखरी कला, अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल, इन सभी लोगों ने तीसरी मंजिल फिल्म से इस गीत की फरमाइश की है। तो सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, अगले गीत की फरमाइश आई है प्रेम जी भाई भारतीय प्रेम जी कम्युनिकेशन CDA सेक्टर 7 कटक ओडिशा से। सुनना चाहा है बासंती, चंदन, रंजन, श्रद्धा, शुभ, लक्ष्मी, रोजी, श्री कुमारी, अनन्या, अपूर्वा,

फिल्म है एक दूजे के लिए, जिसे गाया है लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम ने। तो आइए आप सभी परिवार के सदस्यों की पसंद पे सुनते हैं ये गीत।

0: स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। बीटेक, पॉलिटेक्निक, MBA, MCA, BBA, BCA, बी फार्मा, एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन्स ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
2: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गाते गुनगुनाते आकाशवाणी गोरखपुर से। श्रोताओं, अगला गीत है फिल्म मंजिल से, जिसे गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। सुनने की फरमाइश की है पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगला बेन शाह, राजेंद्र जी शाह और मनोहर मगर, यामिनी मगर, उदयन और अर्पिता, गोंदुर रोड, धुलिया, महाराष्ट्र से। तो आप सबकी पसंद पे आइए सुनते हैं मंजिल फिल्म से ये गीत।

श्रोताओं, अगले गीत की फरमाइश आई है तीव्रता डबरी पारा, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ से। सुनना चाहा है महेंद्र प्रताप मरकाम, जया मरकाम, जागेंद्र, गजेंद्र, जयंती, ममता, मनीषा, मंजू मानसी, सुरेंद्र मरकाम, मोहन सिंह सहोदरी बाई मरकाम। इन सभी लोगों ने दिल फिल्म से इस गीत की फरमाइश की है, तो आइए सुनते हैं ये गीत।

तो श्रोताओं, अपने मनपसंद फिल्मी गाने की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर भेजते रहिए। पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए गाने के बोल, गीतकार, संगीतकार और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम, और सुनिए अपने पसंद के गीत। इसी के साथ आज के कार्यक्रम गाते गुनगुनाते में हमें दीजिए अनुमति। संगीत सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। सुनिए हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच और आर्थिक कार्य योजना कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी एक परिवर्तनकारी उच्च तकनीकी युग में पहुंच गई है। उन्होंने वर्ष 2030 तक 100 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार को गति देने के लिए एक दूरदर्शी कार्य योजना प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों के बीच भारत और ऑस्ट्रेलिया स्थिरता के स्वाभाविक और विश्वसनीय स्तंभों के रूप में एक साथ हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में दोनों देशों के बीच संपन्न हुए व्यापार समझौते से आर्थिक संबंधों में मजबूती आई है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने ऑस्ट्रेलिया भारत साझेदारी के ऐतिहासिक परिवर्तन का उल्लेख किया। श्री अल्बनीज ने कहा कि भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर मजबूती से

0: अवसर है। ऑस्ट्रेलिया सुपर के 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश का भारत ने स्वागत किया है। मेलबर्न में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पॉल शोडर ने इसकी घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि निवेश भारत के विकास पथ पर दुनिया भर के विश्वास को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने बुधवार को कठुआ जिले में एक आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ किया और वहां से दो हथगोले बरामद किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले के बिलावर क्षेत्र के ऊपरी इलाकों में स्थित इस ठिकाने का पता ओवरग्राउंड वर्कर हाजी लतीफ के से चला। रामागढ़ निवासी लतीफ को 2 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। उस पर पिछले कई वर्षों से सीमा पार से एक दर्जन से अधिक आतंकवादियों की घुसपैठ में मदद करने का आरोप है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ष 2026 के दौरान इसके 7% के वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। गृहमंत्री अमित शाह ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस पर परिषद के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के आदर्शों का अनुसरण करते हुए ये संगठन विद्यार्थियों को संगठित करने और युवाओं में देशभक्ति की भावना का प्रसार करने का कार्य कर रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा है कि दिल्ली की सभी मुख्य सड़कों पर जलभराव की स्थिति नियंत्रण में है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सभी संबंधित एजेंसियां अलर्ट पर हैं। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल में हिमालय के निचले इलाकों, सिक्किम और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिन में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का चौथा मुकाबला आज ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच रात 10 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ क्षणों में आप सुनेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग।
2: जिंदगी बहुत कीमती है,
3: उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिया के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
5: RHL Gold TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।

0: डेंगू चिकनगुनिया मलेरिया दिमागी बुखार से बचेगी।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। बीटेक पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA बी फार्मा एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन्स ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
3: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
4: लोकगीतों के कार्यक्रम में आज सुनिए रामजीत शर्मा और साथियों के गाए कुछ लोकगीत।

0: आराम।
1: गुनगुना रहे हैं भंवरे, खिल रही है कली कली।
2: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
3: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
2: करिए अपने मन पसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
3: प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
2: गाने के बोल,
3: गीतकार
2: और संगीतकार,
3: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
2: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
3: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास। गाते
2: गाते
3: गुनगुनाते सुनिए सुबह 10:05 पर।
2: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।

0: भी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
3: RHL गोल्ड DMT सरिया, 70 सालों का विश्वास
2: और भरोसा। जानो फिर मानो।
4: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीडा,
5: BTech पॉलिटेक्निक, MBA, MCA, BBA, BCA, D-Pharma, B-Pharma और M-Pharma में एडमिशन्स शुरू हो गए हैं।
4: 300 कंपनीज में प्लेसमेंट्स, स्कॉलरशिप और इजी फी इंस्टॉलमेंट की सुविधा भी।
5: विजिट KIPM गीडा गोरखपुर।
6: लोकगीतों के कार्यक्रम में आज बस इतना ही। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि।
7: गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है कली कली।
8: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
9: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
8: करिए अपने मनपसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
9: प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
8: गाने के बोल,
9: गीतकार
8: और संगीतकार
9: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
8: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
9: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास। गाते
8: गाते गुनगुनाते
9: सुनिए सुबह 10:05 पर।
8: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।
10: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in। देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
11: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
12: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
11: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
12: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
11: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
12: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
11: For details log on to www.ddindia.com।

गीतांजलि की ये सबसे पहली सौगात आपके लिए फिल्म ताल से। सुखविंदर सिंह की आवाज में और इनका साथ दे रही हैं अलका याग्निक।

अब जो गाना आप सुनने जा रहे हैं वो है अनुराधा पौडवाल और विपिन सचदेवा की आवाज में। फिल्म है बेटा, संगीतकार हैं आनंद मिलंद और गीतकार हैं समीर।

0: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
1: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
0: करिए अपने मनपसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
1: प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
0: गाने के बोल,
1: गीतकार
0: और संगीतकार,
1: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
0: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
1: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास। गाते
0: गाते
1: गुनगुनाते सुनिए सुबह 10:05 पर।
0: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।
2: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीडा,
3: बीटेक पॉलिटेक्निक, MBA, MCA, BBA, BCA, डी फार्मा, बी फार्मा और एम फार्मा में एडमिशन्स शुरू हो गए हैं।
2: 300 कंपनीज में प्लेसमेंट्स, स्कॉलरशिप और इजी फी इंस्टॉलमेंट की सुविधा भी।
3: विजिट KIPM गीडा गोरखपुर।
4: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।

अब जो गीत आप सुनने जा रहे हैं वो फिल्म है हम आपके हैं कौन। आवाज जो आप सुनेंगे वो है मधुर लता मंगेशकर की, साथ में म्यूजिक डायरेक्टर हैं लक्ष्मी कांत और बोल है देव कोहली के।

ये गाना आप सुन रहे हैं रंजना फिल्म से। रब्बी शेरगिल की आवाज है, संगीत यार रहमान का है और बोल है इरशाद कामिल के।

चलिए अगला ट्रैक सुनते हैं, आई हेट लव स्टोरी से, विशाल शेखर का संगीत है, कुमार का लिखा हुआ है और आवाजें हैं शफकत अमानत अली और सुनिधि चौहान की।

इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आप सुन रहे थे गीतांजलि शिवानी के साथ। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं एनसीईआरटी नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: नंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: कीजिए स्वीकार। नमस्कार, विमलेश का उमंग कार्यक्रम में
3: और अजीत का भी जोहर। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: तन और मन के स्वास्थ्य के लिए योग एक बेहतरीन टॉनिक है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस सुंदर विचार के लिए। जी हाँ, सच है, तन और मन के स्वास्थ्य के लिए योग एक बेहतरीन टॉनिक है। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
2: ग्राम चरौदाबार नवापारा अभ्यारण्य जिला बालोद छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर।
3: और छत्तीसगढ़ रूपापाली बसना से हीरालाल जगत, देवेश, ब्रिजेश जगत और एकता लावण्य कश्यप।
2: पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन।
3: और माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल।
2: और छत्तीसगढ़ पलारी से ही प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
3: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। एक बार फिर से आपका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं पेड़ पौधों की अनूठी और रहस्यमयी दुनिया के बारे में।
2: पिछले दो दिनों में हमने जाना था पेड़ पौधों के बीच के संचार की व्यवस्था के बारे में। आज हम बात करेंगे एक और रोचक विषय पर।
3: जी हाँ श्रोताओं, आज हम जानेंगे दुनिया के कुछ ऐसे पेड़ों के बारे में जो हजारों हजार वर्षों से जीवित हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये पेड़ मिस्र के पिरामिडों से भी पुराने हैं। और भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता जब अपने विकास के प्रारंभिक चरण में थी, उससे भी पुराने ये पेड़ हैं।
2: जी, ऐसे तो बहुत से वृक्ष हैं, लेकिन सबसे अधिक ज्ञात वृक्षों में से एक है ग्रैन एबुएलो। वैज्ञानिक अनुमान के अनुसार इसकी आयु 5000 वर्ष से भी अधिक मानी जाती है। ये लैटिन अमेरिका के चिली देश में है। ये नॉन क्लोनल पेड़ है। अजीत जी, श्रोताओं को ये भी बता दें कि नॉन क्लोनल पेड़ किसे कहते हैं।
3: विमलेश जी, वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार नॉन क्लोनल पेड़ उसे कहते हैं जिसका एक ही तना होता है। इसके तने से कई और नए तने नहीं निकलते हैं, यानी ये अपना क्लोन नहीं बनाते हैं। सरल उदाहरण से समझिए, यदि एक आम का पेड़ एक गुठली से उगा और 200 वर्षों या एक निश्चित अवधि तक जीवित रहा तो ये नॉन क्लोनल पेड़ है, क्योंकि इसके तने से कोई और नया पेड़ नहीं उगा। लेकिन इसके विपरीत

0: क्लोनल पेड़ों में एक ही मूल वृक्ष से कई नए तने और पौधे निकलते रहते हैं, जैसे भारत में मुख्य रूप से पाए जाने वाला बरगद का पेड़। ये पेड़ अपना प्रतिरूप या क्लोन बना लेता है। बरगद की शाखाओं से ही बहुत सारी हवाई जटाएं निकलती हैं। ये भूमि तक पहुंच जाती हैं और उनसे फिर नई शाखाएं निकलने लगती हैं। बांस भी क्लोनल पेड़ों में गिना जाता है, क्योंकि इसके प्रकंदों से कई नए नए बांस के पौधे पनपने लगते हैं।
1: जी विमलेश जी, जब बरगद के पेड़ की बात आई तो मुझे अपने देश के ग्रेट बैनियन ट्री की भी याद आई। ये कोलकाता के आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटेनिकल गार्डन में स्थित है।
0: बिल्कुल।
1: बताते हैं कि इसकी आयु 300 से भी अधिक वर्ष आंकी गई है।
0: जी।
1: हवाई जटाओं या एरियल रूट्स के कारण ये पेड़ इतना फैल चुका है कि देखने में एक विशाल जंगल की तरह दिखाई देता है। है तो ये एक ही पेड़, लेकिन इसने अपने हजारों क्लोन बना लिए हैं।
0: जी जी जी, विशालता की दृष्टि से एक अद्भुत पेड़ है। इसका मूल तना बिजली गिरने से नष्ट हो गया था, लेकिन अपनी हजारों सहायक जड़ों के कारण ये आज भी जीवित है। जी, तो आज हम बात कर रहे थे दीर्घजीवी पेड़ों के बारे में। एक और पेड़ है जिसका नाम है मतुशेलाह। ये अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। इसकी आयु लगभग 4,850 वर्ष से भी अधिक मानी जाती है। ये ग्रेट बेसिन ब्रिसल पाइन कोन प्रजाति का पेड़ है। ये मानव जाति के अधिकांश लिखित इतिहास से भी पुराना माना जाता है।
1: माना जाता है श्रोताओं कि इस पाइन वृक्ष का अंकुरण संभवतः 2,800 ईसा पूर्व हुआ होगा। विमलेश जी, हम बात कर रहे हैं पेड़ों की आयु की, तो हमारे श्रोताओं के लिए ये जानना भी बहुत रोचक होगा ना कि पेड़ों की आयु भला कैसे आंकी जाती है।
0: जी, पेड़ों की आयु को जानने के लिए कई वैज्ञानिक तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है पेड़ों के वार्षिक वलयों की गिनती। इन वलयों को ट्री रिंग्स भी कहते हैं। आपने किसी कटे हुए पेड़ के तने को यदि देखा होगा कि उसमें कई वलय, छल्ले या रिंग्स दिखाई पड़ते हैं।
1: जी, माना जाता है कि एक छल्ला एक वर्ष को दिखाता है। पेड़ के तने में जितने छल्ले होंगे उसकी आयु लगभग उतने वर्षों की होगी। लेकिन विमलेश जी, फिर तो किसी पेड़ की आयु को जानने के लिए उसे काटना होगा।
0: जी नहीं अजीत जी, ऐसी बात नहीं है। इसके लिए वैज्ञानिक एक विशेष विधि से तने के भीतर से पतली लकड़ी का नमूना निकालते हैं और उसका अध्ययन करते हैं। इससे पेड़ों को काटना नहीं पड़ता।
1: और हाँ श्रोताओ, कभी कभी तने की परिधि से भी पेड़ की उम्र का अंदाजा लगाया जाता है। इसके लिए उस पेड़ की वृद्धि की औसत दर का पता लगाना पड़ता है। विमलेश जी, एक और विधि है जिसे हम रेडियो कार्बन डेटिंग कहते हैं।
0: जी अजीत जी, बहुत पुराने या विशेषकर मृत पेड़ों की लकड़ी के नमूनों से वैज्ञानिक उसकी उम्र का पता लगाते हैं।
1: तो श्रोताओ, आपको बता दें कि पेड़ों के वलय मात्र उम्र ही नहीं बताते, बल्कि ये भी बताते हैं कि किसी विशेष वर्ष में मौसम कैसा था। चौड़े वाले रिंग्स संकेत देते हैं कि उस वर्ष में अच्छी वर्षा हुई थी, जबकि सकरे वाले सूखा या मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों का संकेत देते हैं।
0: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी विश्व के कुछ दीर्घजीवी पेड़ों के बारे में। साथ ही साथ हमने चर्चा की उनकी आयु जानने की विधियों के बारे में। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से,
1: आज का प्रश्न है क्लोनल और नॉन क्लोनल वृक्षों का एक एक उदाहरण दीजिए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: क्लोनल और नॉन क्लोनल वृक्षों का एक एक उदाहरण दीजिए।
1: 8800440559 है हमारा IBRS नंबर, और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। संदेश जरूर भेजिएगा।
0: आप इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको CIET NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी मिलती रहेगी।
1: और आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है भारत तू है सबसे प्यारा।
0: हिंदी की पाठ्य पुस्तक की कविता पर आधारित इस कार्यक्रम में भारत भूमि के गौरव और विविधता का बड़े सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है और बताया गया है क्यों हमारा देश सभी अन्य देशों से अनूठा है।

0: भारत तू है सबसे प्यारा। प्यारे बच्चों, अभी आपने सुना ये सुंदर गीत, आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। आपने आज अपने देश भारत के बारे में बहुत सी अच्छी बातों को सुना। आपने सुना भारत की नदियों, समुद्रों, अन्न, फल और फूलों के बारे में। सच में कितना सुंदर है ना हमारा देश। अब जरा सोचिए, अपने देश भारत की और कौन कौन सी बातें आपको बहुत अच्छी लगती हैं? सोचिए और हमें लिख भेजिए। आप हमें audio@ciet.nic.in पर अपना संदेश भेज सकते हैं। अब एक और बात, जरा बताइए कि क्या आपने भारत पर कुछ और भी कविताएं सुनी हैं? यदि सुनी हैं, तो उन कविताओं का संकलन कीजिए और अपने मित्रों के संग मिलकर उसका पाठ कीजिए। अभी आपने सुना कार्यक्रम भारत तू है सबसे प्यारा, और अब सुनते हैं कार्यक्रम उत्तर वैदिक काल।
1: इस कार्यक्रम में उत्तर वैदिक काल के बारे में विस्तार से बताया गया है, विशेषकर उस समय की शासन व्यवस्था और संस्कृति की चर्चा की गई है।
2: आर्य लोग जब भारत में आए तो भारत का अधिकतर भाग जंगलों से ढका हुआ था। यहाँ कुछ लोग पहले से रहते थे।

आर्यों ने उन्हें दस्यु या दास कहा है। आर्य लोग मुख्यतः पशुपालक थे। ये लोग अपने साथ गाय, बैल, भेड़ बकरियां और घोड़े लेकर आए थे। आर्यजन पहले पहले आज के पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ भागों में आकर बसे थे। इस क्षेत्र में सरस्वती नाम की एक नदी बहती थी जिसमें सदा जल रहता था। ये नदी अब सूख गई है। ऋग्वेद की अधिकतर ऋचाओं की रचना इसी नदी के तट पर हुई थी।

ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ग्रंथों की रचना भी इसी समय हुई थी। आर्यों का जीवन घुमक्कड़ी दशा से स्थायित्व की ओर बढ़ रहा था। कृषि अब उनका प्रमुख धंधा बन गया था। आइए चलते हैं उत्तर वैदिक काल के आर्यों की दुनिया में।

0: अरे वो काली गाय कैसे धुली तुमने? ये तो लात मारती है।
1: इसने मेरी काली और लाल दोनों मटके तोड़ दिए। हाँ
0: अरे धृताची।
2: हाँ भैया।
0: तू खड़ी खड़ी क्या कर रही है? जा दूध से भरी मटकी माँ को दे।
2: अच्छा।
1: अरे अरे अरे देवदत्त, तुम उस घोड़े को संभालो। अरे उसने खूटा उखाड़ लिया है।
0: नहीं तात, ये काम आप प्रवाहन को ही सौंपिए, मैं बकरी के इस नवजात बच्चे को संभाल रहा हूँ।
3: अरे भाई ये क्या हो रहा है आज? अभी तक सभी लोग पशुओं की बातचीत में ही लगे हो। इन्हें चराने नहीं ले जाना क्या? अब तो सूरज भी निकलने वाला है। अरे देवदत्त
0: जी,
3: तुम्हारा वो नया खेत बनाने का काम पूरा हुआ या नहीं?
0: पिताजी बस थोड़ा सा ही काम बाकी है। वो उस खेत में बहुत झाड़ झंकार थे ना, तो उन्हें काटते काटते हमारी लोहे की कई कुल्हाड़ियां टूट गई। यज्ञ दत्त उन्हें ठीक करवाने बढ़इयों और लोहारों के घर गया है। उसके आते ही हम खेत चले जाएंगे।
3: ठीक है ठीक है। और हाँ, तुम वो बड़े बैलों वाली गाड़ी भी ले जाना।
0: जी पिताजी।
3: उसमें रखकर कुछ शीशम के लट्ठे ले आना।
0: ठीक है।
3: टूटे बाड़े को भी ठीक करना है, कल वो काला घोड़ा वहां से निकल भागा था।
0: जी पिताजी, गाड़ी तो हमने पहले ही तैयार कर ली है।
3: अरे प्रवाहन।
1: जी पिताजी।
3: तो मुझे बहुत सुस्त और ढीले लग रहे हो।
1: वो पिताजी,
3: अजीत और हरिराज भी ढीले हो गए हैं। तुम्हारे खेतों की जुताई भी अभी पूरी नहीं हुई। कुछ पता भी है, कार्तिक महीने के भी कुछ दिन चढ़ गए हैं।
1: जी वो
3: तुम्हारे चाचा के परिवार ने तो अपने खेतों में गेहूं और जौ बो भी दिए।
1: पिताजी हमारे खेत भी गेहूं और जौ की बुआई के लिए तैयारी समझिए, बस एक दो जुताई और करनी है। क्यों अजीत?
0: हाँ हाँ पिताजी, इस बार मैंने बहुत ज्यादा काम किया है। और इस साल हमारी उड़द और धान की खेती बहुत अच्छी हुई है। अरे हाँ, अब तक तो हम उसकी कटाई और मड़ाई में ही लगे रह गए थे। क्यों देवदत्त?
4: हाँ हाँ पिताजी।
1: और पिताजी हम तो अपने साथ हरिराज और शत्रुमर्दन को भी ले जा रहे हैं।
0: हाँ।
1: आज हम चार चार बैलों वाले तीन हलों से जुताई करेंगे, खेत बस तैयारी समझिए।
3: नहीं नहीं, हरिराज और शत्रुमर्दन तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे खेतों में।
1: जी
3: मैं कल हस्तिनापुर जाना है।
0: पर क्यों पिताजी?
3: वहाँ महाराजा हरिराज जन्मेजय ने यज्ञ का आयोजन किया है, इन्हें तो जाने की तैयारी करनी होगी, वहां रथों की दौड़ भी होगी।
0: पिताजी हमारे जाने की पूरी तैयारी हो गई है।
4: जी पिताजी,
0: हमारा रथ और घोड़े दोनों तैयार हैं।
3: बहुत अच्छा।
0: और हाँ पिताजी, हमने अपने घोड़ों को भी खूब खिलाया पिलाया है, और पता है अब तो वो भी बहुत फुर्तीले हो गए हैं।
1: पिताजी देवों की इच्छा हुई तो रथों की दौड़ में इस बार हम ही जीतेंगे।
0: हाँ पिताजी, हम ही जीतेंगे।
3: देव तुम पर अवश्य प्रसन्न होंगे। देखो तुम लोग अपने साथ कुछ गेहूं जौ और चावल ले जाना।
0: जी पिताजी।
3: सम्राट ने यज्ञ के अवसर पर भंडारा भी चला रखा है।
0: अच्छा पिताजी।
3: सभी वर्णों के लोग भोजन कर रहे हैं, यही नहीं गुरुकुलों के ब्रह्मचारी गृहस्थ और साधु सन्यासी भी यज्ञ में बुलाए गए हैं।
1: अच्छा पिताजी, हमने अन्न के साथ साथ महाराज को भेंट देने के लिए माँ के द्वारा बुना हुआ उत्तरीय भी रख लिया है। बहन धृताची ने इस उत्तरीय पर सोने के तारों से बहुत सुंदर कढ़ाई भी की है।
2: हाँ। ये मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है और कौन कहाँ जा रहा है?
3: आओ पुत्री आओ, तुम्हारे ये भाई हस्तिनापुर जा रहे हैं।
2: अच्छा पिताजी, इनसे मेरे लिए सोने के कंगन मंगवा दीजिए ना, सुना है हस्तिनापुर के सुनार बहुत सुंदर कंगन बनाते हैं।
1: चल चल बढ़िया ही कंगन वाली। पिछले वर्ष तो तुझे सोने के कुंडल और हार ला कर दिए थे मैंने।
4: और क्या,
1: अब कुछ नहीं लाऊंगा। हाँ
2: मेरे अच्छे भैया, मेरे प्यारे भैया, देखो मैं तुम दोनों का कितना ध्यान रखती हूँ। मैंने छुपा छुपा कर तुम्हारे घोड़ों को घी भी पिलाया है।
1: अच्छा अच्छा चल ठीक है, ले ही आएंगे। अब तो खुश।
3: अरे ये तो खुश हो।

0: गई, पर तुम अपनी तैयारी पर ध्यान दो। हाँ, अपने हथियारों को ठीक ठाक करके रख लो।
1: जी पिताजी।
0: कल सूर्योदय से पहले ही चल देना। आजकल इस रास्ते वाले वन में शेरों, चीतों और तेंदुओं का आतंक कुछ ज्यादा ही हो गया है। अंधेरा होने से पहले ही वन पार करके अपनी बुआ के गांव पहुंच जाना।
1: जी पिताजी, हमने लोहे की फाल वाले भाले और लोहे की नोक वाले पहने तीर भी रख लिए हैं। भला हमारे इन तीरों के सामने वो क्या टिकेंगे।
2: और पिताजी, एक परिव्राजक के द्वारा हमने अपने फुफेरे भाइयों को भी सूचित कर दिया है, वो भी हमारे साथ रथों की दौड़ में हिस्सा लेने जाएंगे।
1: भैया, सुना है इस बार रथों की दौड़ में भाग लेने के लिए कौशल, काशी और विदेह से भी रथ आ रहे हैं।
2: हाँ।
1: इस बार कुछ ज्यादा ही बड़ा आयोजन है।
0: हाँ, ये तो है।
3: हाँ, बड़ा आनंद आएगा।
4: और शुरू हो गई रथों की दौड़।

0: इस बार तो हमारा रथ ही जीतेगा।
1: अरे हमने भी पूरी तैयारी की है,
0: याद है पिछले वर्ष रथों की दौड़ में कितना आनंद आया था। मित्र क्या इस बार भी तुम्हारे गांव का वही रथ दौड़ाने वाला आया है?
1: अरे नहीं भाई नहीं, इस बार दूसरा रथ दौड़ाने वाला आ रहा है। गांव में होने वाली प्रतियोगिता में तो उसने सबको पीछे छोड़ दिया था।
0: चलो देखते क्या होता है।
2: सुने सुने सुने, यज्ञ के आयोजन के इस अवसर पर अब प्रारंभ होती है रथों की दौड़।
3: अरे वो देखो वो देखो,
0: क्या
3: रथ की दौड़ शुरू हो गई। अरे वो देखो तो रेस शुरू हो गई।
0: अरे क्या बांके और सजीले सवार है। वाह वाह
3: वाह वाह वाह वाह, देखो देखो वो देखो बीच वाला रथ
4: लगता नहीं जीतेगा।
5: वो पहुंच गया, जीत गया, जीत गया, धन्य हो धन्य हो।
2: इस वर्ष के रथों की दौड़ के आयोजन में विदेह का रथ विजेता घोषित किया जाता है।

ये आयोजन सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं था, इसमें राजा की शक्ति की परीक्षा भी होती थी। उत्तर वैदिक काल में राज्यों का विस्तार हो रहा था। राजा की शक्ति, पदवी और दबदबा बढ़ गया था। करों की वसूली होने लगी थी। राजकोष में खूब धन जमा होने लगा था। राजकाज चलाने में पुरोहित, सेनापति, रानियां और कुछ अन्य अधिकारी भी मदद करते थे। ग्राम पंचायतें प्रशासन संभालती थी। राजा को गांव से बड़ी मदद मिलती थी। उत्तर वैदिक काल में राजा की कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। युद्ध के मौके पर गांव और कबीलों से लोगों को इकट्ठा करके सेना बनाई जाती थी। शिक्षा के लिए बालकों को गुरुकुल में जाना पड़ता था। गुरुकुल वनों के शांत और सुरम्य स्थानों पर बनाए जाते थे।

गुरुकुल के सभी ब्रह्मचारी मेरी बात को ध्यान से सुने, सावधान होकर सुने, क्योंकि मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार दे रहा हूं। और समाचार ये है कि आज शाम तक आचार्य शाकल्य यहां पहुंच जाएंगे। उनके स्वागत का पूरा प्रबंध कर लिया गया है, ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन उसी बात को दोहराने के लिए मैं यहां इसलिए उपस्थित हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे आश्रम की जो प्रतिष्ठा और परंपरा रही है वो सर्वदा बनी रहे। इसके लिए जरूरी है कि स्वागत कार्य के लिए

0: ये जिस ब्रह्मचारी को जो भी कार्य सौंपा गया है उसे पूरा करने के प्रयास में तुरंत लग जाए। अंत में मैं धन्यवाद कहूंगा कि आपने मेरी बात को पूरी शांति से सुना और समझा। धन्यवाद
1: मित्र। कुलपति का आदेश सुना तुमने?
2: कैसा आदेश मित्र? मुझे तो कुछ भी नहीं सुनाई पड़ा। मैं तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या में ही उलझा था कि आज एक और समस्या आ गई। गुरुजी कह रहे हैं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, अर्थात पूरे में से पूरा निकाल देने पर भी पूरा ही बच जाता है।
1: भोले ब्रह्मचारी, अब इस उलझन को छोड़ो और कुलपति के आदेश पर ध्यान दो और आचार्य शाकल्य के स्वागत की तैयारी में लग जाओ। सुना है आचार्य आयुर्वेद आदि अनेक विद्याओं के पंडित हैं।
2: अच्छा,
1: वे हमारे गुरुकुल में कुछ दिन रहकर छात्रों को इन विषयों की विशेष शिक्षा देंगे।
3: अरे वो देखो कितना सुंदर घोड़ा है।
4: अरे हाँ, चलो पास से देखते हैं।
3: चलो चलो।
4: अरे देखो कितना अच्छा घोड़ा।
1: वाह, इसकी काठी तो देखो कितनी सुंदर है।
4: इसे पकड़ लेते हैं। चलो
3: चलो।
4: अरे वाह, अरे अरे, चलो इसे पकड़ लेते हैं।
3: अरे ये पकड़ा।
2: अरे ये कोलाहल कैसा है?
5: छोड़ दो। ये महाराजा धीराज जन्मेजय का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है। तुम्हें इसके मस्तक पर सम्राट का विजय पत्र नहीं दिखा? इस घोड़े की सुनहरी लगाम और काठी तो दूर से दिख जाती है। छोड़ दो, शीघ्र छोड़ दो, नहीं तो हमारे तीरों के तीखे प्रहार सहने पड़ेंगे।
2: अरे ये तो हमारे गुरुकुल के एक क्षत्रिय कुमारों ने घोड़े को पकड़ रखा है। अरे इन पर तो सैनिकों की चेतावनी का भी कोई असर नहीं हो रहा है।
3: अरे चलो चलो भाग चले, आचार्य को बता दें, कहीं क्षत्रिय कुमार सैनिकों से युद्ध ही ना कर बैठे।
2: अरे रुको तो सही। अरे देखो
3: क्या
2: आचार्य तो वही पहुंच गए हैं। और हाँ, वो देखो आचार्य की आज्ञा मानकर क्षत्रिय कुमारों ने उस घोड़े को छोड़ भी दिया है।
3: हाँ, अच्छा हुआ संकट टल गया। अब ये सैनिक इस घोड़े को सारे राज्यों में घुमाकर हस्तिनापुर ले जाएंगे।
2: हाँ।
3: जहाँ अश्वमेध यज्ञ करके महाराज जन्मेजय चक्रवर्ती सम्राट बन जाएंगे।
2: हाँ।
3: उनका प्रभाव कीर्ति और ख्याति चारों दिशाओं में फैल जाएगी।
6: और इसी तरह राजा की शक्ति और सत्ता धीरे धीरे बढ़ती गई।

0: कबीले के सरदार से वो चक्रवर्ती सम्राट बने, फिर उनके बेटे सम्राट बने और फिर उनके बेटे। इस तरह राज पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। उत्तर वैदिक काल धीरे धीरे समाप्त हो गया और ये सम्राट एक काल को दूसरे काल से जोड़ते चले गए।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम उत्तर वैदिक काल, और इसी के साथ अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे NCERT नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है।

0: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। गाने सुहाने, ये फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे अब से कुछ ही क्षणों में।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है कली कली।
4: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
5: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
4: करिए अपने मनपसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
5: प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
4: गाने के बोल,
5: गीतकार
4: और संगीतकार,
5: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
4: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
5: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास। गाते
4: गाते गुनगुनाते
5: सुनिए सुबह 10:05 पर।
4: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।

आइए अब हम आपको ले चलते हैं फिल्म संगीत के साथ उस सफर पर जहां आपको मिलेंगे बहुत ही खूबसूरत नगमे। तो सबसे पहला गाना आपके लिए, फिल्म है तुमको ना भूल पाएंगे, अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाज, संगीत दिया है डब्बू मलिक ने और बोल है सलीम बिनचौरी के।

आइए अब सुनते हैं अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो की आवाज और साथियों की आवाज में ये गीत। फिल्म है चोरी चोरी चुपके चुपके। संगीतकार है अनु मलिक और बोल है समीर के।

0: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
1: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
2: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
2: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
2: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
1: For details, log on to www.ddindia.com।
3: स्वच्छता का संदेश फैलाओ, हर जगह सफाई लाओ,
4: कूड़ा कचरा सही जगह डालो, स्वच्छता की आदत अपनाओ,
3: साफ सफाई से जीवन सुहाना, स्वस्थ समाज का सपना सजाना,
4: गली मोहल्ला शहर हर क्षेत्र हो चमकदार, स्वच्छता का नियम सबको समझाओ बिरियार।

रिफ्यूजी का गाना सुनने जा रहे हैं अब आप। सोनू निगम की आवाज और उनका साथ दे रही है अलका याग्निक। संगीत अनु मलिक का है।

0: रिफ्यूजी फिल्म के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाने सुहाने अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत।
1: बहुत कीमती है,
2: उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिया के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
4: आरएचएल गोल्ड टीएमटी सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
5: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
6: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीडा,
7: बीटेक पॉलिटेक्निक, MBA, MCA, BBA, BCA, D-Pharma, B-Pharma और M-Pharma में एडमिशन्स शुरू हो गए हैं।
6: 300 कंपनीज में प्लेसमेंट्स, स्कॉलरशिप और इजी फी इंस्टॉलमेंट की सुविधा भी।
7: विजिट KIPM गीडा गोरखपुर।
8: गुनगुना रहे हैं भंवरे, खिल रही है कली कली।
9: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
10: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
9: करिए अपने मन पसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
10: प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
9: गाने के बोल,
10: गीतकार
9: और संगीतकार
10: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
9: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
10: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास। गाते
9: गाते गुनगुनाते
10: सुनिए सुबह 10:05 पर।
9: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।

सुगम संगीत में आज सुनिए अलका याग्निक और हरिहरन की आवाज़।

0: तुम आए हो तो उजाला सा लग रहा है, वरना इस घर में तो हमेशा रात रहती थी। श्रोताओ, यहाँ हम लेते हैं एक छोटा सा अंतराल, बस हम यू गए और यू आए।
1: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहने, कूलर की नियमित सफाई करें और अन उपयोगी वस्तुओं में पानी न जमा होने दें।
2: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, हर टन में ज्यादा लंबाई ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
5: जब दिल ने किसी को याद किया हो, जब कोई धुन दिल में उतर गई हो और कभी किसी को सुनाना हो कोई गीत, तो बस आपका अपना कार्यक्रम हेलो फरमाइश लेकर आ रहा है आपके दिल की आवाज, जहां आपके प्यार भरे संदेश और आपके पसंदीदा गीत बनेंगे किसी की मुस्कान। तो उठाइए फोन, कीजिए हमें कॉल हर शनिवार सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0551-220-5386 और आप इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं हर रविवार 10:05 पर। हमें रहेगा आपका इंतजार, जहां दिलों की दूरियां गीतों से मिटती हैं।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, हर टन में ज्यादा लंबाई, ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।

0: जब दिल ने किसी को याद किया हो, जब कोई धुन दिल में उतर गई हो और कभी किसी को सुनाना हो कोई गीत, तो बस आपका अपना कार्यक्रम हेलो फरमाइश लेकर आ रहा है आपके दिल की आवाज, जहां आपके प्यार भरे संदेश और आपके पसंदीदा गीत बनेंगे किसी की मुस्कान। तो उठाइए फोन, कीजिए हमें कॉल हर शनिवार सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0551-220-5386 और आप इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं हर रविवार 10:05 पर। हमें रहेगा आपका इंतजार, जहां दिलों की दूरियां गीतों से मिटती हैं।
1: हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे इलाकाई खबरें।

0: महकमा मौसमियात ने रियासत के बेशतर अजला के लिए 3 दिन की शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
1: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं उर्दू प्रोग्राम जिसे लेकर आ रहे हैं शफकत अली खान।
2: उर्दू प्रोग्राम के सामईन की खिदमत में शफकत अली खान का सलाम कबूल हो। सामईन, आज के उर्दू प्रोग्राम का आगाज करने तकरीर के साथ। मौजू है वजीर आजम का अकलियतों की फलाह के लिए प्रोग्राम के तहत पोस्ट मैट्रिक और प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप। वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने अकलियतों की फलाह व बहबूद के लिए बहुत सारी स्कीमें चलाई हैं जिनका मकसद अकलियतों की तालीमी, माशी और समाजी तरक्की को यकीनी बनाना है। इनमें सबसे नुमाया स्कीम है प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम PMJVK। यहाँ उन अहम तरीन स्कीमों की तफसीलात दी जा रही है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम PMJVK ये अकलियती उमूर की वजारत का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। अकलियती अक्सरती इलाकों में बुनियादी ढांचे की तरक्की पर तवज्जो मरकूज करता है। मकसद अकलियती बरादरियों के लिए स्कूलों, कॉलेजों, हॉस्टल, हस्पताल, हुनरमंदी की मराकज, स्किल सेंटर और कम्युनिटी हॉल जैसी बुनियादी सहूलियात फराहम करना है। तालिब इल्मों को मियारी तालीम के हुसूल और माली तआवुन फराहम करने के लिए हुकूमत हिंद ने मुख्तलिफ स्कॉलरशिप चला रही है। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप पहले से 10वीं जमात तक के लिए तलबा के लिए। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 11वीं जमात से लेकर के आला तालीम हासिल करने वाले तलबा के लिए।
3: सामईन, अभी अभी तकरीर समाज फरमा रहे थे। मौजू था वजीर आजम का अकलियतों की फलाह के लिए प्रोग्राम के तहत पोस्ट मैट्रिक और प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप। सामईन, अब हम आपको वादे शेर सुखन की जानिब ले चलते हैं। कलाम शायर के तहत समाज फरमाइए जनाब खुर्शीद जफर हल्लौरी से उनका कलाम।
4: शेर हाजिर है। उनकी यादें, उनकी बातें, उनका तसव्वुर शाम सहर। उनकी बातें, उनकी यादें, उनका तसव्वुर शामो सहर। वक्फ किए अपने माजी को हाल के ये दिन रात तमाम। वक्फ किए अपने माजी को हाल के ये दिन रात तमाम। दाग जिगर का जख्मी दिल और आहें आंसू तन्हाई। दाग जिगर का जख्मी दिल और आहें आंसू तन्हाई। मुझको मिली महबूब से अपने उल्फत में सौगात तमाम। मुझको मिली महबूब से अपने उल्फत में सौगात तमाम। शेर हाजिर खिदमत है कि दौलत व सरवत, सितवत व शौकत, अजमत व शोहरत कुछ भी नहीं। दौलत व सरवत, सितवत व शौकत, अजमत व शोहरत कुछ भी नहीं। कहते हैं माजी के फसाने, महलों के खंडरात तमाम। कहते हैं माजी के फसाने, महलों के खंडरात तमाम। अर्ज किया है कि ख्वाबों के जो महल बनाए आस के तिनके चुन चुन कर। ख्वाबों के जो महल बनाए आस के तिनके चुन चुन कर। उनके तगाफुल ने ढाई वो दिल की तामीरात तमाम। उनके तगाफुल ने ढाई वो दिल की तामीरात तमाम। शेर हाजिर कर रहा हूं कि देश की आजादी के लिए जो हर लम्हा हर आन लड़ी। देश की आजादी के लिए जो हर लम्हा हर आन लड़ी। भूल गए क्या अहले वतन तुम उर्दू की खिदमात तमाम। भूल गए क्या अहले वतन तुम उर्दू की खिदमात तमाम। तेरी गजल से, तेरे हुनर से जिनको लगाओ है जफर। तेरी गजल से, तेरे हुनर से जिनको लगाओ है जफर। बरसरे महफिल आज नजर आते हैं वो हजरात तमाम। बरसरे महफिल आज नजर आते हैं वो हजरात तमाम। दिगर गजल का मतलब समाप्त फरमाए। गुम हो गया कहां तेरा नामो निशान ढूंढ। गुम हो गया कहां तेरा नामो निशान ढूंढ। महलों के ख्वाब छोड़ के कच्चे मकान ढूंढ। अर्ज किया है कि मिलता नहीं सुकून अगर कायनात में। मिलता नहीं सुकून अगर कायनात में। پھر تو نئی زمین

और वो लाचार कुछ कर भी नहीं पाएगा। उठकर बैठते हुए सावित्री सोमनाथ से तसल्ली आमेज लहजे में बोलती है, अजी चिंता काहे इतना कर रहे हैं, इस बरस आपका काम तो पूरे 100 दिन तक चला है, 15,000 तो मिल ही जाएंगे, अपने पास के बाकी पैसों को मिला दिया जाए तो 35-40 हज़ार तो हो ही जाएंगे, गहने तो खरीदना नहीं, हमारा जो है वो कुल सोना का ही तो है। रही बात लड़के की, तो मेरी मौसी के लड़के का बेटा है ना रमेश, सुना है कि सफाई कर्मी में नौकरी लग गई है, वो लोग बहुत अच्छे हैं, और फिर अपने सोना में क्या कमी है, 9वीं में पढ़ रही है और सुंदरता में कोई जवाब नहीं है, एक ही नज़र में वो सोना को पसंद कर लेंगे। सोमनाथ चुपचाप बीवी की मासूमियत से भरी बातों को सुन रहा था, पहलू बदलते हुए बोला, सब कुछ इतना आसान नहीं है सावित्री जैसा तुम सोच रही हो। अरे तुम 15,000 मिलने की बात कर रही हो, इसमें से बाबू लोगों का हिस्सा कहाँ जाएगा, बेचारे वो हमारे लिए कितना दौड़ धूप करके काम निकलवाते हैं, पिछले साल तुमने देखा नहीं 50 दिन के काम का केवल 5,000 ही मिले थे। सावित्री इस बात में सर हिलाते हुए बोली, सो तो है, लेकिन इस बरस कुछ भी करके बिटिया के हाथ पीले करने ही हैं, और हाँ कल आपका नहर के पुल वाला काम भी तो पूरा हो जाएगा, अब सो जाइए, कल काम पूरा करके जब आना तो फुर्सत में सोना के बारे में बात करेंगे। सावित्री ने हाथ बढ़ाकर लालटेन की लौ को एकदम धीमा कर दिया, दूसरी तरफ मुंह करके लेट गई, लेकिन आंखों से नींद उसकी भी कोसों दूर थी। सोमनाथ सीधा लेट जाता है, उसने गर्दन घुमाकर पास ही में लेटी सोना पर नज़र डाली तो मन में बेपनाह प्यार उमड़ आया। छप्पर की झोपड़ी में वो जिस तरफ भी नज़र दौड़ाता उसे काले साए चलते फिरते नज़र आते। घबराकर उसने अपनी आंखों को जोर से भींच कर बंद कर लिया। बंद आंखों के सामने उसे हल्की हल्की जुगनुओं जैसी रोशनी की किरणें तैरती हुई नज़र आईं, लेकिन धीरे धीरे सब अंधेरे में तब्दील हो गए। जल्दी करो सावित्री, लेट हो रहा हूँ, सब लोग काम पर जा चुके होंगे, कब से गमछा मांग रहा हूँ। सावित्री दौड़ती हुई आई और गमछे को शौहर के कंधे पर डालते हुए बोली, संभाल कर काम करिएगा और अगर आज काम जल्दी ख़त्म हो जाए घर ज़रा जल्दी आइएगा। निकलते हुए सोमनाथ ने अपनी बेटी सोना को देखा जो स्कूल जाने से पहले बालों में चोटी कर रही थी। बेख्तियार वो उसके पास जाकर सर पर हाथ फिराते हुए बोला, खूब मन लगाकर पढ़ना बिटिया और खूब ज़्यादा पढ़ना। चेहरे पर एक चमक लिए वो काम पर निकल जाता है। पुल का काम जोरों पर था। सोमनाथ को देख ठेकेदार ने चिल्लाकर बोला, बड़ी जल्दी आ गए सोमई महाराज, अभी तो 9 ही बजे हैं, नहारी करके ही आते। चोर नज़रों से देखते हुए सोमनाथ आगे बढ़ गया और नहर में उतरकर पुल के नीचे की मिट्टी को भर भर कर फेंकने लगा। गुज़श्ता कल सभी मजदूरों ने यह प्लानिंग कर ली थी कि आज काम ख़त्म करके ही दम लेंगे। हर कोई अपने अपने काम में लगा हुआ था। सीमेंट बालू और मिट्टी का गुबार उठ रहा था। लोहे पत्थर और ईंट की धप ठंड और टन टन की आवाज़ों से माहौल में गजब की गर्मी थी। एक बड़े से लोहे को देखकर उसे मोड़ने के लिए शंकर ने जोर से हथौड़ा मारा तो पुल हिल गया। सभी उसकी तरफ देखने लगे और फिर हंसकर अपने अपने काम में लग गए। ठेकेदार जो ज़रा दूर सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहनकर अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ मोबाइल में मशगूल था, गाली देते हुए बोला, ज़रा संभल कर रे शंकर। जी मालिक, बोलकर शंकर ने दोबारा से भारी भरकम हथौड़े को लहराकर जो जोर से मारा तो पुल उसकी जानिब से भरभराकर जमींदोज हो गया। फिजा में एक साथ कई चीखें फैल गईं, सारे मजदूर शोर मचाने लगे, गांव वाले भी भागते हुए वहां जमा हो गए। सभी एक साथ मलबे को हटाकर मजदूरों को निकालने लगे। सावित्री बदहवासी के आलम में अपने शौहर को डबडबाई आंखों से ढूंढ रही थी, तभी किसी की आवाज़ सुनाई दी, कोई सोमई को निकालो, वो नीचे दब गया है, वो मर जाएगा। सावित्री चीखते हुए नीचे कूद गई और हाथों से मलबा हटाने लगी। लोगों ने अधमरे सोमनाथ को जल्दी से मलबे से निकालकर ट्राली पर दूसरे जख्मियों के साथ लाद शहर के अस्पताल में पहुंचा दिया। सावित्री बदहवासी के आलम में कभी ठेकेदार के सामने गिड़गिड़ाती तो कभी डॉक्टरों के पैर में गिर जाती, बचा लो साहब सोना के बाबूजी को, उनके सिवा हमारा यहाँ कोई नहीं है। डॉक्टरों ने 30,000 रुपये की डिमांड कर दी, जल्दी जमा कराओ नहीं तो बचाना मुश्किल होगा। ठेकेदार ने हाथ खड़े करके बोला, देखो सावित्री, सुमई अकेला नहीं है, और भी लोग जख्मी हैं, मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा, एक काम करो अपनी जमा पूंजी देकर किसी तरह उसे बचाने का जतन करो, बाद में देखा जाएगा। सावित्री ने घर की सारी जमा पूंजी ले जाकर अस्पताल में दे दिया, लेकिन पैसों से जान कहाँ तक बचाई जा सकती है। सोमनाथ जिंदगी की जंग हार गया, लेकिन असल जंग तो सावित्री हारी थी। उसकी तो दुनिया ही उजड़ गई, ऐसा लग रहा था कि एक तूफान सा आया और सब कुछ उड़ा कर लेकर चला गया।
पत्थर की मूरत में तब्दील सावित्री के तो आंसू भी खुश्क हो गए थे। वो जिंदा लाश बनकर

0: रह गई। कुछ दिनों तक तो रिश्ते नातेदारों ने उसे संभाला, लेकिन कब तक? एक एक करके सबने हाथ खींचना शुरू कर दिया। मजबूरन बिना संदूर के कई महीनों बाद वो घर से निकली। सोना और अपनी हालत देखकर उसे घर से बाहर कदम उठाना ही पड़ा। बोझल कदमों से वो गांव की गलियों से आगे बढ़ रही थी। उसकी नज़रें झुकी हुई थीं, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि सब उसे ही देख रहे हैं। सूरज के गुरूब होने से पहले का वक्त था। ठेकेदार घर के सामने लकड़ी की कुर्सी पर बैठकर चाय की चिस्की ले रहा था। सावित्री को देखकर उठकर खड़ा हो गया। ठेकेदार के सामने पहुंचते ही सावित्री के जब्त का बांध टूट गया। आंखों से धारे बहने लगे। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। अरे अरे, तुम रो क्यों रही हो? देखो, ईश्वर ने बहुत गलत किया है तुम्हारे साथ, लेकिन तुम घबराओ नहीं। ठेकेदार की आंखों में हल्की हल्की सुर्खी दौड़ने लगी। पास ही में बैठा उसका कुत्ता दुम हिलाने लगा। पेड़ों पर जो चिड़िया चहचहा रही थीं, वह अपने घोंसलों में जाकर दुबक गईं। सावित्री के पास जाकर उसने इधर उधर देखा और बोला, सोमनाथ चला गया है, लेकिन तुम अपने आप को अकेला मत समझना। मुझसे जो हो सकेगा मैं तुम्हारे लिए करूँगा। इतना कहते हुए उसने अपना हाथ सावित्री के कंधे पर रख दिया। एक झटके के साथ सावित्री दूर खड़ी हो गई। उसके बदन में जैसे बिजली सी दौड़ गई थी। गुस्साई नज़रों से देखते हुए कहा, देखो ठेकेदार साहब, हमको अपने घर में आने जाने वाली गांव की दूसरी औरतों की तरह मत समझना। हमसे थोड़ा दूरी बनाकर ही रखना। हम यहाँ आपकी दया के लिए नहीं आए हैं। सोना के बाऊजी की जो मजदूरी है उसे दे दो, हम चले जाएंगे। निगाहों से शोले बरसाते हुए ठेकेदार करख्त आवाज़ में बोला, कैसी मजदूरी? कहाँ की मजदूरी? जिसने काम किया था उसे ले आओ, अंगूठा लगवा कर ले लो मजदूरी। चलो यहाँ से, और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। कहरालू नज़रों से सावित्री को घूरता हुआ ठेकेदार घर में चला गया। उसको जाते हुए देखकर सावित्री का एक वक्त तो मन किया कि जाकर पैरों में गिर जाए, गिड़गिड़ाए, लेकिन कुछ सोचकर अपने आंसुओं को पोंछते हुए वो भी फातिहाना अपने घर की तरफ रवाना हो गई।
1: सामिन, अभी आप डॉक्टर अली मुल्ला से उनका अफसाना समाज फरमा रहे थे। अब सामिन, प्रोग्राम का आखिरी पेश खिदमत है जगजीत सिंह की आवाज़ में यह खूबसूरत गज़ल।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
4: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
5: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
5: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
5: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
4: For details, log on to www.ddindia.com।
6: स्वच्छता से बदले अपना परिवेश, स्वच्छ जीवन की ओर एक कदम बढ़ाएं।
7: स्वच्छता अपनाएं, स्वास्थ्य का आनंद उठाएं।
6: गंदगी हटाओ, स्वच्छता लाओ, स्वस्थ जीवन जीने का सपना साकार करो।
7: स्वच्छता की आदत स्वस्थ जीवन की शुरुआत।

0: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलो हर्ट्ज और FM 100.1 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। खेती किसानी कार्यक्रम में किसान भाई आज सुनिए भेंट वार्ता। विषय है अरहर की प्रजातियों और बुवाई विधि। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अंगद प्रसाद, आपसे बातचीत कर रहे हैं विनय कुमार।
1: अपने यहाँ बारहो मास जौन दाल खाई जाला ओकर ज्यादातर हिस्सा अरहर का होला, जौन के हमन का रहर के भी नाम से जानल जाला। अपने यह पूर्वांचल से अरहर का खेती धीरे धीरे काफी कम हो गई बा। एकरे पीछे कई कारण बा। अच्छा बीज क, उकठा लगला क, बंझा वाली अरहर क, लेकिन समय के साथ तकनीकी बदलल, हर चीज का व्यवस्था कैल गई। अगर आपके पास खेत अबहियों खाली बा तो यह साल बरसात में अरहर का आप खेती कर सकेली। एकरे बारे में जानकारी देवे खातिर आज अपने साथ हैं फोन लाइन से डॉक्टर अंगद प्रसाद, वरिष्ठ शस्य वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र पिलखी जनपद मऊ। डॉक्टर साहब, आप ही बताई कि अरहर का जौन बीज उत्पादन कैला का तकनीकी है, वो सामान्य जौन खाए वाली अरहर है ओकरा से कौना तरीका से भिन्न है? का अरहर के खेती बीज और खैला दोनों खातिर कैला में फर्क का पड़ेला?
2: किसान भाई, अरहर जो हम बोते हैं खाने के लिए और बीज, पहले तो आप समझ लीजिए बीज और उसमें अंतर क्या है। जिसकी जर्मिनेशन कम होती है वो हम खाने के लिए यूज कर लेते हैं, और जिसकी जर्मिनेशन 80% 85% रहती है उसको हम बोने के लिए यूज करते हैं, उसका प्रयोग हम बोने के लिए करते हैं। तो किसान भाइयों, पूर्वांचल के लिए जो सबसे अच्छा तरीका है, मेड़ पे अगर आप बुआई करते हैं तो 60 सेंटीमीटर उसकी लाइन से लाइन दूरी करते हैं और पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर रखते हैं। अगर इस तरीके से हम बुआई करते हैं तो हमको दवा छिड़कने में या उसमें खरपतवार ना जो निकालने में ये ज्यादा आसानी हो जाता है। साथ ही साथ हम ये देखते हैं उसकी उत्पादन भी, जो हम छिटकुआ विधि से बोते हैं उससे उसकी पैदावार अधिक होती है। छिटकुआ विधि में क्या है, जो छिटकुआ विधि से बोते हैं उसमें हमारी अरहर का सीड ज्यादा लगता है और जो हम लाइन से बोते हैं उसमें कम लगता है। जैसे हम जो सीड बोल्ड होता है, जिसके दाने बड़े होते हैं, उसको 15 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर उसकी सीड रेट रखते हैं। जिसके दाना छोटा होता है उसको 12 से 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से हम बुआई करते हैं। उसी तरीके से अगर छिटकुआ बोएंगे तो ज्यादा सीड लगेगा और लाइन से बोएंगे तो हमारा सीड रेट कम हो जाएगा। दूसरी बात, कोई भी बीज बोते हैं हम दलहनी का तो हम उसको बीज उपचार जरूर करते हैं। बिना बीज उपचार किए अगर हम बुआई कर देते हैं तो उसमें तमाम तरीके के रोग लग जाते हैं और उस फिर रोग से निदान नहीं पाते हैं। तो बीज बोने से पहले हम उसको 2 ग्राम थीरम या कार्बेंडाजिम किसी एक से 2 ग्राम मात्रा लेकर के 1 किलो बीज के लिए पर्याप्त होता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक बहुत बड़ी इसमें कमी रह जाती है, किसान भाई राइजोबियम कल्चर का प्रयोग नहीं करते हैं। उसके लिए भी हमें राइजोबियम कल्चर का प्रयोग करना चाहिए। 10 किलोग्राम सीड के लिए 200 ग्राम का एक राइजोबियम कल्चर आता है पैकेट, आप उसको लीजिए और अच्छी तरीके से पहले आप बीज को उपचारित कर लीजिए। बीज उपचारित करने के बाद आप राइजोबियम कल्चर का 10 किलोग्राम सीड के लिए एक पैकेट राइजोबियम कल्चर उसको 1 लीटर पानी में मिला करके और अच्छी तरीके से उस पर फैला दीजिए। जब फैलाने के बाद थोड़ा सूख जाए छाए में रख के, और शाम की तरह जब भी आप बुआई करेंगे तो शाम के समय बुआई करें, क्योंकि अगर आप धूप में इसका बुआई कर देंगे तो राइजोबियम कल्चर मर जाएगा। तो ये भी ध्यान देना है कि हम जब भी इसकी बुआई करेंगे अरहर की तो शाम के समय हमको इसकी

0: करना है।
1: अरहर का उन्नतशील प्रजाति कौन है जेकर यह साल बुआई करे के चाहिए?
0: देखिए जुलाई महीना चल रहा है, जो अगेती प्रजाति थी वो जून के प्रथम सप्ताह में बुआई की जाती थी, लेकिन अब इस समय जो बोने का समय है जुलाई महीना चल रहा है, इस समय कई वैरायटियां हैं आप जिसकी आसानी से बुआई कर सकते हैं, जैसे नरेंद्र अरहर एक है, नरेंद्र अरहर दो है, आजाद है, पूसा नाइन है, मालविया है, मालवीय चमत्कार है, इन सब की बुआई आप इस समय कर सकते हैं। एक वैरायटी है राजेंद्र अरहर वन, ये अभी हाल ही की रिलीज हुई है, 2015 की है, राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से निकली हुई है, इसकी भी पैदावार 25 से 30 कुंटल पर हेक्टेयर है, और ये बाज अवरोधी उकठा अवरोधी प्रजाति है, और जितनी भी प्रजाति मैं आपको बता रहा हूँ ये 260 से 270 दिन में ये पक कर के तैयार हो जाएंगी। साथ ही साथ ये आप अपने पूर्वांचल के लिए बहुत अच्छी प्रजातियां हैं, इसका समय समय पे आप थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो अच्छी पैदावार ले सकते हैं। इसमें आप कुछ उर्वरकों का प्रयोग मैं बताता हूँ, जैसे आपकी मिट्टी जैसे भी हो आप एक बार जांच करवा लीजिए, उस हिसाब से आप 15 से 20 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग करिए और 40 किलोग्राम डीएपी, 20 किलोग्राम पोटास, ये आप पर हेक्टेयर की दर से आप इसकी बुआई करते समय इसका प्रयोग करें। साथ ही साथ किसान भाई जब बुआई करते हैं तो देखते हैं अरहर में सबसे बड़ी समस्या खरपतवार की आती है, किसान भाई इसीलिए डरते हैं कि बहुत सारा खरपतवार उग जाता है तो उसको बोने से लिए पीछे हटने लगते हैं, जिससे वो समस्या पैदा होती है, उसके निदान के लिए आप बुआई के 72 घंटे के अंदर एक दवा आती है पिंडामिथिलीन, पिंडामिथिलीन का प्रयोग 3.3 लीटर पर हेक्टेयर के हिसाब से आप बुआई के 72 घंटे के अंदर अगर आप प्रयोग कर देंगे तो आपके खेत में खरपतवार कम उगेंगे, अगर उग भी जाते हैं थोड़ा बहुत खरपतवार तो आप उसको निराई गुड़ाई करके खत्म कर सकते हैं। इस तरीके से कुछ प्रजातियों का आप सिलेक्शन कर लीजिए और इन्हीं प्रजातियों की बुआई करिए, और इसमें अगर आपके खेत में कोई और रोग लग रहा हो या कीड़े मकोड़े लग रहे हो तो उसके लिए भी आप पहले से ही नीम आयल आता है 5% का, 2 ml दवा 1 लीटर पानी में मिला करके फूल आने के बाद आप उसमें स्प्रे कर देंगे तो जो कीड़े लगते हैं फली बनते समय वो कीड़े नहीं लगेंगे, तो उससे भी आपकी पैदावार अच्छी हो जाएगी। अगर इसमें सिंचाई की बात आती है तो सिंचाई की एक ही आवश्यकता पड़ती है, कभी कभार जैसे बारिश नहीं होता है तो आप इसकी एक अवस्था आती है जब वो फलियां बनती है, अगर आवश्यकता हो तो एक सिंचाई आप उस समय कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, यह समय जितना आप प्रजात बतौली हैं ओकर बीज ले लोग और खेत के खूब बढ़िया से तैयार करके ओमे फास्फोरस वाली उर्वरक और खाद के रूप में जो घरेलू खाद बा गोबर कंपोस्ट का डाल के खूब बढ़िया से लाइन से अरहर का बुआई करें, हो सके अगर उनके पास मशीन होके तो बुआई कैला के बाद मेड़ भी चढ़ा दें, मेड़ पर कैला से उत्पादन अपने आप बढ़ जाए और बरसात में जौन पानी से अरहर गले ले ओकर भी नियंत्रण हो जाए।
2: खेती किसानी कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे, इसके अंतर्गत आपने सुना भेंट वार्ता, विषय था अरहर की प्रजातियां और बुवाई विधि। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर अंगद प्रसाद, आपसे बातचीत कर रहे थे विनय कुमार। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 kHz और FM 100.1 MHz पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है।

0: भारत और ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। साइबर प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर ऑस्ट्रेलिया भारत साझेदारी की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच मेलबर्न में वार्षिक शिखर वार्ता। श्री मोदी ने कहा, द्विपक्षीय संबंध गहरे आपसी विश्वास पर आधारित विस्तृत युग में प्रवेश कर चुके हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया। मॉनसून पूरे देश में सक्रिय, लगातार बारिश से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित। उत्तराखंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत वयस्कों के लिए निर्धारित साक्षरता मानकों को प्राप्त कर पूर्णतः साक्षर राज्य बना। और वियतनाम में होने वाले पिकलबॉल विश्व कप 2026 के लिए भारतीय दल की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज विक्टोरिया के गवर्नमेंट हाउस में आयोजित 30वें भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री अल्बनीज ने संयुक्त वक्तव्य दिया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी बदलाव का स्वागत किया और क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा तथा प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक रूपरेखाओं को अंतिम रूप दिया।
1: यह महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन एक ऐतिहासिक परिवर्तन को दर्शाता है, जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार कर रहे हैं। पारंपरिक व्यापार से हाईटेक डिफेंस कॉरिडोर की ओर बढ़ने, महत्वाकांक्षी सीका समझौते में तेजी लाने और ऐतिहासिक परमाणु समझौते के अंतर्गत लंबे समय के लिए यूरेनियम निर्यात शुरू करने जैसी पहलों से दोनों देशों के बीच आपसी भरोसा को अभूतपूर्व स्तर पर पहुंचाया गया है। जहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने कहा कि 10 लाख लोगों का भारतीय प्रवासी समुदाय इस साझेदारी की असली धड़कन है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के विकास की गति को क्रिकेट की तरह बताया।
2: क्रिकेट भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों की अपनी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, इसलिए हमारी मीटिंग भी क्रिकेट जैसी लगती है। एजेंडा वनडे जैसा फोकस है, डिसीजन T20 जितने तेज है और पार्टनरशिप टेस्ट मैच जितनी लंबी और गहरी।
1: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी भविष्य के लिए निर्मित एक सुदृढ़ और स्थायी संबंध है। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध गहरे पारस्परिक विश्वास के आधार पर एक नए युग में प्रवेश कर चुके हैं। शिखर वार्ता की प्रमुख उपलब्धियों में आर्थिक और व्यापारिक सहयोग को नई गति देना शामिल रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
2: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूपटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि रणनीतिक प्रौद्योगिकी और संसाधन सुरक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया भारत साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज और सप्लाई चेन साझेदारी को क्रियान्वित किया गया और महत्वपूर्ण खनिज कॉरिडोर की स्थापना की गई।
2: हमने सीका पर तेजी से काम करने का निर्णय लिया है, जो दोनों देशों के लिए बैलेंस एम्बिशियस। हम बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर भी तेजी से आगे बढ़ेंगे। हमारी रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप, क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट एक्शन में हमारे प्रयासों को साकार रूप दे रही है। इसके तहत हम इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कोलैबोरेशन पर विशेष बल दे रहे हैं।
0: हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए दोनों नेताओं ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर ऐतिहासिक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। वार्षिक रक्षा मंत्रियों के संवाद को संस्थागत रूप दिया गया तथा समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप का शुभारंभ हुआ।
2: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग,

0: रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
1: शिक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग पर अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इसके तहत ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों के नए शाखा परिसर बंगलुरु और गुरुग्राम में स्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भी इस भविष्य उन्मुख साझेदारी को और मजबूत बनाने की बात कही।
2: We share a focus on deepening and diversifying the relationship between our countries.
3: हम दोनों देशों के बीच संबंध को गहरा और विविध बनाने पर ध्यान दे रहे हैं, जिससे हम लगातार मजबूत होते रहे हैं। आज हमने हर पहलू पर चर्चा की। नए और अहम समझौतों के माध्यम से हम रक्षा सुरक्षा, शिक्षा, विज्ञान और तकनीक तथा ऊर्जा सुरक्षा और जरूरी खनिजों के क्षेत्रों में अपने संबंधों का विस्तार कर रहे हैं।
2: And critical minerals.
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच और आर्थिक कार्ययोजना कार्यक्रम को संबोधित किया। ऑस्ट्रेलिया सुपर के 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश का भारत ने स्वागत किया है। मेलबर्न में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पॉल श्रोडर ने इसकी घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया भारत बिजनेस काउंसिल के प्रमुख सदस्य विश्व विश्वनाथन ने मेक विद इंडिया पहल के बढ़ते असर पर जोर दिया। ये समूह रणनीतिक कॉरपोरेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देकर ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया दृष्टिकोण को लागू करने का काम कर रहा है। भारत की अध्यक्षता में आज नागपुर में ब्रिक्स 2026 के तहत तीसरे ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की बैठक हुई। कार्यकारी समूह की इस बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में केंद्रीय परिवहन सचिव वी उमाशंकर ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों ने गतिशीलता, शहरी बुनियादी ढांचा और सतत विकास जैसे मुख्य मुद्दों पर चर्चा की। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भारत ने आज गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के संसाधनों के टिकाऊ इस्तेमाल के लिए एक अहम राष्ट्रीय पहल शुरू करके अपनी समुद्री विकास में एक बड़ा मुकाम हासिल किया। उड़ीसा के एक दिन के दौरे पर आए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दूर के समुद्रों में काम करने वाली भारतीय झंडे वाली मछली पकड़ने वाली नावों के लिए अनुमति पत्र जारी करने की राष्ट्रीय प्रक्रिया की शुरुआत की। इससे जिम्मेदारी से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने और समुद्री संसाधनों को संरक्षण के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार होगा। उन्होंने उड़ीसा डीप सी फिशिंग मिशन डॉक्यूमेंट भी जारी किया, जो राज्य में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को इकोसिस्टम को मजबूत करने और ब्लू इकोनॉमी समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक योजना है। उपराष्ट्रपति ने युवा भारतीयों से मछली पालन को वैश्विक मौके वाला एक आधुनिक विज्ञान आधारित पेशे के तौर पर अपनाने का आग्रह किया।
5: I urge our institutions to continue supporting our fishing community with knowledge, technology and finance. May this historic initiative bring prosperity to every coastal family and contribute significantly to the realization of Viksit Bharat by 2047.
4: Prakash Das, Akashvani Samachar, Bhubaneswar.
1: गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करना तथा कानून प्रवर्तन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उपायों की पहचान कर देश की सीमा सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा शनिवार को हिमाचल प्रदेश के केलोंग में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन और पब्लिक हेल्थ रिसर्च सेंटर की आधारशिला रखेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि यह सेंटर पूरे भारत के हिमालय क्षेत्र में जलवायु अनुकूल हेल्थ केयर और बायोमेडिकल रिसर्च को मजबूत करेगा। कृषि यंत्रीकरण उपमिशन के तहत सरकार ने अब तक देश भर में किसानों को 9,404 करोड़ रुपए मूल्य की लगभग 22 लाख कृषि मशीनें वितरित करने में सहायता प्रदान की है। ये मिशन वर्ष 2014-15 में कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज पुणे मुंबई घाट में रेलवे लाइन की मरम्मत के काम की समीक्षा की। भूस्खलन भीषण था और रेलवे लाइन के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों को भी भारी नुकसान हुआ था। मध्य रेलवे और पश्चिमी रेलवे की टीमें समन्वय से काम कर रही हैं। नीति आयोग ने

0: आर्थिक क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की आवश्यकता पर हितधारकों के साथ परामर्श बैठक आयोजित की। इस बैठक में सरकार, अनुसंधान संस्थानों, शिक्षाविदों और उद्योग जगत के विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और उल्लास नए भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत निर्धारित वयस्क साक्षरता मानकों को हासिल करने के बाद उत्तराखंड देश का छठा पूर्णतः साक्षर राज्य बन गया है। शिक्षा मंत्रालय के अधीन विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा निर्धारित मानकों की पूर्ति के बाद राज्यपाल ने 8 जुलाई 2026 को इस घोषणा को मंजूरी दी। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पूरे देश में सक्रिय हो गया है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों में भी ये आगे बढ़ चुका है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. नरेश कुमार ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मध्यम से तेज बारिश जारी है। दिल्ली वासियों की सुबह मूसलाधार बारिश और आंधी के साथ शुरू हुई। बारिश के कारण कई स्थानों पर जलभराव हो गया, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने हरियाणा सहित राष्ट्रीय राजधानी में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया था।
1: अगर हम आने वाले दिनों की बात करें, सबसे पहले NCR दिल्ली की बात करें, तो NCR दिल्ली के लिए आज के लिए हमारा रेड अलर्ट, हम अनुमान लगा रहे हैं कि जहां आज मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है, इसके अलावा कल ये रेनफॉल एक्टिविटी कम हो जाएगी, परसों हल्का फुल्का रेनफॉल होने का अनुमान है। वेस्ट उत्तर प्रदेश के लिए आज के लिए हमारा रेड अलर्ट है, वहाँ हम एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल अनुमान लगा रहे हैं।
0: मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जगहों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
2: राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। बारिश और भूस्खलन से पर्वतीय जिलों के कुछ राष्ट्रीय मार्गों, राज्य राजमार्गों और ग्रामीण क्षेत्रों के संपर्क मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। बंद सड़कों को खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। आपदा प्रबंधन व पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन ने संबंधित विभागों को किसी भी संभावित आपदा से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए 24 घंटे सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनियों का गंभीरता से पालन करने की भी अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: केरल के अधिकांश हिस्सों में आज बारिश की तीव्रता कम हो गई है। उत्तरी केरल के 5 जिलों में आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये जिले कल रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट पर थे। वायनाड में 5 से 15 मिलीमीटर तक मध्यम बारिश दर्ज की गई। यहां मंगलवार को भूस्खलन हुआ था। भारतीय पिकलबॉल संघ ने 2026 पिकलबॉल विश्व कप के लिए भारतीय दल की घोषणा कर दी है। ये दल एक प्रतिस्पर्धी चयन प्रक्रिया के बाद चुना गया है। 30 अगस्त से 6 सितंबर तक वियतनाम के दानांग में आयोजित होने वाले पिकलबॉल विश्व कप में पेशेवर वर्ग में देश का प्रतिनिधित्व करेगा। अंतर्राष्ट्रीय पिकलबॉल जगत में एक जाना पहचाना नाम हर्ष मेहता दल की कप्तानी करेंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का चौथा मुकाबला आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक लगभग 0.7% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सेंसेक्स 565 अंक चढ़कर 77,069 पर और निफ्टी 168 अंक बढ़कर 24,050 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। साइबर प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर ऑस्ट्रेलिया भारत साझेदारी की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच मेलबर्न में वार्षिक शिखर वार्ता। श्री मोदी ने कहा, द्विपक्षीय संबंध गहरे आपसी विश्वास पर आधारित विस्तृत युग में प्रवेश कर चुके हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया। मॉनसून पूरे देश में सक्रिय, लगातार बारिश से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम एक ही कलाकार से, और आज मैं आपके साथ हूं आपकी दोस्त शिल्पा गोस्वामी। साथियों, आज हम आपको लेकर चलेंगे भारतीय सिनेमा के उस जादुई दौर में जहां कैमरे की हर फ्रेम एक कविता बन जाती थी, हर गीत एक एहसास और हर कहानी इंसानी भावनाओं का आईना बन जाती थी। आज का ये विशेष कार्यक्रम समर्पित है भारतीय सिनेमा के महान अभिनेता, निर्देशक और निर्माता गुरुदत्त साहब को।

0: डाक्टर जस्योन्जन प्यासीको शब्द अनि केपी राईको संगीत रचनामा भर्खरै श्रोताहरूले सुन्नुभयो यो देशभक्ति गीत। यसको साथै हामी बिदा माग्छौ आकाशवाणीको नेपाली प्रसारण सेवाबाट।
1: मिडियम वेभ 330.03 मिटर यानी 909 किलो हर्ट्ज और एफएम 100.1 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।
2: आज हामी यो साप्ताहिक प्रगतिमा उपस्थित भएका छौं। एउटा छुट्टै विषय

102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर लेकर हाजिर है शाहिद। और यहां पर संदेश टू सोल्जर में हमेशा हम बात करते हैं अपने वीर साहसी सैनिकों के बारे में और उनकी गाथाएं हम सुनते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं और हम उनकी जीवनी उनके करियर के बारे में भी जानते हैं और अपने प्रोग्राम में हम उनकी लाइफ में झांक करके उनकी जिंदगी को समझने की कोशिश करते हैं और उनके स्ट्रगल को उनके करियर को उनके जोश और जज्बे को भी हम जानने की कोशिश करते हैं अपने प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में। और आज संदेश टू सोल्जर्स के खास प्रोग्राम में शाहिद है आपके साथ। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9868107070 पर। आज के संदेश टू सोल्जर्स के खास मेहमान श्री शिवम कुमार, सहायक कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल, असिस्टेंट कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल SSB, जो राष्ट्रपति द्वारा अपनी वीरता, अदम्य साहस, सेवा और उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से सम्मानित हैं और इसके अलावा कई सारे कमेंडेशंस एप्रिसिएशंस से भी नवाजे जा चुके हैं श्री शिवम कुमार, सहायक कमांडेंट SSB। तो बहुत जल्द इस गाने के बाद हाजिर होते हैं और मिलाते हैं आपको आपके आज के हमारे खास मेहमान संदेश टू सोल्जर्स के।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स शाहिद आपके साथ और आज के हमारे खास मेहमान हैं संदेश टू सोल्जर्स में श्री शिवम कुमार सहायक कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका संदेश टू सोल्जर्स के हमारे प्रोग्राम आकाशवाणी रेनबो पर।
1: धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक इन्फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट सेल और FM रेडियो रेनबो का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज हमें मौका दिया गया है कि मैं अपने संदेश

0: जो शहीद हुए थे अफगानिस्तान के इंडियन आर्मी के मिशन में, उनके सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया था हमारे सोसाइटी में, जिसमें मुझे होस्ट करने का मौका मिला।
1: तो आप उस जमाने में पढ़ रहे
0: थे? नहीं, मैं कॉलेज के बाद नौकरी पढ़ा था।
1: अच्छा।
0: तो उसके आने का मौका मिला, क्या क्या किए देश के लिए, खुद साहस और शौर्य थे वो कहीं ना कहीं
1: जी
0: यही मैं करनी है।

0: किसी विशेष स्थान की यात्रा वगैरह कर नहीं ले पाए हों, कंपोजिट टूर प्रोग्राम हो, जब समय मिलता है तो पर्यटन के लिए, तो उन स्थानों पे जब भी जाने का मौका लगता है तो समूह के साथ चले जाते हैं
1: और बिल्कुल बिल्कुल घूम के आए और एंजॉय करें। तो सत्यप्रकाश दीक्षित जी का फोन बीच से डिस्कनेक्ट हो गया, बातचीत उन्होंने बहुत ही उम्दा तरीके से की, शुक्रिया अदा कर रहे हैं उनका। और उनके लिए हम सुनवा रहे हैं अनजाना फिल्म का ये गाना।

0: gestores. सिस्टम जो कोर्स आपने किया उससे आपकी ट्रेनिंग के लिए और आपकी जो सेवाएं हैं उसमें किस तरीके से आप उसको और बढ़ा सके, सेवाएं अपनी और बढ़ा सके आप?
1: जी बिल्कुल, ये हमारे जनरली जो हमारा इलाका होता है जहाँ पे कि हम अपनी सेवाएं देते हैं वो बहुत सुदूर और रिमोट एरियाज में रहता है, तो वहाँ पे हमको एक रेडी टू अवेलेबल एक मैप चाहिए होता है जिसको कि हम डिजिटली देख सकें और देख सकें कि कहाँ कहाँ हमारी तैनाती हुई है। तो इसके लिए ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि हम अपने ट्रूप्स के मूवमेंट

0: हैं ताकि आप एक हुनरमंद और एक आप एबल ऑफिसर बन सकें, तो इसके लिए सारे कोर्स
1: मतलब आप अपनी निपुणता को लगातार जो है बढ़ाते रहें,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: उसमें एडिशन करते रहें। इसी एडिशन में आपकी एक बहुत जबरदस्त जो आपने ग्वालदाम उत्तराखंड में की कमांडो ट्रेनिंग भी आपने की इन सब के साथ साथ, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा?
0: जी कमांडो जो है वो एक फिजिकल और मेंटल दोनों तरीके से आपको सशक्त बनाता है कि आप विषम परिस्थितियों में दुर्गम पहाड़ दुर्गम वनों में आप लंबे लंबे ऑपरेशंस कर सके, अपनी ट्रूप्स को मोराल को हाई रख सके और ऑपरेशंस में सामरिक रणनीति के साथ ऑपरेशन में विजय हासिल कर सके।
1: तो सर ये तो ट्रेनिंग बहुत टफ रही होगी, कैसा रहा आपका वो एक्सपीरियंस इस कमांडो ट्रेनिंग वाला?
0: जी बिल्कुल, ये ट्रेनिंग तो टफ होती है, इसमें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ट्रेनिंग तो बहुत टफ रहती है, लेकिन आपके अंदर जो वो जज्बा होना चाहिए वो ऐसा निहित कर दिया जाता है उस्तादों के द्वारा इंस्ट्रक्टर्स के द्वारा कि वो समय धीरे धीरे पार हो जाता है और आप जब बिगर पिक्चर की ओर देखते हैं, जब आप देखते हैं कि यहाँ से जब आप तप के जाएंगे जब आप निखर के जाएंगे यहाँ से, तो फील्ड में इसके कई फायदे होते हैं जो कि फायदे आज हमें महसूस कर रहा हूँ मैं।
1: सर आपने इतनी सब ट्रेनिंग हासिल करी, आपने अपनी एक बहुत ही एक अलग इमेज बहुत ही बड़ी पोजीशन आपने बनाई और इसके ही एवज में आपको अपनी सेवाओं के बदले ही बहुत ज्यादा अवार्ड से भी नवाजा गया, आपको बहुत सारी कमेंडेशंस एप्रिसिएशंस भी मिले और साथ ही साथ आपने अपनी जो लीडरशिप स्किल थी ऑपरेशनल एक्सेलेंस थे और खास तौर पर एंटी नक्सल ऑपरेशंस उसमें भी आपने न सिर्फ उनको अच्छे से किया बल्कि उन्हें निपुणता हासिल करके एक अपनी एक ऐसी पोजीशन बनाई जिसकी वजह से आपको वो रिकॉग्निशन वो अवार्ड्स वो मेडल से नवाजा गया।
0: जी बिल्कुल, मेरा ये सौभाग्य था कि एकेडमी से निकलते ही मुझे पहली ही पोस्टिंग एंटी नक्सल ऑपरेशंस के थिएटर में मिली
1: जी,
0: जो कि बिहार के लखीसराय जिले में था और क्योंकि मैं झारखंड बिहार से मेरा ताल्लुक है
1: जी,
0: तो सन ऑफ सॉइल होने का फायदा मुझे वहां पे मिला, मतलब वहां पे लोगों की क्या पीड़ाएं हैं, नक्सल का मोडस ऑपरेंडी क्या है, वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं विलेजर्स के साथ, कैसे उनको ब्रेन वॉश करते हैं, ये समझना मेरे लिए ज्यादा आसान था क्योंकि लोग मुझसे ज्यादा कनेक्ट कर पाते थे बींग अ लोकल, मुझे ये फायदा मिला। और फिर फाइनली जो आगे की रणनीति थी जो सीनियर्स का सपोर्ट था उसके हिसाब से आगे की प्लानिंग हुई।
1: और आगे हम आपसे जानेंगे कि जो एंटी नक्सल ऑपरेशन आपने किए, एंटी माइस्ट ऑपरेशंस भी आपने किए और बिहार का एक बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही यादगार एक ऑपरेशन था जिसके ही बदले में आपको उस सेवा की ही एवज में पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से भी सम्मानित किया गया और हम उसके बारे में आपसे जानेंगे आगे। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं हमारे सुनने वालों के, हमारे श्रोताओं के, आपके लिए। आज के संदेश टू सोल्जर्स के हमारे खास मेहमान हैं श्री शिवम कुमार, सहायक कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल।

0: भारत तुझे सलाम। देश के नंबर वन रेडियो आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर शाहिद के साथ, और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट खास मेहमान हैं श्री शिवम कुमार, सहायक कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल। सर, बहुत बहुत स्वागत मैं करना चाहूंगा एक बार फिर आपका आज के इस बहुत ही स्पेशल शो में, जिसमें जोश से भरपूर श्री शिवम कुमार हमारे साथ मौजूद हैं।
1: धन्यवाद साहिब जी।
0: और मैं अपने लिसनर्स को, अपने श्रोताओं को बता दूं कि आप हमें, हमारे पास लगातार आपके मैसेजेस आ रहे हैं, और आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9868107070 पर, जिन लोगों को अभी तक मैं नंबर नहीं बता पाया था। और आप साथ ही हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR के माध्यम से दुनिया भर में हमसे हैं जुड़े हुए। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से हुआ सफर शुरू, बैचलर डिग्री विद डिस्टिंक्शन के साथ श्री शिवम कुमार का, और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि जिंदगी पूरी तरह से बदल गई और वो बन गए एक जोशीले जांबाज सिपाही सशस्त्र सीमा बल के। सर, आपकी पूरी सर्विस में अभी तक की, आप अभी भी सर्विस में हैं, और सर्विस के दौरान आपकी पोस्टिंग रही SSB एकेडमी भोपाल मध्य प्रदेश में और 32 बटालियन SSB बिहार में, और फिलहाल आप सर्व कर रहे हैं CI & JW स्कूल ग्वालदाम। तो सर, ये जो आप प्रेजेंटली जो सर्विंग है आपकी, ये इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, CI & JW स्कूल में आप क्या करते हैं और ये क्या है?
1: काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल ग्वालदम में, उत्तराखंड में स्थापित है। ये हमारे इन सर्विस ट्रेनिंग सेंटर है, जहाँ पे कि जैसा मैंने आपको बताया कि बेसिक ट्रेनिंग के उपरांत कई सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं जिसे कि सभी बलकर्मी इरेस्पेक्टिव ऑफ रैंक उस कोर्सेज को पूरा करते हैं, ताकि वो अपनी सेवा में और दक्षता हासिल कर सकें। तो हमारे CI & JW स्कूल ग्वालदम में माउंटेनियरिंग विंग है, जहाँ पे कि मैं गर्व से कहना चाहूंगा कि SSB की टीम माउंट एवरेस्ट की सीमाओं पर भी, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर
0: जी
1: अपना विजय तिरंगा फहरा चुकी है।
0: बहुत खूब सर, क्या बात है।
1: इसके अतिरिक्त वहाँ पे एक्सप्लोजिव की ट्रेनिंग होती है, कमांडोज की ट्रेनिंग होती है, बहुआयामी ट्रेनिंग सेंटर है ये।
0: तो आप इस ट्रेनिंग सेंटर में एज ए ट्रेनर अपनी सेवाएं दे रहे हैं?
1: जी बिल्कुल, मैं यहाँ पे बतौर इंस्ट्रक्टर या ट्रेनर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ।
0: जी, तो सर किस तरीके का एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप पहले सर्व कर चुके हैं, उसके बाद फिर आप अब ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, तो सीखना और फिर सिखाना, इन दोनों में कितना अंतर आप पाते हैं और क्या ज्यादा कठिन आपको लगता है?
1: मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही का अपना अपना महत्व है।
0: जी,
1: जिस व्यक्ति ने धरातल पर कार्य किया है, जिसे धरातल की जो भी कठिनाइयां हैं, चुनौतियां हैं, वो पता है, वह बेहतर तरीके से उसको अपने आने वाली पीढ़ी को या जो भी ट्रेनिंग्स रहते

0: उसको बता सकता है। और यही करने की मैं कोशिश करता हूँ, जो भी मैंने ग्राउंड में अपने अनुभव से और जो हमारा एक वहाँ पे टेन्योर रहा है उससे सीखा है, उसको ट्रेनिंग्स को बताने की मेरी चेष्टा होती है ताकि वो ग्राउंड के लिए रेडी बन सके।
1: जी अच्छा शिवम कुमार जी, हम यहाँ पर एक बात जानना चाहेंगे कि एक जब फौजी बन रहा होता है तो उसके दिल में क्या अरमान, क्या जज्बा होता है देश सेवा को लेकर के? क्या वो सब चीज़ें चाहता है कि वो जाएगा फ्रंट पर और जैसे दुश्मनों का मुकाबला करेगा, और वो बिल्कुल एकदम बेखौफ होकर के, निडर, बिल्कुल साहस के साथ उनका सामना करेगा, भले ही फिर वो अपनी जान की परवाह ना करे, कुछ भी हो जाए, वो जज्बा कैसा होता है?
0: बिल्कुल शाही जी, इसमें ऐसा है कि जब हम बेसिक ट्रेनिंग के उपरांत धीरे धीरे हमारी नौकरी आदि बढ़ती जाती है
1: जी,
0: तो हमें ये समझ में आ जाता है कि एक फौजी के जीवन का ध्येय वाक्य होता है कि लड़ाई ना तो अधूरी होती है और ना ही अधूरे मन से लड़ी जाती है।
1: क्या बात है।
0: तो एक फौजी अपने पूरा जीवन न्यौछावर करता है, इसी के लिए वो तपता है ताकि जब मौत सामने नाच रही हो
1: जी
0: तो फौजी उसका डट कर सामना करे और अपने देशवासियों का, अपने राष्ट्रवासियों का, जिसकी सुरक्षा का जिम्मा उसे दिया गया है
1: जी
0: उसे बखूबी निभाए।
1: क्या बात है, ये जोशीले स्वर आ रहे हैं हमारी तरफ श्री शिवम कुमार जो हैं असिस्टेंट कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल। सर ये जज्बा और ये जोश आप जो जिस तरीके से हम महसूस कर रहे हैं आपको देख करके और आपसे सुन करके, तो इस जज्बे के साथ ही हमारा युवा अगर इसमें जाना चाहता है तो किस तरीके से आप उसको गाइड करना चाहेंगे?
0: जी, युवाओं के लिए सशस्त्र सीमा बल में जाने के 3 रास्ते हैं।
1: जी
0: अगर कोई कांस्टेबल लेवल पे भर्ती होना चाहता है तो SSC द्वारा GD की परीक्षा आयोजित की जाती है जिसका मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसकी मैट्रिकुलेशन होती है।
1: ठीक है।
0: इसके उपरांत कोई अगर सबऑर्डिनेट ऑफिसर या सब इंस्पेक्टर के पद पे जाना चाहे
1: जी
0: तो SSC द्वारा CPO की परीक्षा आयोजित की जाती है जिसका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया ग्रेजुएशन होता है किसी भी स्ट्रीम में। और बतौर डायरेक्ट क्लास ए ऑफिसर असिस्टेंट कमांडेंट अगर इसमें कोई जाना चाहे
1: जी
0: तो UPSC द्वारा आयोजित सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एग्जामिनेशन करवाई जाती है जिसके लिए मिनिमम आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है।
1: ओके, जैसे कि आपने UPSC पास करके
0: जी बिल्कुल
1: एज एन असिस्टेंट कमांडेंट आपने ज्वाइन किया।
0: जी बिल्कुल।
1: लगातार हमारे पास हमारे आज के मेहमान श्री शिवम कुमार के लिए यहाँ पर मैसेजेस का सिलसिला लगातार जारी है। शिवम कुमार जी, मैं आपको वो मैसेज पढ़ के सुनाऊंगा और मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे आपका जो बहुत ही ज़्यादा एक यादगार मैं कहूँ और वो हर तरह से यादगार एंटी माइस्ट ऑपरेशन आपने जो किया लखीसराय बिहार में फरवरी 2022, उसके बारे में हम बात करेंगे कि वो कितना क्रिटिकल था वो ऑपरेशन, कितना कामयाब था और कितना खतरनाक था वो ऑपरेशन।
0: जी बिल्कुल, ये मेरा सौभाग्य था कि मुझे अपनी नौकरी के पहले 1-2 वर्षों में ही
1: जी
0: ऐसे नक्सल एंटी नक्सल ऑपरेशन में शामिल होने का मौका मिला और इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा श्री सोमी जोशी सर जो इंस्पेक्टर जनरल थे
1: जी,
0: श्री दीपक सिंह जो मेरे बटालियन के कमांडेंट थे 32वीं वाहिनी के, इसके अतिरिक्त मेरे जो सीनियर्स थे श्री नरपत सिंह
1: जी,
0: श्री जसवीर सिंह तोमर, श्री गुलशन झा, और जो मेरे सबऑर्डिनेट्स और कलीग थे ऋतुराज, अरविंद
1: जी,
0: राणा और प्रदीप का, जिन सबके टीम वर्क ने, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, मुझे ग्रूम किया इस चीज़ के लिए क्योंकि मैं बिल्कुल नया था फौज के लिए, मुझे ग्रूम किया ताकि मैं इस ऑपरेशन में पार्टिसिपेट कर सकूं, लीड कर सकूं और विजय हासिल कर सकूं।
1: जी, और आपको हम बताना चाहेंगे कि शिवम कुमार जी हमारे पिछले संदेश टू सोल्जर्स में कुमार ऋतुराज जी भी हमारे साथ इस शो में मौजूद थे, तो वो आपके सीनियर थे, उन्होंने भी बहुत गाइड किया आपको।
0: जी जी बिल्कुल, वो मेरे साथ काम करते थे, वो मेरे सबऑर्डिनेट थे और उनका भी सहयोग रहा है इस चीज़ में।
1: जी, तो हम यहाँ पर ये जानना चाहेंगे ये ऑपरेशन किस तरीके से आपने कंप्लीट किया और कितना टफ था, कैसे प्लानिंग करी और कितने चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ा, आपका टीम वर्क कैसा था?
0: जी बिल्कुल, सर्वप्रथम यह है कि किसी भी ऑपरेशन को
1: जी
0: सिर्फ आप असले और बारूद के बल पे आप नहीं जीत सकते हैं। ऑपरेशन जीता जाता है टीम वर्क से, साथियों के सहयोग से
1: जी,
0: एक उचित मार्गदर्शन से और सामरिक रणनीति से। इस ऑपरेशन में भी हमने सबसे पहले जो किसी भी ऑपरेशन का मूल आधार होता है वो है इंटेलिजेंस इकट्ठा करना
1: जी।
0: सबसे पहले हमने इंटेलिजेंस इकट्ठा की माओवादियों के बारे में, जिस एरिया में मैं काम करता था
1: जी
0: लखीसराय बिहार में, वहां जितेंद्र कोड़ा, विनोद कोड़ा और अर्जुन कोड़ा, ये सब आतंक के प्रतीक थे जिनके ऊपर 50 से अधिक हत्याओं के मामले चल रहे थे। ये सभी नक्सली टीम के मेंबर्स थे और 50 से अधिक हत्याओं के इन पे मामले थे। हमने उनके बारे में आसूचना हासिल की, इंटेलिजेंस हासिल किया उनके बारे में, इसमें कि हमारे ह्यूमन इंटेलिजेंस भी थे।

0: जी
1: और टेक्निकल चीज़ों का भी हमने मदद लिया, गैजेट्स का हमने मदद लिया। उसके बाद उनको हमने एक चक्रव्यूह में फंसाया, जिस चक्रव्यूह में सभी नक्सली फंसते
0: जी
1: चले गए। और फाइनली ये ऑपरेशन, एक लंबी कहानी है, ये एक दिन
0: जी
1: का सफर नहीं था, 3 महीने तक इसकी तैयारी चली।
0: ओके तो आपने ये जो ड्रेडेड क्रिमिनल्स थे इनको न्यूट्रलाइज भी किया, और इनको मतलब इनके उन जो काम थे इनके, उनके जो क्रिमिनल एक्टिविटीज थी उनको भी आपने पूरी तरीके से खत्म कर दिया इस ऑपरेशन के माध्यम से।
1: जी बिल्कुल, उनका उनका जो शैली था उनका, वो किडनैपिंग करते थे, एबडक्शन करते थे,
0: जी
1: लोगों में उनका आतंक था, कभी भी रात में किसी भी घर किसी के घर घुस जाना और बंदूक की नोक पे उससे ऐसे कार्य करवाना जिसको कि वो नहीं चाहता है करना। और उनके डर के कारण वहाँ की जो जनता थी कभी खुल के हमसे बात नहीं करती थी, अपनी शिकायतों को नहीं रखती थी। तो इस चीज़ पे हमने काम किया, और फिर ये एक पूरी प्रक्रिया थी जिसको कि हमने किया, इंटेलिजेंस जनरेशन से लेकर के और ऑपरेशन एग्जीक्यूशन तक।
0: और जाहिर है कि जब इस ऑपरेशन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया गया तो फिर वो जो एक भरोसा जो टूट रहा था वो जनता में भी फिर दोबारा से कायम हुआ होगा।
1: जी बिल्कुल, इसमें ऑपरेशन के एग्जीक्यूशन के उपरांत असली खुशी तो वही होती है। असली खुशी ये नहीं है कि आपने नक्सली को मार दिया
0: जी
1: या आतंकवादी को मार दिया, असली खुशी वो है कि जब आप जम्मू कश्मीर के जवाहर टनल से निकले, जब आपका कॉन्वॉय निकले
0: जी
1: या छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा या बिहार के भीमबांध से जब आपकी गाड़ी निकले, और तब कोई बच्चा हाथ में झंडा लिए जय हिंद आपको करता है,
0: क्या बात है,
1: तब जो उसके चेहरे की जो वो सुरक्षा का भाव उसके चेहरे पे रहता है, ये आपकी असली जीत है बतौर फौजी।
0: क्या बात है। तो उस झंडे के साथ और उस जय हिंद के नारे के साथ वो जो खुशी मिलती है वो खुशी सबसे बढ़कर होती है।
1: जी बिल्कुल, वो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी वही है कि जनता का विश्वास जो हमने जीता है
0: जी,
1: वो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है, और इस ऑपरेशन के माध्यम से हम ये करने में सक्षम हुए थे।
0: जी बिल्कुल, क्या बात है। और यही वो ऑपरेशन था जिसकी वजह से आपको प्रेस्टीजियस पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से नवाजा गया राष्ट्रपति द्वारा 2024 में।
1: जी बिल्कुल, इस ऑपरेशन में सबका सहयोग था, सीनियर से लेकर के जूनियर सबका सहयोग था।
0: जी
1: मैं आपको छोटा सा वृतांत इस ऑपरेशन का बताना चाहता हूँ।
0: जरूर जरूर।
1: ये हमारी प्लानिंग चल रही थी, जो बिहार के लखीसराय में मैं लोकेटेड था, वहाँ पे मेरी पोस्टिंग थी। तो हमारी प्लानिंग चल रही थी कि वहाँ का जो नक्सल ग्रुप है उसको कैसे ट्रैप किया जाए, अपने चक्रव्यूह में कैसे लाया जाए। तो जिन सीनियर्स के मैंने नाम बताया आप
0: जी,
1: उनके सानिध्य में हमारी प्लानिंग चली। फिर हमने एक गुप्तचर को प्लांट किया उनके नक्सली टीम में, और फिर उसके द्वारा दी गई सटीक जानकारी के बेसिस पे हमें ये पता चला कि दिनांक 2 फरवरी 2022 जो मुठभेड़ का दिन था
0: जी,
1: उस दिन ये नक्सली जंगल में आने वाले थे, कोई एक खास जगह थी जहां पे वो आने वाले थे। तो उसके लिए हम पहले से ही तैयार थे, हमने पहले से एक लंबी प्लानिंग कर रखी थी। तो हमारी टीम उसके अंदर लॉन्च हुई
0: जी,
1: हम अपने पूरे फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड के साथ लॉन्च हुए, और हमारे हमारे जो कमांडेंट जो थे श्री दीपक सिंह एवं श्री सुशील कुमार जो लखीसराय बिहार के SP थे, एवं श्री मनोरंजन पांडे हमारे कमांडेंट सर थे, उनके मार्गदर्शन में हमारी पूरी टीम लॉन्च हुई, जिसमें नरपत सिंह डिप्टी कमांडेंट, गुलशन झा सर, जसवीर तोमर सर और मैं, और मेरे साथ अलग अलग रैंक्स के लड़के थे। हमने 2 टीमें बनाई, और जंगल की अपनी चुनौतियां हैं।
0: बिल्कुल,
1: जंगल में आपको ये नहीं पता होता है कि गोली कब किधर से आएगी, क्योंकि कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं होता है। तो हमें एक जनरल इलाका पता था कि यहाँ पे नक्सली आने वाले हैं
0: जी,
1: तो हम उस इलाके की तरफ बढ़ रहे थे अपनी पूरी फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड के साथ। और 2 तारीख को लगभग 9 बजे सुबह की बात है ये
0: जी,
1: सीधे गोलियों की बौछार हम पे आई।
0: ओके, तो यानी कि आपकी जब आंख खुलती है तो सीधा गोलियों से आपका स्वागत करते हैं वो लोग।
1: जी बिल्कुल, हम जब आगे बढ़ रहे थे उस एरिया की तरफ जा रहे थे तो एकदम से हमारी गोलियों की बौछार हमारे ऊपर आई। क्यों, और जंगल में एक सिद्धांत चलता है
0: जी,
1: यू मिस एंड आई हिट।
0: और ओके,
1: पहली गोली जो थी नक्सलियों की वो उन्होंने मिस कर दिया था।
0: ओके,
1: हम में से किसी को भी वो उनकी पहली गोली नहीं लगी। तब हमें पता था कि अब हमें क्या करना है, उसने मिस कर दिया, वी आर गोइंग टू हिट देम।
0: एग्जैक्टली, मतलब हम नहीं मिस करेंगे किसी भी कीमत पर।
1: बिल्कुल, एक हमारी ट्रेनिंग ही इसलिए होती है
0: जी,
1: कि हमको उसको हिट करना है। तो हमने वहीं पर रणनीति बनाई कि कौन किधर से कैसे अटैक करेगा, और फिर जवाबी जो हमारी कार्रवाई थी वो हमने फुल स्ट्रेंथ में जवाबी कार्रवाई की नक्सलियों के ऊपर। क्रॉस फायरिंग चली, बहुत देर तक फायरिंग चलती रही, लगभग आधे घंटे तक ये फायरिंग चली, उसके उपरांत जाकर के ये फायरिंग समाप्त हुई। तो ये जो यज्ञ, ये जो नक्सल एनकाउंटर होता है ना, ये हम फौजियों के लिए एक यज्ञ जैसा है, एक धार्मिक अनुष्ठान जैसा है, जिसमें कि हम अपना तन मन धन सब झोंक देते हैं। तो फिर जब ये फायरिंग खत्म हुई
0: जी,
1: उसके बाद जाकर के हमने देखा तो हमने पाया कि 2 बॉडीज वहां

0: हमें मिली, और संयोग से वो दोनों बॉडीज थी, जितेंद्र कोड़ा और विनोद कोड़ा की,
1: मतलब जो उनके लीडर्स थे।
0: जी बिल्कुल, जो उनके लीडर्स थे, जिनका आतंक जो है वो पूरे पूरे लखीसराय क्षेत्र में, कहें पूरे बिहार क्षेत्र में फैला हुआ था, और जिनके आतंक के कारण जनता हमसे कुछ बात नहीं करती थी, हमारे नज़दीक नहीं आती थी, उन दोनों की बॉडीज़ हमें वहाँ मिली। और उसके अतिरिक्त एक उनका और लीडर था, अर्जुन कोड़ा,
1: जी
0: जिसको कि उसके राइट थाई में जाकर के हमारी गोली फंस गई थी, और फिर आगे आने वाले 1 महीने बाद
1: जी
0: उसने उसने सरेंडर किया एक दूसरी फोर्स के सामने, और उसने ये बताया
1: जी
0: कि उस दिन SSB के साथ हुई मुठभेड़ में वो गोली जो है मेरे थाई में आके फंस गई है, और अगर मैंने सरेंडर इसलिए किया है क्योंकि अगर मैं इलाज नहीं करवाऊंगा तो
1: मर जाऊंगा।
0: मैं मर
1: जी,
0: जाऊंगा।
1: तो उसके बाद इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं बचा।
0: जी बिल्कुल, तो हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा, बहुत बड़ी जीत थी, मैं इसे अपने जीवन
1: बिल्कुल
0: का सबसे स्वर्णिम पल, अविस्मरणीय क्षण मानूंगा,
1: बिल्कुल सर,
0: जहां पे कि मुझे गर्व है कि मैं अपनी पूरी टीम के साथ ऐसे राक्षस से लड़ा
1: जी
0: और उसे पराजित किया, और उसका जो फल मिला वो सबसे सुखद फल था कि जो हमारा ध्येय वाक्य है, सेवा, सुरक्षा, बंधुत्व,
1: जी
0: हमने सेवाएं दी वहां की जनता को, उनके मन में नक्सलियों को मारने के उपरांत
1: जी
0: उनके मन में एक सुरक्षा का भाव पैदा हुआ,
1: बिल्कुल
0: और अंततः वो बंधुत्व में तब बदला जब मैं उसी गांव वाले के साथ जो हमसे बात नहीं करता था
1: जी,
0: उसी के साथ मैं बैठ करके चाय पीता था और
1: क्या
0: मैं
1: बात
0: बैठ के
1: है,
0: खाना खाता था।
1: क्या बात है
0: तो
1: सर,
0: ये सशस्त्र सीमा बल की जीत थी।
1: बेशक बेशक, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं कि ये जो आपका इतना डायरिंग ऑपरेशन था उसके बाद इसमें जो आपने कामयाबी हासिल करी, तो यही सबसे बड़ी जीत थी कि जो विश्वास जो आपने बनाया उन लोगों में जो आपसे पहले बात करने में डरते थे। यहां जिस तरीके से शिवम कुमार आप अपनी जस तरीके से ऑपरेशन के बारे में बता रहे थे, भाई इमेजिन कर रहा था स्टूडियो में बैठ करके कि वो क्या सिचुएशन, वो मंजर रहा होगा। तो मैं सर ये जानना चाहता हूँ, एक शायद लिसनर भी जानना चाहता है, और इतने मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं मैं उनको अभी ले नहीं पा रहा, बाद में लूंगा। तो क्या ये जो हम अक्सर, मैं बात करता हूँ कि हम इस तरीके की कुछ सिचुएशंस देखते हैं, आप आमने सामने से दो ग्रुप में जो फायरिंग चल रही है, बैटल चल रही है, वॉर सिचुएशन है, तो वो हम फिल्मों में जो देखते हैं तो बड़ा एक्साइटमेंट सा होता है, लेकिन आप उस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, वहां पर मौजूद हैं, और आप अपने देश के लिए अपनी जान की बाजी वहां पर लगा रहे हैं उन क्रिमिनल से, उन आतंकवादी से लड़ने के लिए। सर वो मोमेंट, वो जज्बा, वो जो एक फीलिंग होती है वो क्या होती है, वो खौफ, वो डर, वो सिचुएशन, वो थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे आपके अपने शब्दों में।
0: सबसे पहले तो मैं जो सुन रहे हैं जितनी भी श्रोतागण हैं,
1: जी
0: मैं उनको बताना चाहूंगा कि ये फिल्मों में जो ग्लैमराइज किया जाता
1: जी
0: है, फौज में आने के सबसे पहले दिन तो आपका ग्लैमर जाता है, वो ग्लैमर छूटता है सबसे पहले, क्योंकि आप ग्लैमर के बल पे आप ये बहुत लंबी सेवा नहीं दे सकते हैं।
1: जी
0: इसमें आपके अंदर जो राष्ट्र प्रेम की भावना,
1: जी
0: जो राष्ट्र के प्रति जो आपकी सेवा भाव है, जो
1: जी
0: अंतर्निहित किया जाता है, वही आपको लंबे समय तक बतौर फौजी आपको खींचेगा। तो जैसा आप बता रहे हैं कि जब गोलियां चलती हैं
1: जी
0: तो हमारी तैयारी इसी क्षण के लिए होती है। एक फौजी के जीवन में ये सबसे बड़ा क्षण होता है कि जब उसको सामने एक ऐसा व्यक्ति है जिसने समाज के में कई हत्याएं की हैं,
1: जी
0: कई बेगुनाहों की जान ली है, जब वो उसका खात्मा करता है तो हम इसे किलिंग नहीं, इसे हम वध मानते हैं, और एक राक्षस
1: बिल्कुल
0: का वध करते हुए जो अनुभूति होती है, जो
1: बिल्कुल,
0: आनंद आता है, वो
1: उसके
0: उसको
1: कहने क्या है,
0: उसको लफ्जों में बयां नहीं किया जा
1: क्या
0: सकता।
1: बात है। और इसीलिए देश की मिट्टी को सलाम करने को जी चाहता है उसी जज्बे के साथ, जिस जज्बे के साथ शिवम कुमार ने इस खतरनाक ऑपरेशन को कामयाबी के साथ अंजाम दिया। सर मैं और अब इंतजार नहीं कर सकता, मैं आपको एक एक करके कुछ मैसेजेस पढ़ करके सुनाऊंगा। शुरुआत जो सबसे पहले मैसेज आया हमारे पास यहां पर, बोथ आरजे एंड असिस्टेंट कमांडेंट शिवम जी एंड ऑल AIR न्यू दिल्ली फ्रॉम, ये मुबारकबाद दे रहे हैं, वणकम नमस्कारम। और ये हैं श्रीरंगम राजेश, श्रीरंगम त्रिची त्रिचुपल्ली तमिलनाडु से।
0: जी धन्यवाद, और जय हिंद राजेश जी आपको।
1: और इसके बाद है एक मैसेज, जय हिंद साहब, बहुत बहुत मुबारक सर, आपको SSB के जरिए पूरे देश का नाम रोशन कर रहे हैं आप, आपके साथ
0: कजरा कजरा लिखा है ये।
1: हाँ कजरा में काम कर रहे, बहुत कुछ सीखने को मिला साहब, जय हिंद। सर ये आपके कोई एसोसिएट, कोई आपके साथी या जूनियर
0: बिल्कुल,
1: लगते हैं?
0: बिल्कुल ये मेरे साथ के हैं, मेरे
1: अच्छा
0: जूनियर और सीनियर तो है, ये पूरी टीम की बात है, क्योंकि
1: जी बिल्कुल
0: ये
1: बिल्कुल
0: मेरे टीम के साथी हैं
1: साथी
0: जिन्होंने
1: हैं आपके।
0: कार्य किया है हमारे साथ।
1: और इसके बाद ये जय हिंद टू रेस्पेक्टेड गेस्ट सर एंड आर्जे सर हियर, आई वुड लाइक टू पे माई ग्रेटिट्यूड टू शिवम सर एंड ऑल आर इंडियन आर्मी फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट, इट्स बिकॉज दे आर सेल्फलेस सर्विस विद डेडिकेशन डिवोशन, दे डिस्चार्ज दे ड्यूटी फेयरलेसली, दे आर रियल हीरोज, आई बो माई हैट टू देम।

0: So I would say Jai Hind, Bharat Mata Ki Jai, Vande Mataram. Myself, Shankar Lodh, and my wife, Anjali Lodh, offer obedience to all my, to them. My request to Arjun sir, please forward my message, Shivam sir. Thank you. Sir, आपका message हमने पहुंचा दिया है, Shivam sir सुन रहे हैं.
1: जी, धन्यवाद, Mrs. and Mr. Lodh जी. मैं आशा करता हूं कि आप ये सभी संदेश जो फौजियों के द्वारा दिया जा रहा है उसको सुन रहे हैं
0: जी,
1: और इस चीज के लिए आपका धन्यवाद
0: जी. इसके अलावा मैसेज है, ये शुभ संध्या कह रहे हैं, जय हिंद, राजेश भल्ला एडवोकेट है, कंकड़खेड़ा मेरठ से.
1: जी बिल्कुल, धन्यवाद आपको राजेश जी. मुझे और खुशी है कि
0: जी
1: एडवोकेट से लेकर के टीचर सभी वर्ग के लोग हमारा इस संदेश को सुन रहे हैं.
0: बिल्कुल सर, अपने कर्म और मजबूत इरादों के लिए पहचाने गए, नक्सल उन्मूलन हेतु कृत संकल्प राष्ट्र प्रेमी को सैल्यूट है. ललन मिश्र रांची झारखंड से सर ये मैसेज कर रहे हैं आपको.
1: जी बिल्कुल, रांची मेरी जन्मभूमि कर्मभूमि रही है, तो यहां से मैसेज आया.
0: बिल्कुल, आपके अदम्य साहस और त्याग के कारण ही हम अपने घरों में सुरक्षित चैन की नींद सो पाते हैं. आप हमारे असली नायक हैं. जय हिंद, जय भारत. यह है नेहा मिश्रा सर.
1: मुझे खुशी है कि समाज के सभी लोग फौज के कार्यों का, फौज की जो भी ड्यूटीज होती हैं उसका इतना सम्मान कर रहे हैं.
0: और ये है सर, जय हिंद सर, प्लीज एक कविता भारत माँ के नाम कहिए. रोहित मेहर हैं ये, विजयपुर बारगढ़ उड़ीसा से.
1: जी रोहित जी, धन्यवाद, मैं कविता सुनाऊंगा आपको अंत में.
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, हम जरूर सुनना चाहेंगे सर. हम लोगों का शिवम सर के साथ काजरा बिहार में कार्य करने का अनुभव बहुत उम्दा रहा. शिवम सर का पुलिस को जनता से करीब लाने का बहुत बड़ा योगदान रहा है काजरा लखीसराय बिहार में. सर ये भी आपके कोई साथी लगते हैं, सौम्य झा इनका नाम आ रहा है.
1: जी बिल्कुल, ये मेरे साथ के ही हैं, और हमारा उद्देश्य यही होता था कि जनता और पुलिस के बीच, फोर्स के बीच की जो खाई है उसको, उस खाई को पाटना ही
0: पाटना
1: हमारा उद्देश्य था.
0: बिल्कुल, करीब लाना है. जय हिंद सर, मैं आपको सुन रही हूँ, आपकी बातें और आपकी आपके जज्बे को सलाम करती हूँ. उम्मीद करती हूँ हमारे देश के नौजवान प्रभावित होकर देश सेवा के लिए आगे बढ़ेंगे. धन्यवाद, मैं शबनम हूँ, बी के दत्त कॉलोनी नई दिल्ली से. गारंटी अवार्ड के लिए बहुत बहुत बधाई दे रही है सर आपको.
1: धन्यवाद शबनम जी, जय हिंद.
0: और ये हैं, शिवम जी, यू आर अ पर्सन ऑफ ग्रेट विल पावर एंड करेज, एट द सेम टाइम यू आर वेरी काइंड ह्यूमन, अ ट्रू इंस्पिरेशन फॉर आवर यंगर जनरेशन. मैसेज आया सर ये विश्वजीत बिहार से, प्राइड ऑफ नेशन, प्राइड ऑफ बिहार, शिवम कुमार.
1: धन्यवाद विश्वजीत जी हमारे कार्यों की सराहना करने के लिए.
0: जी और ये है सर, हेलो सर, ग्वालदाम में महिलाओं की ट्रेनिंग के लिए बहुत अच्छे से आपने काम किया है. ये है मृदुल झा.
1: जी धन्यवाद मृदुल जी आपको, ये मुझे उम्मीद है कि ये शायद हमारे यहाँ माउंटेनियरिंग कोर्स जो महिलाओं का
0: जी जी जी उसकी ये उसकी जरूर जरूर पार्टिसिपेंट रही होंगी. मैं नरपत सिंह, उप कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल अंतागढ़ कांकेर छत्तीसगढ़, अपने 60 जवानों के साथ आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं सर. ये FM रेनबो की पूरी टीम को हार्दिक आभार, कार्यक्रम अत्यंत प्रेरणादायक और आनंददायक है. हमारे साथ श्री दकेश्वर प्रसाद चंद्र, सहायक कमांडेंट भी उपस्थित हैं, उनकी ओर से भी शिवम जी एवं पूरी टीम को विशेष रूप से जय हिंद.
1: नरपत सर 4 बार के गैलेंट्री विनर हैं, मैं
0: okay.
1: तो अपना गुरु मानता हूं, और हमारे टीम के ये ग्राउंड कमांडर्स में से एक थे, तो
0: okay.
1: जो मैंने सीखा है इन्हीं सीनियर्स से सीखा है.
0: क्या बात है सर, तो नरपत सिंह जी भी हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं अपने शो के माध्यम से, आपने हमें मैसेज भी किया सर, बहुत बहुत धन्यवाद. और यह है शिवम सर, एन इंस्पिरेशन फॉर मेनी, फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ हिम, ही ट्रूली डिजर्व्स ऑल द एक्लेड्स. Because of his team and their dedicated efforts, a lot of people today live terror-free. Proud of him. Ayush Dhadich hain ye, Nayi Dilli se.
1: Ji, bilkul, ye humare junior hain aur main ummeed karta hoon ki jis pehal ki shuruaat hum logon ne ki hai,
0: ji.
1: Us pehal ko aage aane wale jitne bhi adhikari hain, usko makam tak le jayenge apni team ke saath.
0: Bilkul, aur Ayush bhi uska hissa rahenge.
1: Ji, bilkul.
0: Aur ye hain, Naxali operation ko successful banane ke liye bahut bahut badhai Shivam ji, proud of Shalini Pathak likh rahi hain aapke liye.
1: धन्यवाद शालिनी जी आपका.
0: और यह है, मैं सोता हूं रातों को चैन से क्योंकि मैं जानता हूं मेरे लिए कोई जाग रहा है. शिव है ये मेरठ से.
1: ये हमारा फर्ज है, हमने राष्ट्र सेवा की कसम खाई है, और आप ऐसे ही आप चैन से सोएं यही हमारी कल्पना है.
0: और यह है सर, शिवम सर के साथ कचरा में काम करने का अवसर मिला, कई ऑपरेशन में उन्होंने अपनी टीम का नेतृत्व किया. शिवम सर का नक्सलियों के लिए डायलॉग था कि ये कि या तो तुम अपनी हरकत छोड़कर समर्पण कर दो या ये देश, वरना अंजाम तो जानते ही हो. टीम को सदा फ्रंट से लीड किया है, ये कह रहे हैं पंकज लखीसराय से. सर आपके साथ ही हैं भी.
1: जी पंकज हमारे साथ के थे, और ये सभी जाबाज ये टीम मेंबर्स हैं मेरे, जिन्होंने
0: जी
1: गोलियों के सामने जिन्होंने सभी ऑपरेशंस को अंजाम दिया.
0: जी जी जी, और आपका पूरा पूरा साथ दिया और अपने आप को बिल्कुल कदम से कदम मिला करके.
1: जी बिल्कुल, ये इनके बिना ये सारी उपलब्धि या ये सारा ऑपरेशन संभव ही नहीं था.
0: बिल्कुल. और एक और मैसेज है सर, जय हिंद सर, जब भी आपका प्रोग्राम सुनते हैं संदेश टू सोल्जर, हमारे

0: रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सर आपको बहुत बहुत बहुत जय हिंद। हम भी सर अपने बच्चों के को आर्मी में भेजना चाहते हैं। हम संजय बोल रहे हैं उत्तम नगर से नई दिल्ली, और आपका प्रोग्राम बहुत बहुत अच्छा है और हमारे आर्मी के सभी जवानों को जय हिंद कह रहे हैं। ये
1: धन्यवाद संजय जी, और एक बार फिर से जैसा इन्होंने कहा, मैं एफएम रेडियो को, एफएम रेनबो को धन्यवाद देना चाहता हूं
0: जी,
1: कि जो देश विदेश के सभी लोगों को फौज के द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं उससे अवगत करा रहा है, और फौज के राष्ट्रप्रेम से, राष्ट्रप्रेम की झागना को, भावना को प्रज्वलित कर रहा है लोगों के अंदर।
0: बिल्कुल सर, आकाशवाणी रेनबो का ये हमारे आर्म्ड फोर्सेस को डेडिकेटेड शो है ये, और ये है संदेश टू सोल्जर्स। सर आपके साथ बातचीत का ये सिलसिला जारी रहेगा, जो समय हमारे पास बचा है वो बहुत तेजी के साथ गुजर रहा है आपके साथ बातचीत करते हुए इस जोश और जज्बे के साथ। हमारे साथ हैं श्री शिवम कुमार, असिस्टेंट कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल। आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स शाहिद के साथ।

0: वीडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स, आप हैं शायद के साथ और हमारे साथ हमारे आज के खास मेहमान श्री शिवम कुमार, सहायक कमांडेंट हैं सशस्त्र सीमा बल। सर, हम आपसे बहुत ही शानदार और जोश और जज्बे से भरी हुई बातें यहां पर कर रहे हैं और लगातार मैसेजेस का भी सिलसिला जारी है, मैं आपको जैसे अभी बता रहा था। तो हम यहां पर अब आगे बढ़ेंगे सर और जानना चाहेंगे कि आपकी जो लीडरशिप स्किल्स हैं, आपका ऑपरेशनल एक्सेलेंस है जो आपने एंटी नक्सल ऑपरेशंस में दिखाया, उसके अलावा आपने कई खतरनाक वांटेड एक्सट्रीमिस्ट और क्रिमिनल्स को भी ढेर करा, उनको पकड़ने में पूरे पूरे सक्सेसफुल ऑपरेशन चलाए, उसके अलावा आपने इसके अलावा भी कई हाई रिस्क ऑपरेशंस अंजाम दिए हैं जिनके लिए आपको बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया है, जिसमें सबसे पहला प्रेस्टिजियस अवार्ड था पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री 2024 में। उसके अलावा आपको कई सारे मेडल्स, कमेंडेशंस और एप्रिसिएशन मिले हैं, सर्टिफिकेट्स मिले हैं डायरेक्टर जनरल SSB से, इंस्पेक्टर जनरल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से और कमांडेंट से और अदर सीनियर ऑफिसर से भी आपको आपकी परफॉर्मेंस के लिए, आपकी ऑपरेशनल अचीवमेंट्स के लिए, आपकी लीडरशिप के लिए, आपके प्रोफेशनलिज्म के लिए, पब्लिक स्पीकिंग और साथ ही एक चीज़ और भी जो आपके साथ जुड़ी हुई, इतनी सारी आपकी जो खूबियाँ हैं उनके साथ साथ कि आपकी जो लीडरशिप स्किल है, पब्लिक स्पीकिंग है, आप किस तरीके से मोटिवेट करते हैं यंगस्टर्स को, और साथ ही साथ फोर्स लेवल डिबेट कॉम्पिटिशन भी आप कंडक्ट कर चुके हैं और बहुत ही शानदार तरीके से उसको परफॉर्म करते हैं, तो इसके बारे में कुछ बताइए।
1: जी शाजी जी, इसमें सबसे प्रथम यह है कि आप जिसके साथ भी कार्य करते हैं, तो हमारे के जितने भी टीम मेंबर्स होते थे, हमारे जितने भी साथी होते हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ रैंक
0: जी,
1: आपको ये समझना पड़ेगा कि आप फर्स्ट अमंग द इक्वल्स हैं, आप उनके साथ के ही हैं। जब आप उनकी परिस्थिति को समझेंगे, जब आप उनके शूज में आएंगे, तभी आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं। तो एक कमांडर का सर्वप्रथम यह कार्य है कि वो अपने साथियों की परेशानियों को समझे
0: जी,
1: उनको बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटीज मुहैया करवाए और उनको मोटिवेटेड रखे कि हर परिस्थिति में, चाहे वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल इश्यूज हो
0: जी,
1: लगातार उसको केटर करे, उसकी उसकी समस्या का निराकरण करने की कोशिश करे और हर वक्त उसके साथ खड़ा हो, उसके अच्छे दिन में, उसके बुरे दिन में, तभी जाकर के वो फौजी या वो जो भी आपका सबॉर्डिनेट है
0: जी,
1: वो आपसे आगे जब भी बाधा आएगी, जब भी गोली आएगी, तभी वो आपसे आगे, कमांडर के आगे वो खड़ा होगा। जब उसको पता होगा कि उसका कमांडर उसके लिए हर क्षण खड़ा है, तभी वो आपके लिए खड़ा होगा,
0: तभी वो खड़ा होगा क्योंकि आप उसके लिए पहले से खड़े हैं। सर, हम आपके अवार्ड्स और जो कमेंडेशंस हैं और जो आपके मेडल्स हैं उनकी बात करते हैं। नवंबर 2025 में एंटी नक्सल ऑपरेशंस और शानदार लीडरशिप के लिए ऑनरेबल गवर्नर साहब और चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड ने भी आपको अवार्ड से सम्मानित किया था, वो कौन सा अवार्ड था?
1: जी, मुझे एंटी नक्सल ऑपरेशंस के लिए 2024 के नवंबर में
0: जी
1: 2025 के
0: 2025 नवंबर जी
1: 2025 के नवंबर में, क्योंकि मैं झारखंड का रेसिडेंट हूं
0: जी,
1: तो मुझे झारखंड के ऑनरेबल गवर्नर एवं ऑनरेबल सीएम के द्वारा सम्मानित किया गया था, क्योंकि मैं वहां का वासी हूं, मेरा स्टेट झारखंड है और मैंने अपने फोर्स के लिए और अपने देश के लिए या अपनी टीम के साथ मिलकर मुझे ये कार्य करने का अवसर मिला था
0: जी,
1: इसका सम्मान किया गया था झारखंड सरकार के द्वारा
0: जी। और सर, इसके अलावा आपको उत्तराखंड सरकार की तरफ से भी, चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से भी जनवरी 2026 में भी आपको सम्मानित किया गया था। आपकी जो एज ए ट्रेनर CINJW स्कूल SSB गोलदाम में आपने जो अपनी सेवाएं दी एज ए ट्रेनर, उसके लिए भी आपको ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड ने भी सम्मानित किया था
1: जी। मैं मेरी अभी जो करेंटली जो मेरी पोस्टिंग है
0: जी,
1: उस CINJW स्कूल SSB ग्वालदम में उत्तराखंड में, जहां मैं बतौर ट्रेनर हूं, तो पिछले 2 वर्षों से मेरी सेवाओं को फैसिलिटेट करने के, उसको सम्मानित करने के लिए मुझे ये मौका मिला कि मेरे सीनियर्स के द्वारा मेरा नाम नामित किया गया। मेरे DIG सर थे श्री DN बॉम्बे सर, उन्होंने मेरा नाम नामित किया और मुझे झारखंड उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ये पुरस्कार दिया गया
0: जी। तो ये सर इतने सारे पुरस्कार हैं, इतने सारे आपके जो कमेंडेशंस हैं, मेडल्स हैं, अवार्ड्स हैं, इनको पा करके आप सर कैसा महसूस कर रहे थे और करते हैं?
1: सच पूछूं तो जब भी कोई ये कार्य करता है, अपने एंटी नक्सल ऑपरेशंस में मैं जा रहा था, तो सर्वप्रथम इसमें

0: ऐसा नहीं था कि पुरस्कार के लिए ये चीजें की जाती हैं,
1: जी
0: क्योंकि
1: बिल्कुल
0: तब सिर्फ राष्ट्रहित और देशहित का जो जज्बा है वही आपको इन चीजों के लिए मोटिवेट करता है, लेकिन पुरस्कार उसका फल है। तो मैंने जितने भी ऑपरेशंस किए, मैंने अपने सीनियर से सीखा है कि आप फल के पीछे ना भागें, क्योंकि ये ऐसी चीज है जहां पे कि जिंदगी और मौत जो है वो लाइन पे खड़ी होती है। तो इसके लिए पुरस्कार सिर्फ आपका मोटिवेटिंग फैक्टर नहीं हो सकता, ये टीम एफर्ट है, राष्ट्रहित की भावना है जिसके लिए मैं ये कर रहा था,
1: जी।
0: और जब पुरस्कार से इसको नवाजा जाता है तो निश्चित रूप से ये अच्छा प्रतीत होता है।
1: बेशक, और हौसला और भी बढ़ता है, और आपके जो भी साथी होते हैं उनको भी हौसला मिलता है। सर, ये सब ऑपरेशंस में, इतनी सारी आपकी ट्रेनिंग में, इतने आपके कोर्सेज में, और फैशन टेक्नोलॉजी से SSB में आने में, परिवार का आपका किस तरीके से पूरा एक रोल रहा, सहयोग रहा, कैसी सपोर्ट रही, ये भी बताइए।
0: जी, मैं बताना चाहूँगा कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं बड़े परिवार से आता हूँ जिसमें कि तीन, हम लोग चार भाई बहन हैं, और मेरे माता पिता हैं, और मेरी शादी हो चुकी है, मेरी धर्म पत्नी भी हैं।
1: जी
0: तो मेरे पिताजी ने और मेरी माँ ने इसका खुले दिल से इसका सपोर्ट किया जब मैं फोर्स लाना चाहता था। हालांकि मेरी माँ डरती थी इस चीज़ से, लेकिन मेरे पिताजी ने बहुत बार मुझे मोटिवेट किया, और मेरे जितने भी भाई बहन हैं और जितने मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे बड़े भाई, मेरी बड़ी बहन, मेरी दो बहनें बड़ी हैं, एक मेरे बड़े भाई साहब हैं,
1: अच्छा
0: उन्होंने मुझे मोटिवेट किया इस चीज़ के लिए लगातार। और अंत में जिस व्यक्ति का एक और बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है वो
1: जी
0: है मेरी पत्नी। उन्होंने लगातार, क्योंकि सबसे ज़्यादा उनको ही इस कठिनाई को झेलना पड़ता था जब मैं बाहर रहता था,
1: जी
0: 3-4 दिनों तक मेरी बात नहीं होती थी उनसे, तो
1: तो
0: वो
1: जाहिर ही ये
0: बहुत
1: सपोर्ट तो सबसे इम्पोर्टेंट
0: सबसे,
1: सपोर्ट।
0: हाँ, ये ऐसा सपोर्ट था जिसकी मैं कल्पना नहीं की थी मैंने, तो मैं उसके लिए सौभाग्यशाली।

नमस्कार। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आप हमारे प्रसारण एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज के साथ न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी सुन सकते हैं। शाम के 5 बजने वाले हैं। हम हाजिर हैं अपने सायंकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ। सभा का आरंभ समाचारों के साथ। समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे।

0: का कोई पीएम यहां पहुंचा था, तब मैंने कहा था कि अब आपको 28 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पिछले 12 वर्षों में मैं तीसरी बार यहां आया हूं, यानी इस बार हैट्रिक लगी है। ये दिखाता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते किस ऊंचाई पर है।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर सम्मेलन वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल

0: की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। शिखर सम्मेलन के समापन के बाद विक्टोरिया के गवर्नमेंट हाउस में संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया। इस दौरान संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे से जुड़े ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एल्बनीज ने इस भविष्य उन्मुख साझेदारी को और मजबूत बनाने की बात कही। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज भुवनेश्वर स्थित ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में खुले समुद्र में मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ किया। उन्होंने समुद्री अर्थव्यवस्था को राष्ट्रीय समृद्धि का परिवर्तनकारी इंजन बताते हुए युवाओं से आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित मत्स्य पालन और समुद्री व्यवसायों को विकसित भारत की आधारशिला के रूप में अपनाने का आग्रह किया। गुजरात सरकार ने आज गांधीनगर के महात्मा मंदिर में विकसित भारत डेटा सेंटर नीति 2026-29 का शुभारंभ किया। इस नीति का उद्देश्य 8 गीगावाट क्षमता का लक्ष्य निर्धारित करते हुए गुजरात को भारत के अग्रणी डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इस नीति का उद्देश्य राज्य में 6,00,000 करोड़ रुपए के विशाल निवेश और अधिक रोजगार सृजित करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और नए भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के अंतर्गत निर्धारित वयस्क साक्षरता मानकों को हासिल करने के बाद उत्तराखंड देश का 6ठा पूर्णतः साक्षर राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस उपलब्धि को ऐतिहासिक बताया और कहा कि यह सरकार के निरंतर प्रयासों और जनता की सक्रिय भागीदारी का परिणाम है। भारत अफगानिस्तान संयुक्त समिति की 4थी बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई। इस दौरान मानवीय सहायता, विकास साझेदारी, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, क्षमता निर्माण, शिक्षा, खेल, व्यापार, वीजा और संपर्क सहित द्विपक्षीय संबंधों के समूचे परिदृश्य की समीक्षा की गई। बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव एम आनंद प्रकाश और अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक शुवेब बरयलाई ने की। दक्षिण पश्चिम मानसून आज पूरे देश में सक्रिय हो गया है। मानसून राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों में भी आगे बढ़ चुका है। मौसम विभाग ने हरियाणा सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तेज बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। भारत और इंग्लैंड के बीच 4था T20 मैच आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल में खेला जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला में 2-0 से पीछे भारतीय टीम को सीरीज ड्रॉ कराने के लिए हर हाल में ये मैच जीतना होगा। वहीं फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। पहले मुकाबले में आज रात 1:30 बजे फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज पर तथा FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

0: की बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना एडीए माना। हर टन में ज्यादा लंबाई, ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। आरएचएल गोल्ड टीएमटी सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
3: नमस्कार, आज के सेवाड़ी कार्यक्रम में मैं प्रकृति

0: सभी युवाओं का स्वागत करती हूँ। शुरू करते हैं आज के सुविचार से। साथियों, जीवन में जो भी परिस्थिति आए उसका हमें सामना हमेशा संयम और धैर्य के साथ करना चाहिए। प्रयास करिए कि जब कोई भी ऐसी परिस्थिति, कठिन परिस्थिति आपके समक्ष आए तो उसमें ज़्यादा वक्त आपको संयम पर ध्यान रखने में देना चाहिए। ये था आज का सुविचार, लेकर चलते हैं आपको चर्चा की ओर। भारत अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक हस्तशिल्प और कारीगरी के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध है। देश के अनेक कारीगर और शिल्पकार पीढ़ियों से अपनी कला को जीवित रखे हुए हैं। आधुनिक समय में उन्हें प्रशिक्षण, बाजार और आर्थिक संसाधनों की कमी जैसे अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने उस्ताद योजना यानी कि अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स क्राफ्ट फॉर डेवलपमेंट की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य विशेष रूप से पारंपरिक कला एवं शिल्प से जुड़े अल्पसंख्यक समुदाय के कारीगरों के कौशल का विकास करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। उस्ताद योजना के अंतर्गत कारीगरों को आधुनिक तकनीकों के साथ पारंपरिक कला का प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे उनके उत्पादों की गुणवत्ता और बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ सके। इसके माध्यम से हस्तशिल्प, हथकरघा, कढ़ाई, लकड़ी की नकाशी, धातु कला और अन्य पारंपरिक कलाओं को संरक्षित और प्रोत्साहित किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण के साथ साथ विपणन, प्रदर्शनी, ब्रांडिंग और उद्यमिता से संबंधित सहायता भी प्रदान की जाती है। इससे कारीगरों को अपने उत्पादों के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध होता है। उस्ताद योजना केवल एक कौशल विकास कार्यक्रम नहीं बल्कि भारत की पारंपरिक कलाओं और शिल्पकारों को सशक्त बनाने का एक प्रभावी प्रयास है। यह योजना रोजगार के अवसर बढ़ाने, आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करने और देश की सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। अगर इस योजना का प्रभावी क्रियान्वयन और व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए तो ये भारत के कारीगरों के आर्थिक और सामाजिक विकास का सशक्त माध्यम भी बन सकती है। साथियों, चर्चा और भी होगी, आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।
1: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
2: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

साथियों, आप सुन रहे थे एक मनमोहक गीत और अब इसी के साथ चलते हैं चर्चा की ओर। जल जीवन का आधार है और इसके बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण, भूजल के अत्यधिक दोहन और जलवायु परिवर्तन के कारण आज जल संकट एक गंभीर समस्या बन चुका है। ऐसे समय में वर्षा के जल का संरक्षण अत्यंत आवश्यक हो गया है। वर्षा जल संचयन यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक ऐसी प्रभावी और सरल तकनीक है जिसके माध्यम से वर्षा के जल को एकत्रित कर भविष्य में उपयोग के लिए सुरक्षित रखा जाता है। यह जल संरक्षण का एक सस्ता, पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ उपाय है। वर्षा जल संचयन के अंतर्गत घरों, विद्यालयों, कार्यालयों और अन्य भवनों की छतों पर गिरने वाले वर्षा जल को पाइपों के माध्यम से टंकियों या भूमिगत जलाशयों में संग्रहित किया जाता है। इस जल का उपयोग पेयजल, सिंचाई, घरेलू कार्यों और भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। साथियों, वर्षा जल संचयन से जल की बर्बादी रुकती है, भूजल का पुनर्

साथियों, जल का प्रत्येक कण कण अमूल्य है। इसके लिए उसका संरक्षण करना हम सभी का नैतिक और सामाजिक दायित्व है। जल है तो कल है का संदेश वर्षा जल संचयन के महत्व को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है। साथियों, ये थी चर्चा। आइए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: साथियों, आप सुन रहे थे प्यारा सा गीत, और अब इसी के साथ चलते हैं चर्चा की ओर। भारत विश्व के सबसे युवा देशों में से एक है। देश की लगभग आधी से अधिक आबादी युवा है, जो राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति मानी जाती है। अगर इस युवा शक्ति को उचित शिक्षा, प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्राप्त हों, तो भारत तीव्र गति से विकास के पथ पर अग्रसर हो सकता है। बदलते समय में केवल शैक्षणिक योग्यता ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि साथ ही कौशल सीखना बेहद महत्वपूर्ण है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने युवाओं को रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी कि PMKVY का शुभारंभ किया। यह योजना युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और देश के आर्थिक विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण प्रयास है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का शुभारंभ 15 जुलाई 2015 को विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर भारत सरकार द्वारा किया गया। यह योजना कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय MSDE के अंतर्गत संचालित होती है, और इसका क्रियान्वयन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा किया जाता है। साथियों, इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, और इसके अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य निर्माण, पर्यटन, आतिथ्य, इलेक्ट्रॉनिक्स, वस्त्र उद्योग, कृषि, ऑटोमोबाइल, सौंदर्य एवं स्वास्थ्य सेवाओं सहित अनेक क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाता है। साथियों, इसी के साथ आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।
1: जिंदगी बहुत कीमती है,
2: उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
4: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास
5: और भरोसा, जानो फिर मानो।
6: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। BTech पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA B फार्मा M फार्मा और D फार्मा में एडमिशन ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।

साथियों, आप सुन रहे थे एक मनमोहक गीत, और अब इसी के साथ चलते हैं चर्चा की ओर। साथियों, एक युवा विशेष तौर से जब अपनी 12वीं की शिक्षा पूरी करता है तो एक सबसे बड़ी ऊहापोह की स्थिति उसके मन में रहती है कि कौन सा करियर, कौन से क्षेत्र में हम प्रवेश लें। ऐसे में अगर आज के दौर की बात की जाए तो हर सेक्टर में, चाहे आप वो हॉस्पिटैलिटी का सेक्टर देखिए, मेडिकल सेक्टर देखिए, हर सेक्टर में आजकल प्रचार प्रसार करने के लिए, बेहतर प्रचार प्रसार करने के लिए, जो एक समय तक केवल अखबारों या किसी पैम्पलेट तक सीमित था, आज प्रचार प्रसार का दायरा बढ़ चुका है और हम डिजिटली हर क्षेत्र अपने आप को उसका प्रचार प्रसार करना चाह रहा है। ऐसे में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारे पास एक बेहतर वीडियो स्किल, यानी कि वीडियो एडिटिंग का स्किल अगर आपके पास है, तो वीडियो एडिटर की आवश्यकता आज के समय में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इसका प्लेटफॉर्म आपके पास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से आप काफ़ी बेहतर इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। इस स्किल को सीखने के लिए आपके पास कई कोर्सेज़ हैं, लेकिन कोर्सेज़ से पहले प्रयास करिए कि इतने सोशल मीडिया माध्यम से आप इसको सीखने की शुरुआत कर सकते हैं। तो प्रयास करिए कि अगर आपका इस क्षेत्र में, अगर आपके इस क्षेत्र में रुचि है, तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लें और देखें।

साथियों, आप सुन रहे थे एक मनमोहक गीत और अब इसी के साथ वक्त हो चला है प्रश्नोत्तरी का। साथियों, कल का प्रश्न था विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों, विश्व जनसंख्या दिवस हर वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसी के साथ साथियों, आज का प्रश्न है विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है। प्रश्न एक बार और, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों, इसका उत्तर आपको कल के कार्यक्रम में दिए जाएगा। इसी के साथ अब अपनी दोस्त प्रकृति को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली बार कुछ नई और रोचक बातों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।

तभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युवाणी। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन।

आपकी पसंद आपका गाना और आवाज होगी आपकी। जी हाँ, आकाशवाणी का सबसे चहेता प्रोग्राम हेलो फरमाइश अब आप सुनेंगे हर रविवार प्रातः 10:05 पर। कर लीजिए तैयारी क्योंकि हर शनिवार दोपहर 11 से 12 बजे के बीच होगी हमारी रिकॉर्डिंग। तो देर किस बात की, अभी उठाइए अपना फोन और डायल कीजिए हमारा नंबर 0551220।

0: 05386 0551 हमारा STD नंबर है गोरखपुर का। नंबर एक बार फिर से 2205386। अपनी फरमाइश हमें बताइए और जुड़िए आकाशवाणी गोरखपुर के साथ। कॉल करना भूलिएगा मत। हर शनिवार दोपहर 11 बजे से 12 बजे के बीच।
1: घर आंगन कार्यक्रम सुनने वाली सब श्रोता बहन के सुषमा और
2: रागिनी का नमस्ते।
1: हाँ बहन, बहुत बहुत स्वागत बा अपने कार्यक्रम में। और देखिए बहन, हमन के जौन बाना अपने कार्यक्रम में घर आंगन से संबंधित कुछ ना कुछ विषय पे अपने बहन लोगन से चर्चा कैल जाला। आज हमन के जौन बैठकी में मौजूद बा चर्चा, ओकर विषय बा प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान।
2: हाँ तो घर जैसे पिया बहन लोग होला और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान जौन है और 9 जून 2016 के शुरू कैल गेल रहा और एकर उद्देश्य यह है कि अधिक से अधिक जौन है प्रसव सुरक्षित कैल जा। पहले के समय में होत रहा कि प्रसव जौन है घर पे हो जात रहा, जिसमें जच्चा बच्चा दोनों के खतरा भइला का संभावना रहल है। लेकिन आज जौन सुरक्षित मातृत्व दिवस मनौले का सबसे बड़ा कारण यह है कि इनके प्रसव जौन घर पर न करा करके उनके नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाएं, आशा एनम बहु लोग हैं उनके पास ले जाके वहाँ ही सुरक्षित प्रसव करावल।
1: कुल मिला के कहले के मतलब बा कि हमन के संस्थागत प्रसव के ओर जौन बा आकृष्ट भइल जा और साथे साथे जौन आपन सरकार भी बाना वो भी तमाम तरीके का योजना समय समय पे चलावत रहले जैसे आपन जौन बा बहिन लोग ओकर लाभ उठा सकें। तई योजना के तहत जौन बा आपन बहिन लोग प्रति माह 9 तारीख के जाके अपन संस्थागत सरकारी अस्पताल में कोनो गर्भवती महिला आपके वहाँ बाटी या आप खुद गर्भवती बाटी तो आप नियमित तौर से अपन ओकर जांच करवा सके नहीं, जेमें निशुल्क रूप से आपका पूरा जांच हुई, जेमें हीमोग्लोबिन हो गए, यूरिन टेस्ट हो गए, अल्ट्रासाउंड हो गए, जौन भी प्रमुख जाँच बा वो पूरी तरीके से मुफ्त बा।
2: हाँ, और कहल जाला कि दूसरी और तीसरी तिमाही में जौन है उसके विशेष रूप से ध्यान दे करके और आशा बहुल आज तक घर घर जा करके आशा बहुल पता कर रही थी कि कौन घर में गर्भवती है और उकर पूरा डिटेल जौन रखा थी और उनके ए नज़दीकी जौन स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ ले जा करके उनकर जांच भी करावत है और तो और उनके साथ में ले जा कर सुरक्षित प्रसव भी करा रहल बाटी।
1: एक योजना का मुख्य उद्देश्य बा कि अपन सरकारी अस्पताल में अपन डॉक्टर द्वारा जौन बा सुरक्षित जांच होल करी तो अपन जौन जच्चा बच्चा रही हैं पूरी तरीके से सुरक्षित रहें और शिशु मातृ दर मातृ मृत्यु दर जौन बा ओके कम कैला के एकर उद्देश्य बा। एकरे तहत सरकारी योजना चलेले बा जेकर लाभ जौन बा अगर आपके घर में कोनो गर्भवती बाटी या आप गर्भवती बाटनी या आस पास के गर्भवती बा तो ओके ये योजना के बारे में बताएं और ये योजना के पूरी तरीके से बहन लोग लाभ उठावें।
2: बहन सभी अपनी बैठकी में जानकारी मिलल और तनी मन मन साइन करे खातिर सुनल जाएगा लोकगीत।

वहीं सब सुन ली गीत शारदा सिन्हा जी की आवाज में और एक ही साथ अपने बैठकी के आगे बढ़ा जा। देखी बहन गर्मी बहुत पड़ रहा बा और गर्मी के साथे साथे ना कबो कबो बरखा बुन्नी बरस जाता तो आराम हो जाता लेकिन फिर घाम हो जाता तो फिर गर्मी जौन बा वो गर्मियों से ज़्यादा बढ़ जाता। तो ई अक्सर हमन के बरसात में देखे नहीं कि जौन गर्मी बा वो बढ़ जाला, काहे कि ओकर एक ठो कारण बा कि बरसात के बा

0: गर्मी के बाद जब पानी बरसे ला तो जौन इन्वायरमेंट वातावरण बा ओमे नमी का स्तर जौन बा बढ़
1: बढ़
0: जाला,
1: जाए।
0: ए नाते जौन बा गर्मी बढ़ जाला। तो ए नमी के मौसम में ना परेशानी भी बढ़ जाला। जैसे कि अपने किचन के ले लहल जाए, रसोई घर के ले लहल जाओ, ओमे जौन खाद्य पदार्थ बा ओकरे खराब होले के जौन उस दर बा ऊ बढ़ जाला। ए समय हमन के बरसात के समय में विशेष देखभाल का जरूरत होला कि अपन खाद्यान्न के हमन के कैसे सुरक्षित रखल जा।
1: और खाद्य पदार्थन में हमेशा देखभाल करत रहें कि उनमें फफूंद न लगे पाँव, नहीं तो उसे कई तरीके का इन्फेक्शन भइले का संभावना रहेला और पेट संबंधी बीमारी भी भइला का संभावना रहेला।
0: तब फफूंद ना लगे खाद्य पदार्थ में, एकरे खातिर सबसे जरूरी बा कि सबसे पहले तो हमन के अपने रसोई के साफ सफाई पे विशेष ध्यान दिया जा कि अपन जो रसोई बा वो पूरी तरीके से साफ होकर, काहे कि साफ सफाई नहीं रहला ना तो किचने में जो रसोई घर बा ओमे कीड़ा मकोड़ा भी आवे ना, उससे भी इन्फेक्शन फैलेला। लेकिन अगर हमन के साफ सफाई बा साथे साथे नमी अपने किचन में रह गई तो फफूंद लगले के जौन बा ऊ डर जौन बा बढ़ सकेला। ए नाते बहिन लोग अपने रसोई घर में ध्यान दें कि कौन प्रकार के नमी न रहे, और समय समय पे जौन भी डिब्बा बा जौने में अपन अनाज संग्रहित बा ओके समय समय पे जौन बा धूप अवश्य दिखावें, जैसे पूरी तरीके से जौन नमी बा वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाए।
1: हाँ बहिन सभी अपनी बैठकी में बातचीत भइल और एक के साथे सुनल जाए वार्ता मोटे अनाजों की उपयोगिता जिस पर जानकारी दे रहल बटी डॉक्टर श्वेता सिंह ताई सुनी जा।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना,
2: सीमेंट से 9.5% तक आम सरिया के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
3: आरएचएल गोल्ड टीएमटी सरिया 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
4: डायल कीजिए 8700014242।
5: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
6: आज बहुत बड़ी समस्या है स्वास्थ्य संबंधित लोगों की कि आज लगभग हर इंसान बीमार पड़ रहा है, बहुत सी समस्याएं हो रही हैं, लोगों में प्रतिरोधक क्षमता की बहुत कमी आ गई है। स्पेशली कोरोना के बाद से जो लोगों की बीमारियों के प्रति लड़ने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे कम होते जा रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में हमने बहुत से चीजों को अपनाया है, अपनी लाइफ स्टाइल में परिवर्तन किया है, अपने खान पान में परिवर्तन किया है, और इन्हीं सबको देखते हुए आज मांग उठ रही है कि मोटे अनाजों को हम अपनी थाली में लाएं। इस पे बहुत से प्रशिक्षण हो रहे हैं। वर्ष 2018 को मोटे अनाज वर्ष के रूप में मनाया और हमारे प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे 2023 को भी अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष के रूप में मनाया गया, जिसमें बहुत से कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र और बहुत से स्कूल कॉलेज इन सब के द्वारा रैलियां निकाली गई, बहुत सी प्रतियोगिताएं की गई व्यंजन बनाने के लिए, जैसे मोटे अनाजों के व्यंजन बनाए गए, बहुत से प्रशिक्षण का आयोजन किया गया जिसमें कि बहुत सी तरह के प्रशिक्षण दिए गए कि किस तरह से मोटे अनाज को खाना चाहिए, मोटे अनाज में कौन कौन से पोषक तत्व मिलते हैं, और बहुत से तरीके से लोगों को जागरूक किया गया। तो आज हमारा विषय मोटे अनाज ही है और इस पर हम बात करते हुए आगे चर्चा करेंगे कि मोटे अनाजों को वाकई में हमें खाना चाहिए और क्यों खाना चाहिए, ये किस तरह से हमारे लिए कितने बेनिफिशियल होते हैं। तो मोटे अनाज जो होते हैं उनमें बहुत से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट है, इनको सुपर फूड कहा जा रहा है क्योंकि इनकी जो पोषक तत्वों की जो इनके अंदर क्षमता है वो बहुत अच्छी है, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है बीमारियों से लड़ने के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो भी आवश्यक पोषक तत्व होते हैं वो मोटे अनाजों में पाए जाते हैं। मोटे अनाजों के अंदर किन किन अनाजों को शामिल किया जाए ये जानना सबसे पहले जरूरी है। तो मोटे अनाजों में आपके बाजरा, ज्वार, रागी, कंगनी, कुटकी, कोदो, सावा, चेना, ये सब आते हैं। इनको भी दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक होते हैं कि बड़े मोटे अनाज और एक होते हैं जिनको हम छोटे अनाज कहते हैं। तो छोटे अनाजों में आपका रागी, कंगनी, कुटकी, सावा ये आते हैं। तो जो आपके मोटे अनाज हैं जैसे कि बाजरा है, ज्वार है, ये बाजरा जो होता है आपका फुल ऑफ प्रोटीन है, रागी में कैल्शियम की मात्रा बहुत अच्छी पाई जाती है, तो ये सब मोटे अनाज जो है ये इनमें अलग अलग पोषक तत्व और बहुत से विटामिन मिनरल्स इनकी प्रचुर मात्रा पाई जाती है, जिसकी वजह से ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं। मोटे अनाज आज के लगभग 100 साल पहले हमारी दादी नानियां बताती हैं कि वो मोटे अनाज

जो का सेवन करती थी, क्योंकि उस समय जो चावल है, गेहूं है, इसकी उपलब्धता नहीं थी, इतने अच्छी मात्रा में उत्पादन नहीं हो पाता था गेहूं का और चावल का, इसलिए वो लोग मोटे अनाजों का सेवन करते थे। तो हम ये कह सकते हैं कि मोटे अनाजों को उस समय गरीबों का भोजन भी कहा जाता था, क्योंकि उस समय गेहूं और चावल की उत्पादकता बहुत कम थी। फिर हरित क्रांति आ गई, हरित क्रांति में बहुत से रासायनिक खाद आए, बहुत से रासायनिक कीटनाशकों का उत्पादन किया गया, जिसकी वजह से उपज काफी हद तक बढ़ गई है और बहुत ही गेहूं और चावल प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अच्छा खासा कोष भारत सरकार का भरा हुआ है गेहूं और चावल से, और आज की डेट में सबका ही मुख्य आहार जो है वो गेहूं चावल ही है। और इसमें जो बहुत सी तरह की चीजें हैं जिसकी वजह से रासायनों का प्रयोग इतना ज्यादा बढ़ जाना, अधिकाधिक मात्रा में खादों का प्रयोग होना, जिससे कि हमारे जो अनाज है इनमें भी उन रसायनों का परसेंटेज आ जाता है और हम खाते हैं तो विभिन्न तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। जबकि मोटे अनाज की खेती में किसी रसायन का प्रयोग नहीं होता है, किसी रासायनिक की बहुत कीटनाशक की जरूरत नहीं होती है, जिसकी वजह से वो ज्यादा प्योर होता है और हम जैविक है और हमारे लिए बहुत उपयोगी है। तो मोटे अनाज जो होते हैं ये हर तरह से हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छे हैं। मोटे अनाजों का प्रयोग अगर हम करते हैं तो हम बहुत सी बीमारियों से लड़ने के लिए अपनी प्रतिरोधक क्षमता डेवलप कर लेते हैं। मोटे अनाजों का प्रयोग इसलिए भी आज जरूरी है, जो पर्यावरण असंतुलन हो रहा है कि जब गेहूं कटने का समय होता है उसमें बारिश होने लग रही है, जब धान लगना होता है या धान बड़ा हो रहा था उसमें बारिश कम हो जाती है, तो बहुत से ऐसे पर्यावरण असंतुलन की वजह से किसान काफी सारे मौसम की मार से वजह से बहुत लॉस में जाता है। जबकि मोटे अनाजों में बहुत पानी की आवश्यकता नहीं होती है और बहुत से कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं होती है, वो कम से कम पानी में कम कीटनाशकों के बिना भी बिना खाद के भी अच्छी मात्रा में उपज देते हैं, कम समय में तैयार हो जाते हैं, तो किसानों के लिए भी ये बहुत बेहतर है। हमारी जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है इसके लिए भी बहुत बेहतर है कि हम मोटे अनाजों को अपनाएं, उसको ज्यादा से ज्यादा हम कंज्यूम करें, क्योंकि जब हम मोटे अनाज खाएंगे तभी किसान उसका उत्पादन करने के लिए प्रेरित होंगे और वो आगे बढ़ेंगे और वो जब लगाएंगे तो उनको भी फायदा होगा। और मोटे अनाज जो होते हैं इनमें विभिन्न तरह के फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत से विटामिन्स होते हैं जिसमें B6 है, B12 है, आयरन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, कैल्शियम की बहुत अच्छी मात्रा मिलती है, इसके अलावा बीटा कैरोटीन काफी अच्छी मात्रा मिलता है जो हमारी आंखों के लिए बहुत जरूरी है। तो आप कह सकते हैं कि मोटे अनाज जो है एक कंप्लीट फूड की तरह से अब अपनाए जा रहे हैं, इनका हमारे आहार में होना बहुत जरूरी है कि हम इसको अपने आहार में लेकर के आए। आपको पता होगा कैल्शियम के लिए डॉक्टर प्रोवाइड करते हैं कि दूध पीजिए, दूध में अच्छा कैल्शियम मिलता है क्योंकि आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, लेकिन रागी एक ऐसा आहार है जिसमें 100 ग्राम में 344 mg कैल्शियम मिलता है, जबकि 100 ग्राम दूध में आपको सिर्फ 120 mg कैल्शियम मिलता है। तो अगर हम एक तुलनात्मक अध्ययन करते हैं अन्य पदार्थों से तो आपको पता लगेगा कि मोटे अनाजों में लगभग हर तरह के अच्छे जो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं ये अच्छी मात्रा में मिल जाते हैं। तो हमें इनको अपनाने पर पूरा ध्यान देना चाहिए, हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारे प्रतिदिन के आहार में कम से कम 20% से 25% हम कुछ न कुछ मोटा अनाज जरूर लें। हम सावा की खिचड़ी ले सकते हैं, खीर ले सकते हैं, हम रागी की चिला बना के ले लें, बाजरे की रोटी खा सकते हैं, तो किसी न किसी रूप में मोटा अनाज हमारी थाली का हिस्सा होना चाहिए, ये हमें सुनिश्चित करना चाहिए। हम पूरी तरह से नहीं कर सकते लेकिन हम कुछ न कुछ जरूर लें, हलवा बना के ले लें, लड्डू बना के खा लें, कुछ भी जो भी आप कर सकते हैं, जिस तरह से आप कंज्यूम करना चाहें, लेकिन मोटे अनाजों को हमें अपने आहार में धीरे धीरे शामिल करना है, हमें उसकी तरफ बढ़ना है। तो ये हमें अभी से सुनिश्चित करना होगा कि हम मोटे अनाजों को अपनी थाली में ले आए, अपने आहार का हिस्सा बनाएं, ताकि हम बहुत से बीमारियों से बच पाए और लड़ पाए, क्योंकि ये हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करेगा, बीमारियों से लड़ने की क्षमता को डेवलप करेगा, कब्ज से संबंधित बीमारियों को ठीक करेगा। आजकल हर व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की बीमारी है और मधुमेह की समस्या है, हार्ट से रिलेटेड बहुत सी दिक्कतें हो रही हैं, तो इन सब बीमारियों से लड़ने के लिए मोटा अनाज एक बहुत बड़े उपचार के रूप में अपनाया जा रहा है। आप इसके साथ साथ एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जिसमें कि व्यायाम है, एक्सरसाइज है, योगा है, इन सब चीजों को अपनी लाइफ में लाइए, लेकिन इसके साथ साथ आप मोटे अनाजों को अपने आहार में परिवर्तन करिए और मोटे अनाजों को खाइए, क्योंकि इसमें फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है। फाइबर क्या करता है कि हमारे डाइजेशन को अच्छा रखता है, मजबूत रखता है। अगर आप मोटा अनाज खाते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काफी अच्छे से वर्क करता है, खाना पचता है, और जब खाना पचता है तो शरीर की बहुत सी बीमारियां अपने आप ठीक हो जाती हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम मोटे अनाजों को अपने आहार में ले आएं। मुझे लगता है कि अब हम सब अब थोड़ा सा मोटे अनाजों की तरफ आ रहे हैं। मोटे अनाज जो है ये अभी आपको लगता होगा कि बहुत महंगे मिलते हैं, लेकिन अभी आप जब मंडी से किसी बड़े मॉल या स्टोर से खरीदेंगे तो शायद ये आपको बहुत महंगे पड़ेंगे, लेकिन अगर आप इनको मंडी या बड़ी मार्केट जहाँ पे ये चीजें थोक रेट में मिलती हैं वहां से आप जाके खरीदिए,

0: तो ये आपको सस्ते रेटों में मिलेगी। बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो कि कुछ करना चाहती हैं, एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रही हैं, उनके लिए भी एक अच्छा रिसोर्स है, क्योंकि मोटे अनाजों की डिमांड अब धीरे धीरे बढ़ रही है। तो महिलाएं इसको अपने एक रोजगार के रूप में भी ले सकती हैं कि आप इनको लेके आइए, अपने घर में पिसवा लीजिए, जहां से आप गेहूं पिसवाते हैं वहीं से आप इसको धुल के पिसवाइए, इसके छोटे छोटे पैकेट तैयार करिए और अपने आसपास अगल बगल के लोगों को ही बाजार से सस्ते मूल्य में प्रोवाइड कराइए। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रोजगार भी होगा महिलाओं के लिए।
1: बहन सभी अभी सुनल गई वार्ता मोटे अनाजों की उपयोगिता जे पर जानकारी देत रहनी डॉक्टर श्वेता सिंह। तो इतना निम्न जानकारी देवे खातिर इनके दिहल धन्यवाद। और अपने बैठकी के समय जो है समाप्त हो रहा बा, तो यही नारा के साथ है लेहल जा विदा। बहन सब नमस्ते।

अभी ग्रामीण महिलाएं सुन रही थी अपना कार्यक्रम घर आंगन। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज पर तथा FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आप हमारे प्रसारण प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन IR ऐप पर भी सुन सकते हैं। शाम के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारे केंद्र से प्रसारित क्षेत्रीय समाचार।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ हम वेद प्रकाश पाठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बांदा में 710 करोड़ रुपया से बेसी के लागत का कई गो परियोजनन के लोकार्पण आ शिलान्यास कैले। ए मौका पर वहां के कहने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में आज बुंदेलखंड बढ़िया कनेक्टिविटी से जुड़ के विकास का नया ऊंचाई छू रहा हो।
1: हम लोग हर एक्सप्रेस वे पर हर जनपद में इंडस्ट्रियल क्लस्टर के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। एक बृहद क्लस्टर का कार्यक्रम और बुंदेलखंड को तो हम यूपी का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर देने जा रहे हैं, बीड़ा के रूप में देने जा रहे हैं। आने वाले समय में हमारे बुंदेलखंड के नौजवानों को प्लान नहीं करना पड़ेगा, बल्कि देश और दुनिया के लोग और नौजवान बुंदेलखंड में नौकरी मांगने के लिए आएंगे और बुंदेलखंड को ऐसा भव्य और दिव्य बुंदेलखंड के रूप में हमें स्थापित करना है।
0: ए मौका पर मुख्यमंत्री कई गो योजनन के लाभार्थियों के नियुक्ति पत्र, स्वीकृति पत्र, चेक, आयुष्मान ना मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा कार्ड, आवास का चाबी और टूल किटो बंट लें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज चित्रकूट में कामतगिरी पर्वत का पैकर्मा कैले। ए मौका पर वहां के भगवान श्री कामतानाथ आ प्रभु श्रीराम से प्रदेशवासियन बदे सुख शांति समृद्धि आ कल्याण का प्रार्थना कैले। मुख्यमंत्री पैकर्मा के दौरान श्रद्धालुओं का अभिवादन स्वीकार कैले आ लैकन के साथे बातोचीत कैले। एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति बिहने से 15 जुलाई ले लखनऊ का दौरा करी।
2: इस अध्ययन दौरे का उद्देश्य क्षेत्रीय स्तर पर संवाद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना तथा विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक विचार विमर्श करना है। पीपी चौधरी की अध्यक्षता में गठित संयुक्त संसदीय समिति इस अध्ययन दौरे के दौरान उच्च

0: संवैधानिक पदाधिकारियों, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, राजनीतिक दलों, राज्य प्रशासन, वित्तीय एवं शैक्षणिक संस्थानों, शिक्षाविदों, राज्य बार परिषदों, संबंधित उच्च न्यायालय के अधिवक्ता संघों, विभिन्न पेशेवर संगठनों तथा नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श करेगी। समिति के अध्ययन दौरे में विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक और सार्थक विचार विमर्श होने की अपेक्षा है। लखनऊ से मुमताज अली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
1: केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू कहने कि वाराणसी हवाई अड्डा के नया टर्मिनल पर देश का पहला 6 लेन का अंडरपास बनावल जा रहा बा। एगो सोशल मीडिया पोस्ट में वहां के बतौनी कि 450 मीटर लम्हर ये अंडरपास देश के अगला पीढ़ी के बुनियादी ढांचा का हिस्सा हो। ओजा ऊपर विमानन के संचालन के दौरान नीचे सड़क यातायात सुचारू रूप से चल सके। प्रदेश सरकार की ओर से राज्य में शिक्षकन आ गैर शिक्षण कर्मचारियन बदे नकदी रहित स्वास्थ्य योजना शुरू हो चुकल हो। ए बारे में प्रस्तुत बा आकाशवाणी संवाददाता का एगो खास रिपोर्ट।
2: योजना के तहत राज्य भर के शिक्षकों और उनके परिवारों को 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से जुड़े लगभग 15 लाख शिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारी इस योजना से लाभान्वित होंगे। नियमित शिक्षकों के अलावा इस योजना से शिक्षा मित्रों, प्रशिक्षकों, रसोइयों और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के पात्र कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। शिक्षकों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए यह व्यापक सामाजिक सुरक्षा और बीमा कार्यक्रम देश में अपनी तरह की पहली पहल है। इस योजना के तहत 10,000 रुपए से ज्यादा मासिक वेतन पाने वाले संविदा कर्मचारियों को 30 लाख रुपए से 80 लाख रुपए तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मौसम विभाग प्रदेश में 11 जुलाई ले भारी बरखा का अलर्ट जारी कैले हो। विभाग के मुताबिक प्रदेश के पूर्वी जिलन में यह दौरान करीब सज्जो जगहिन पर बरखा आ गरज चमक के साथे बौछार पड़े का संभावना बा। ए बिचे गोरखपुर एकरे लग्गे के जिलनों में आज दिन में रुक रुक के बुन्ना बानी का सिलसिला जारी रहल। वहीं चंदौली, चित्रकूट आ अयोध्या के सतही कई जिलन में बरखा भइले से लोगिन के भीषण गर्मी से राहत मिलल हो। समाचार पूरा भइल, नमस्कार। आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बांदा में 710 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में आज बुंदेलखंड उत्कृष्ट कनेक्टिविटी से जुड़कर विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है।
3: हम लोग हर एक्सप्रेसवे पर हर जनपद में इंडस्ट्रियल क्लस्टर के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। एक बृहद क्लस्टर का कार्यक्रम और बुंदेलखंड को तो हम यूपी का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर देने जा रहे हैं, बीड़ा के रूप में देने जा रहे हैं। आने वाले समय में हमारे बुंदेलखंड के नौजवानों को प्लान नहीं करना पड़ेगा, बल्कि देश और दुनिया के लोग और नौजवान बुंदेलखंड में नौकरी मांगने के लिए आएंगे और बुंदेलखंड को ऐसा भव्य और दिव्य बुंदेलखंड के रूप में हमें स्थापित करना है।
1: इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र, स्वीकृति पत्र, चेक, आयुष्मान एवं मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा कार्ड, आवास की चाबी और टूल किट भी वितरित किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज चित्रकूट में कामतगिरी पर्वत की परिक्रमा की। इस अवसर पर उन्होंने भगवान श्री कामतानाथ और प्रभु श्री राम से प्रदेशवासियों के लिए सुख, शांति, समृद्धि तथा कल्याण की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने परिक्रमा के दौरान श्रद्धालुओं का अभिवादन स्वीकार किया और बच्चों के साथ आत्मीय संवाद भी किया। एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति कल से 15 जुलाई तक लखनऊ का दौरा करेगी।
0: इस अध्ययन दौरे का उद्देश्य क्षेत्रीय स्तर पर संवाद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना तथा विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक विचार विमर्श करना है। पीपी चौधरी के अध्यक्ष

0: में गठित संयुक्त संसदीय समिति इस अध्ययन दौरे के दौरान उच्च संवैधानिक पदाधिकारियों, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, राजनीतिक दलों, राज्य प्रशासन, वित्तीय एवं शैक्षणिक संस्थानों, शिक्षाविदों, राज्य बार परिषदों, संबंधित उच्च न्यायालय के अधिवक्ता संघों, विभिन्न पेशेवर संगठनों तथा नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श करेगी। समिति के अध्ययन दौरे में विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक और सार्थक विचार विमर्श होने की अपेक्षा है। लखनऊ से मुमताज अली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
1: केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा कि वाराणसी हवाई अड्डे के नए टर्मिनल पर देश का पहला 6 लेन वाला अंडरपास बनाया जा रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि 450 मीटर लंबा यह अंडरपास देश की अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। वहां ऊपर विमानों के संचालन के दौरान नीचे सड़क यातायात सुचारू रूप से चल सकेगा। प्रदेश सरकार की ओर से राज्य में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना शुरू हो चुकी है। इस संबंध में प्रस्तुत है आकाशवाणी संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट।
2: योजना के तहत राज्य भर के शिक्षकों और उनके परिवारों को 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से जुड़े लगभग 15 लाख शिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारी इस योजना से लाभान्वित होंगे। नियमित शिक्षकों के अलावा इस योजना से शिक्षा मित्रों, प्रशिक्षकों, रसोइयों और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के पात्र कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। शिक्षकों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए ये व्यापक सामाजिक सुरक्षा और बीमा कार्यक्रम देश में अपनी तरह की पहली पहल है। इस योजना के तहत 10,000 रुपये से ज्यादा मासिक वेतन पाने वाले संविदा कर्मचारियों को 30 लाख रुपये से 80 लाख रुपये तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मौसम विभाग ने प्रदेश में 11 जुलाई तक भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक प्रदेश के पूर्वी जिलों में इस अवधि में लगभग सभी स्थानों पर बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। इस बीच गोरखपुर और इसके आसपास के जिलों में आज भी दिन में रुक रुक कर बूंदाबांदी का क्रम जारी रहा। वहीं चंदौली, चित्रकूट और अयोध्या सहित कई जिलों में बारिश होने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 900 किलोहर्ट्ज़ पर तथा FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है किसान भाइयों का कार्यक्रम खेती बारी।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: प्रोग्राम हेलो फरमाइश अब आप सुनेंगे हर रविवार प्रातः 10:05 पर। कर लीजिए तैयारी क्योंकि हर शनिवार दोपहर 11 से 12 बजे के बीच होगी हमारी रिकॉर्डिंग। तो देर किस बात की, अभी उठाइए अपना फोन और डायल कीजिए हमारा नंबर 0551-220-5386। 0551 हमारा STD नंबर है गोरखपुर का। नंबर एक बार फिर से 220-5386। अपनी फरमाइश हमें बताइए और जुड़िए आकाशवाणी गोरखपुर के साथ। कॉल करना भूलिएगा मत हर शनिवार दोपहर 11 से 12 बजे के बीच।
1: पंचों जय जवान जय किसान। हाँ पंच भाई लोगन यही नारा के साथ जौन अपन बैठकी शुरू हो रहा बा। और पंच भाई लोग खेती के काम तो करबे करेला लेकिन साथे साथे पशुपालन का भी काम करेला।
2: और देखा बहन पशुअन के स्वस्थ रखे खातिर ना उनके आहार में जौन बा हरा चारा के महत्वपूर्ण भूमिका बा। काहे कि हरा चारा कैले से अपन जौन दुधारू पशु बाटा है उनका दूध तय बढ़वा करेला साथे साथे उनका जौन स्वास्थ्य बा वो पूरी तरीके से स्वस्थ ठीक रहेला। और आप लोग ध्यान देत हो बें कि आप लोग जौन हरा चारा देत हो बें उनमें प्रोटीन युक्त और गैर प्रोटीन युक्त दोनों चारा के मिला के देत हो बें जैसे जौन अपन पशु बाना ओकर जौन पाचन क्रिया बा वो पूरी तरीके से ठीक रही। अगर अपन पशु के पाचन क्रिया ठीक बा तब ओकर जौन बा हरा चारा के लाभ मिल पाई और अपने पशु पूरी तरीके से स्वस्थ रह पाई हैं। तो देखा बहन ये समय चल रहा बा बरसात के मौसम और बहुत से पंच भाई जौन होल हैं वो हरा चारा के प्रबंध कई ले लें। काहे कि कबो कबो आपके पास बहुत अधिका मात्रा में हरा चारा उत्पादित हो जाला और कबो कबो आप हरा चारा जौन बा उत्पादित नहीं कर पावेली वो समय खातिर भी अपन जौन पंच समय हमें वो हरा चारा का प्रबंध कैले रहने। कुछ लोगों के साइलेज के रूप में संग्रहित कैले ने जैसे कि साइलेज के मतलब बा कि जौन हरा चारा होला ओके गड्ढा खोन के जौन बा रख दिल जाला और हवा रोधी बना दिल जाला जैसे जौन हरा चारा रहला ना वो सड़े ला नहीं और अपन पशुओं के उपयोग कर सके ना। साथ ही साथ जौन हे बा हे मतलब जौन अपन अधिक मात्रा में हरा चारा उत्पादित हो गई बा ओके हमन के सुखा देनी पानी के सुखा के ओके लंबे समय तक हरे चारे के रूप में अपन पशुअन के खियावल जाला। ई तरहल अपन हरा चारा और ए मौसम में कुछ जौन हरा चारा बा अपन पंच सबे उगावे ले भी जैसे हो गई ज्वार बाजरा मक्का लोबिया आदि जौन हरा चारा बा ओके अपन पंच सबे उगावे ले भी।
1: हाँ और हरा चारा से में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट विटामिन और खनिज लवण मिलेला तथा हरा चारा जौन होला विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत भी होला। और हरा चारा से जौन पशुअन का होला प्रजनन क्षमता में वृद्धि होले दूध का मात्रा बढ़ेला और दूध की गुणवत्ता जौन है बढ़ेले होला उनके पाचन क्षमता जौन में सुधार होला और पशुअन के जो रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी वृद्धि होले। तो ऐसे पंच भाई लोगों के हरे चारे का प्रयोग जौन है ज़्यादा से ज़्यादा करे के चाहिए।
2: और अब बहन इस तरह हरा चारा के बाद अब अपनी बैठकी के आगे बढ़ावल जाए। और देखा बहन हमन के कार्यक्रम का उद्देश्य ही है कि हमन के अपने कार्यक्रम के माध्यम से अपने किसान भाई लोगन तक जौन बा जानकारी पहुँचावल जाए साथ ही साथ मनोरंजन के भी हमन के व्यवस्था कैले रहनी अपने कार्यक्रम में। तो पहले सुनल जाए एगो जानकारी तालाब में मछली के बच्चन का संचय कैसे कैल जा ये पे जानकारी दी है डॉक्टर दिनेश कुमार जी और बात करत हम विनय कुमार ना ही सुनल जा।
3: खेती से आमदनी दूना करे खातिर सरकार का उकुल प्रयास बाटे जौना से किसान भाई खुशहाल हो सके। खासतौर से जब खेती बाड़ी का बात कही जला तो जौन सहायक धंधा बाना ऊपर विशेष जोर देवे के बाटे। मछली पालन ऐसने एक व्यवसाय है कि अगर खेती के साथ साथ मछली पालन कही जा तो किसान भाई लोगन के आय दूना हो सकेला। आय दूना करे खातिर मछली पालन का सही तकनीक सही जगह से बीज का व्यवस्था और ओकर देखभाल बड़ा महत्वपूर्ण होला। आज अपने साथ फोन लाइन से जुड़ल हैं आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर दिनेश कुमार जी। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका हमारे यह कार्यक्रम में स्वागत बाटे। डॉक्टर साहब ये बताई बरसात का मौसम चलत बा अब लगभग हर जगह पनियारी भरपूर हो गई बा ऐसना में मछली पाले वाला तालाब में बच्चा कैसे डालल जा आ कैसे ओके खरीदारी करे के चाहिए का सावधानी बरते के चाहिए।
4: इसमें दो अहम बातें हैं कि एक तो ये है कि तालाब किस तरह का है

0: होता है कि जो जलीय खरपतवार हैं इनके बीच में काफी अवांछनीय कीट होते हैं जो कि मछलियों के बच्चों के लिए खासतौर से स्पॉन के लिए काफी अत्यंत घातक सिद्ध होते हैं। साथ ही साथ ये जलीय खरपतवार जो होते हैं वो हमारे अवांछनीय मछलियां हैं या कीट हैं उनके लिए एक आश्रय मुहैया कराते हैं, तो इनका निवारण जरूरी है। साथ ही साथ दूसरी चीज आती है कि पुराना तालाब है जिसमें कि पानी भरा हुआ है उसमें अवांछनीय जैसे होती हैं मछलियां जिसे वीट फिश कहते हैं उनका भी निवारण जरूरी है। इनके निवारण के लिए हमें करना चाहिए या तो नेटिंग के द्वारा महीन जो मच्छरदानी वाला जाल है उससे इनको निकाल के बाहर कर दिया जाए, या दूसरा तरीका होता है महुआ ऑयल केक जिसकी मात्रा 2000 से 2500 केजी प्रति हेक्टर की दर से हम तालाब में अप्लाई करते हैं। इससे ये होता है कि जो मछलियां अवांछनीय मछलियां होती हैं वो मर जाती हैं और इसका जो विषैला तत्व होता है तालाब में 7 दिन तक रहता है। तो जब सारी मछलियां मर जाएं उनको जाल से निकाल के बाहर कर दें और उसके बाद उसमें 7 दिन तक उस पानी को पड़े रहने दें। ये महुआ ऑयल केक एक तो मछलियों को मारता है साथ ही साथ तालाब की उर्वरता को भी बढ़ाता है। 7 दिन बाद हम उसमें मछली का बच्चा डाल सकते हैं। तीसरा तरीका जो है वो है हमारा कि ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का स्प्रे करने से भी अवांछनीय मछलियां जितनी होती हैं वो सब मर जाती हैं और उसकी जो टॉक्सिसिटी होती है इसका विषैला तत्व होता है कम से कम ये 4 से 6 दिन तक रहता है। इसके बाद तालाब हमारा पूर्णतः तालाब तैयार हो जाता है और तैयार होने के बाद हम इसमें स्पॉन का रियर करते हैं। जो स्पॉन की रियरिंग डेंसिटी होती है 1 मिलियन पर हेक्टेयर के हिसाब से होती है। ये तो हो गया हमारे पुराने तालाब का प्रबंधन। नए तालाब का प्रबंधन में ये होता है कि हमारा जो नया तालाब है उसमें पहले पूरी तरह से जुट चुका है खुद चुका है उसमें पहले चूने का स्प्रे किया जाता है क्विकलाइन जिससे कि जो भी अवांछनीय उसमें सूक्ष्म जीवी होते हैं जो कि मछलियों के लिए हानिकारक सिद्ध होते हैं वो मर जाते हैं। साथ ही साथ ये तालाब की जो मृदा है उसका पीएच मान जो होता है अम्लता और क्षारीयता उसको भी बैलेंस करता है। इसके बाद हम इसमें काउडंग का इस्तेमाल करते हैं। काउडंग डाल दिया जाता है उसके बाद इसमें पानी भर के तालाब को 4-6 दिन तक छोड़ देते हैं जिससे क्या होता है कि प्लैंकटन का प्रोडक्शन उसमें बढ़ जाता है। अब इस तरह के जो तालाब है हमारा वो मछली पालन के लिए उपयुक्त है। अब उसमें ये सेम जो मैंने अभी दर बताई थी स्पॉन की कार्प प्रजाति के 1 मिलियन प्रति हेक्टेयर की दर से इसमें संचय करते हैं। साथ ही हमें जब संचय हो जाए संचय होने के बाद हमें उसमें उनके आहार का भी प्रबंधन करना होता है। तो आहार के प्रबंधन में हमें खास तौर से ध्यान देना होता है कि आहार जो हो वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। अच्छी क्वालिटी का होगा और जिसमें कि राइस पॉलिश और ऑयल केक जो ऑयल केक है मस्टर्ड ऑयल केक सरसों की खली ये बराबर बराबर मात्रा में हो और उसका हम तालाब में स्प्रे करते हैं। लगभग जो ये शुरू में स्पॉन जो होते हैं अपने कुल वजन का 8% आहार ग्रहण करते हैं। एक अंदाजन के रूप में हमें अंदाजा लग जाता है कि जैसे मान लीजिए हमारे तालाब में 100 ग्राम अगर बच्चा स्पॉन है तो 100 ग्राम के हिसाब से हमारा 6 ग्राम के आसपास उसमें तालाब में जो आहार है वो दिया जाएगा। साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान देना होता है कि उसमें कोई अवांछनीय कीट तो नहीं पैदा हो रहे हैं जैसे रनात्रा है बैक स्विमर्स है वाटर बीटल हैं इनको भी ध्यान देना पड़ता है। तो इसका भी प्रबंधन हम पहले बीज संचय से पहले कर लेते हैं। अगर बीज संचय के बाद भी अगर वो नजर आ रहा है तो मच्छरदानी व हल्की मच्छरदानी का जाल चला के उसको बाहर कर दिया जाता है। बस ये ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी तालाब में जाल चलाएं तो उस समय जो मिट्टी है तालाब की वो उठे ना पानी का जो धुंधलापन है वो ज्यादा ना होने पाए जिससे होगा ये अगर पानी में ज्यादा मिट्टी घुलेगी तो मछलियों के जो गलफड़े होते हैं उनमें ये मिट्टी चिपक जाती है जिससे कि उनकी मृत्यु दर बढ़ सकती है। विशेष तौर से हमें इनका ध्यान देना पड़ता है और ये जब बीज संचय के बाद करीब 15 से 20 दिन के बाद ये जो हमारा स्पॉन है ये फ्राई स्टेज पे आ जाता है मतलब फिंगरलिंग से छोटा। अब ये जो हमारा स्पॉन है इस स्पॉन को हम चाहे बेचना हो किसी किसान भाई को या किसी को देना हो तो वो दिया जा सकता है।
1: डॉक्टर साहब
0: जी
1: आपके फैजाबाद जो नरेंद्र देव में कृषि विश्वविद्यालय बाग ओजा का मछली का बच्चा बिक्री हेतु उपलब्ध रहेगा?
0: जी हाँ यहाँ पे हमारे यहाँ पे इस समय मछली का बच्चा बिक्री के लिए उपलब्ध है जिसमें कि ग्रास कार्प और रोहू कतला का बच्चा इस समय उपलब्ध है।
1: 3 भारतीय जोन मेजर क्राप बा
0: जी
1: ओकर बच्चा उपलब्ध बा रोहू बा भाकुर बा और नयन बा
0: जी जी इसका बच्चा यहाँ पे उपलब्ध है सर यहाँ से किसान भाई संपर्क करके ले सकते हैं।
1: अच्छा एकरे खातिर का कोनो पहले से बुकिंग करावे के बा एडवांस देवे के बा या सीधे आके कार्य दिवस में प्राप्त कर सकेला?
0: सीधे किसान भाई हमसे सीधे संपर्क करें और किसी भी कार्य दिवस पे आके वो बच्चा ले सकते हैं। बस ये ध्यान रखना होगा हमें कि हमें कम से कम 1 दिन पहले सूचना मिल जाए कि फला किसान हमारे यहाँ से बच्चा लेने आ रहा है जिससे हम सारे प्रबंधन कर सके।
1: एकरे खातिर का कोनो आपको फोन नंबर बा ताकि किसान भाई जे सुनत होई वो पहले जी फोन से संपर्क करे और फिर आपसे बात करके ही हैचरी पर पहुँचे?
0: हाँ हाँ आप संपर्क कर सकते हैं मेरे नंबर पे भी जो कि है 9412604737।
1: डॉक्टर साहब एक बार फोन नंबर और बता दें

0: तक के कुछ किसान भाई लोग अभी लिख ना पौले होके।
1: जी जी मैं दोबारा से इसको दोहराता हूँ, 9412604737।
0: डॉक्टर साहब जब आप अपने हैचरी से मछली का बच्चा दे ला तो कैसे दे ला और वो अपने तालाब तक ले जाइला में का सावधानी बरते, जब तालाब में मछली का बच्चा डालें तब का सावधानी बरतें कि कम से कम बच्चन का मृत्यु होके।
1: जैसे कि हमारे यहाँ पे हम जब बच्चा पैक करते हैं तो पॉलिथीन शीट में हम उसको ऑक्सीजन के साथ में बच्चे को पैक करते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो बरकरार रहती है जल में और ये काफी देर तक इसमें बच्चा सुरक्षित रहता है। और इस बच्चों को हम ये गत्ते के डिब्बों में पैक करके, या किसान भाई अगर अपने यहाँ से लेके आते हैं कार्टन्स तो उसमें हम पैक करके दे देते हैं। और ये ध्यान देने वाली बात ये होती है कि बच्चा जब भी हम लेके जाएं यहाँ से अपने तालाब पर और जब स्टॉक करें तो कोशिश ये रहे कि ये सुबह या शाम का समय होना चाहिए। उसके पीछे एक कारण है क्यों सुबह और शाम का समय, क्योंकि सुबह और शाम का जो समय होता है इसमें जल का तापमान जो होता है उपयुक्त होता है बीज संचय के लिए। अगर हम दोपहर में लेके जाते हैं खासतौर से उस दिन काफी तेज गर्मी है तो ऊपरी सतह का तापमान जो होता है काफी होता है। तो ये तो टाइम हो गया सुबह और शाम का, और संचय से पहले हमें ये ध्यान देना पड़ता है कि जब बच्चे को लेके जाएं यहाँ से वो बंधे हुए पैकेट तालाब के पानी में ऐसे ही छोड़ दें कम से कम 15 से 20 मिनट तक। उससे ये होगा कि जो पैकेट के पानी का तापमान और तालाब के पानी का तापमान धीरे धीरे एक तापमान पे आ जाएगा। उससे बच्चों को मछलियों के बच्चे हैं उनको हीट शॉक नहीं लगता है कि एकदम से तापमान में परिवर्तन होने की वजह से उनकी मृत्यु दर बढ़ जाती है, तो वो चीज यहाँ पे खत्म हो जाती है।
0: आपके यहाँ इजोन तीनों रोहू भाकुर और नैन का बच्चा मिला था वहाँ, एक निर्धारित मूल्य का बा कुल मिला के?
1: इस समय हम लोग यहाँ पे फ्राई स्टेज का बच्चा सेल कर रहे हैं जिसका मूल्य है 1.40 रुपया प्रति पीस, जो कि समय एडवांस फ्राई स्टेज पे आ चुका है।
0: 1.40 रुपया का एक बच्चा?
1: हाँ, एक बच्चा जो कि जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट का रेट है उसी के बराबर हमने रेट रखा है।
0: अच्छा, एक लंबाई लगभग कितना होई?
1: लंबाई ये लगभग रहेगी कम से कम 2 इंच के आसपास।
0: 2 इंच के मतलब एक अंगुली के बराबर लगभग हो ही जाए?
1: हाँ, एक अंगुली से थोड़ा छोटा है।
0: हाँ हाँ
1: हाँ।
0: अच्छा, तो 1.40 रुपया प्रति पीस के हिसाब से मिली, तो का एक वजन से देला एक एक मछली गिन के देला?
1: नहीं, हमारे पास में एक बाटी सिस्टम होता है। बाटी सिस्टम में हमें अंदाजा लग जाता है कि कप है जिसमें कि हमें पता लग जाता है कि इतने एक कप में 40 बच्चा है 50 बच्चा है, तो उसके हिसाब से हम कप को पलटते जाते हैं बच्चों को लेकर, जिसमें कि केवल बच्चा ही बच्चा जाता है, पानी नहीं जाता है।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, जो आप कह रहे हैं कि ये 2-2 इंच के करीब का बच्चा बा आएगो एकदम जो जीरा होला जो अंडा से निकलला के तुरंत बाद आप लोग, तो दोनों के तालाब में डलना में कोनो फर्क पड़ेला?
1: हाँ सर, इसमें फर्क बहुत पड़ता है क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है जीरा साइज का बच्चा होता है वो बहुत नाजुक होता है, और नए परिवेश में इसको जब हम स्थापित करते हैं तो हो सकता है कि उस परिवेश के हिसाब से वो अपने आप को नहीं डाल सकता है, तो उसकी मृत्यु दर बहुत तेजी से बढ़ जाती है। और खास उससे अवांछनीय मैंने बताया था जैसे कि अवांछनीय हैं या अवांछनीय कीट हैं, उनका अटैक इन बच्चों पे ज्यादा होता है। अगर हम फ्राई या फिंगरलिंग स्टेज की फिश को डालते हैं तो वो जो फिश होती है हमारी वो काफी हार्डी नेचर की हो जाती है, काफी एक्टिव होती है, जिससे कि उन पे तापमान या नया परिवेश का असर भी नहीं पड़ता है, साथ ही साथ जो अवांछनीय मछलियां हैं या कीट हैं वो भी उन पे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं।
0: डॉक्टर साहब एक बार फोन नंबर और बता दें, हो सके कुछ किसान भाई लोग अभी लिख ना पौले होके।
1: जी जी मैं दोबारा से इसको दोहराता हूँ, 9412604737।
0: डॉक्टर दिनेश कुमार जी, आप इतना अच्छा जानकारी दी है नहीं कि ये समय मछली पालन करे वाला तालाब में बच्चा के कैसे डालल जा, रख रखाव कैसे कई जा, और भोजन प्रबंधन का व्यवस्था कैसे कई जा, एकरे खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: सुनत रही भेंट वार्ता तालाब में मछली बच्चन के संचय, जे पे जानकारी देते रहने डॉक्टर दिनेश कुमार जी और बात कर रहे थे विनय कुमार। एक ही साथ अपनी बैठकी के आगे बढ़ावल जा और मन मन साइन करे खातिर पंचवे के सुनवावल जाए एगो गीत।

0: पंच भाई अपने बैठकी में गीत सुन ली मन मन साइन भैल, और एक ही साथ ही सुनल जाए गो भेंट वार्ता। यूरिया के अत्यधिक प्रयोग से मिट्टी और फसलों पर प्रभाव जे पर जानकारी देत हम जेपी सिंह और उनसे बातचीत करल बटन कृष्णचंद ताई सुनी जा।
1: जय प्रकाश सिंह जी, आप वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक बीच क्रिप्को गोरखपुर में ही अपने गाँव में एक चीज देखे में आवला, तो अपन कितना पंच भाई ऐसा बाटे जो उनकी खानिक उर्वरक के नाव पे यूरिया का अंधाधुंध प्रयोग कर रहा बाटे बिना कोनो जांच उच कराए। यूरिया का जो अंधाधुंध प्रयोग हो रहा बा एकर अपने फसल या माटी के संरचना पे का जौन बा विपरीत असर पड़ेला।
2: किसान भाइयों, आप सभी लोग अच्छी तरह से परिचित हैं कि खेती किसानी में पोषक तत्वों की जब भी बात होती है तो उनकी प्रतिपूर्ति रासायनिक उर्वरकों के माध्यम से की जाने की सलाह वैज्ञानिक देते हैं। जो 16 सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनमें 3 प्रमुख तत्व हैं जिनको नत्रजन, फास्फोरस और पोटास के रूप में आप जानते हैं। नत्रजन की प्रतिपूर्ति हमेशा यूरिया के माध्यम से किसान करता रहा। वर्तमान समय में खेती किसानी की लागत बढ़ रही है, ऐसे में खेती किसानी के जो निवेश हैं उनको अगर आप बुद्धिमानी पूर्वक सोच समझ के वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टि से प्रयोग नहीं करेंगे तो आपकी लागत बढ़ेगी और वनवांछित उपज नहीं मिलेगी। अच्छी उपज मिले, आपकी मृदा की उर्वरता बनी रहे, इसके लिए आपको इस समसामयिक विषय पर ध्यान देना होगा। यूरिया प्रायः नत्रजन का सबसे प्रमुख स्रोत है जिसमें 46% नत्रजन पाया जाता है। आपको यह जानकर के आश्चर्य होगा कि 4:2:1 का एक संस्तुत अनुपात वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया है कि यदि 4 किलो नत्रजन का प्रयोग करते हैं तो 2 किलो फास्फोरस का और 1 किलो पोटास की मात्रा डाली जानी चाहिए। लेकिन पोटास और फास्फेट के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण किसान भाई अपनी फसल का तात्कालिक प्रभाव देखते हुए रासायनिक उर्वरकों में यूरिया का चयन कर लेते हैं। जब हम यूरिया संस्तुत मात्रा से अधिक प्रयोग करते हैं फसल के ऊपर तो सबसे पहले हमको दिखाई पड़ता है कि हमारी फसल खूब हरी भरी हो गई, और जब खूब हरी भरी फसल होती है तो उसके एक आध सप्ताह बाद हमको एक परिणाम दिखाई पड़ता है। किसान दौड़ता हुआ जाता है वैज्ञानिकों के पास, कृषि रक्षा केंद्रों पर जाता है, कृषि अधिकारियों के पास जाता है, साहब हमारे खेत में कीड़े लग गए। किसान भाई, जब कभी भी आप संस्तुत मात्रा से अधिक यूरिया का प्रयोग करेंगे तो आपकी हरी भरी फसल कीड़ों के लिए उपयोगी हो जाएगी, आसानी से उसमें कीट व्याधियाँ लग जाएंगी तो आपकी उपज प्रभावित हो जाएगी। दूसरा नुकसान क्या है कि यदि आपने यूरिया की संस्तुत मात्रा अधिक डाली तो आपकी जो मिट्टी है उसमें जो अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जैसे बोरान है, आयरन है, मॉलिब्डेनम है, जिंक है, इन न्यूट्रिएंट्स की उपलब्धता मिट्टी में रहते हुए भी आपके पौधों को पोषक तत्व के रूप में उपयोग करने की स्थिति नहीं बन पाती है, जिससे आपकी उपज पुनः प्रभावित होती है। जब उपज प्रभावित होगी और मृदा में अवांछित रूप से आप यूरिया मिलाएंगे तो जो मृदा की उर्वरता गुणवत्ता है वो भी प्रभावित होती है। तो किसान भाई, आप पुनः एक बार इस पर विचार करिए। विचार करने के बाद से आप अपने मिट्टी का स्वयं भी जांच करके देख सकते हैं। प्रयोगशालाओं में तो मिट्टी जांच की सुविधा उपलब्ध भी है, लेकिन आप स्वयं भी मिट्टी की जांच कर सकते हैं। जिन क्षेत्रों में यूरिया अधिक से अधिक मात्रा में डाली जा रही है वहाँ पर तुलनात्मक दृष्टि से जहाँ पर संतुलित उर्वरक का प्रयोग हो रहा है कीट व्याधियाँ कम लगती हैं। जब यूरिया आप अधिक डालते हैं तो आपको उसका प्रतिफल क्या मिलता है कि उससे जो उपज आती है, जैसे जो कंद वाली फसलें हैं, आलू है, तो वह आपको जल्दी सड़ जाता है, आप उसको संरक्षित नहीं कर पाते हैं। प्याज है, उसमें गलन की बीमारी आ जाती है, वह प्रभावित होने लगती है। साथ ही साथ आपके फसल पर जो उसका गुणवत्ता है, जो उसकी पोषक तत्व की क्षमता है, जो उसका न्यूट्रिएंट वैल्यू है, उसमें भी जो है विषमता उत्पन्न हो जाती है, जिसके नाते से विभिन्न प्रकार की बीमारियां उस फसल से जिसमें यूरिया अधिक मात्रा में डाली गई है उससे हम किसान भाई प्रभावित होते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जब प्रारंभिक दिनों में आप 9 किलो के आसपास जो है

0: उर्वरकों का प्रयोग करते थे तो आपको उससे 8 गुना उत्पादन मिलता था। आज स्थिति ये हो गई है कि उर्वरकों के प्रयोग को ड्योढ़ा करने के बाद भी हमारा उत्पादन या तो स्थिर हो गया है और या जो संस्तुत उत्पादन की गुणवत्ता है, जो उसकी क्षमता है, जो उसकी कैपेसिटी है, उसके सापेक्ष लगभग 50% ही उत्पादन प्राप्त होता है। इसके साथ ही साथ आप किसान भाई यह देखते हैं कि यदि आपने सब्जी लगाया हुआ है तो टमाटर में कुष्ठ रोग लग गया जो है, जिसे वैज्ञानिक मोज़ेक कहते हैं, यह भी अत्यधिक यूरिया के प्रयोग के कारण 50% तक पहुंच जाता है। तो किसान भाइयों, आप लोग कोशिश यह करें कि यूरिया में नीप लेपित यूरिया का प्रयोग करें और वह भी वैज्ञानिकों द्वारा जो संस्तुत मात्रा है उसका प्रयोग करें, और यदि यह भी संभव नहीं हो पाता है तो अपने अगल बगल के जो भी कृषि रक्षा केंद्र हैं, कृषि इकाइयाँ हैं, कृषि से संबंधित तकनीकी जानकारी रखने वाले कार्यालय हैं, वहाँ से जो है संस्तुत मात्रा की जानकारी करके और तदनुसार ही यूरिया का प्रयोग करें तो उचित रहेगा और इससे आपकी मृदा स्वास्थ्य में भी ठीक रहेगा और साथ ही साथ जो आप उससे उपज लेंगे जो है वह उपज भी संतोषजनक।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: पन से भी सुन ले जानकारी और एक ही साथ ही हमन के कार्यक्रम के समय हो रहा समाप्त। हमन के चलने के दिन आ गया। पंचो जय जवान जय किसान।

0: अभी किसान भाई सुने थे अपना कार्यक्रम खेतीबाड़ी आकाशवाणी का, ये गोरखपुर केंद्र है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं खोई हुई व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं। विशाल पासवान, उम्र 22 वर्ष, लंबाई 5 फीट 3 इंच, रंग सांवला, चेहरा लंबा। पता पिपरा लाला, थाना श्याम देवरवा, जिला महाराजगंज। ये 19 फरवरी 2026 दोपहर 2:33 से लापता है। यदि इनके संबंध में कोई सूचना हो तो पुलिस अधीक्षक जनपद महाराजगंज को सूचित करें। प्रतिभा गुप्ता, पता कतरारी चौराहा, निकट भटट बाजार, थाना श्यामदेवरवा, जिला महाराजगंज। रंग गोरा, लंबाई 5 फीट, उम्र 22 वर्ष। ये मोहद्दीपुर चौराहा से दिनांक 9 जून 2026 से लापता है। यदि इनके संबंध में कोई सूचना हो तो पुलिस अधीक्षक जनपद महाराजगंज को सूचित करें। खोई हुई व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।

0: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
1: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
0: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
1: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
0: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
1: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
0: For details, log on to www.ddindia.com।
2: गुनगुना रहे हैं भंवरे, खिल रही है कली कली।
3: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
4: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
3: करिए अपने मन पसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
4: प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
3: गाने के बोल,
4: गीतकार
3: और संगीतकार,
4: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
3: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
4: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास। गाते
3: गाते
4: गुनगुनाते सुनिए सुबह 10:05 पर।
3: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।

0: स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा।

0: आपकी पसंद आपका गाना और आवाज होगी आपकी। जी हाँ, आकाशवाणी का सबसे चहेता प्रोग्राम हेलो फरमाइश अब आप सुनेंगे हर रविवार प्रातः 10:05 पर। कर लीजिए तैयारी क्योंकि हर शनिवार दोपहर 11 से 12 बजे के बीच होगी हमारी रिकॉर्डिंग। तो देर किस बात की, अभी उठाइए अपना फोन और डायल कीजिए हमारा नंबर 0551220538 0551 हमारा STD नंबर है गोरखपुर का। नंबर एक बार फिर से 2205386। अपनी फरमाइश हमें बताइए और जुड़िए आकाशवाणी गोरखपुर के साथ। कॉल करना भूलिएगा मत हर शनिवार दोपहर 11 से 12 बजे के लिए।
1: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
2: लोकगीतों के कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं छेदी यादव। कार्यक्रम की शुरुआत 100 हर से।

आपकी पसंद आपका गाना और आवाज होगी आपकी। जी हाँ, आकाशवाणी का सबसे चहेता प्रोग्राम हेलो फरमाइश अब आप सुनेंगे हर रविवार प्रातः 10:05 पर। कर लीजिए तैयारी क्योंकि हर शनिवार दोपहर 11 से 12 बजे के बीच होगी हमारी रिकॉर्डिंग। तो देर किस बात की, अभी उठाइए अपना फोन और डायल कीजिए हमारा नंबर 0551220536। 0551 हमारा STD नंबर है गोरखपुर का। नंबर एक बार फिर से 2205380।

0: अपनी फरमाइश हमें बताइए और जुड़िए आकाशवाणी गोरखपुर के साथ। कॉल करना भूलिएगा मत, हर शनिवार दोपहर 11 बजे से 12 बजे के बीच।
1: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

0: लोकगीतों के कार्यक्रम में आज के कलाकार थे छेदी यादव। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 7 बजे हैं। आप सुनेंगे भोजपुरी कार्यक्रम देश हमार। इसके अंतर्गत आइए सुनते हैं भोजपुरी वार्ता, गांव से खत्म होत इनार और तालाब। वार्ताकार हैं देवानंद गौड़।
1: थाती या धरोहर उहे भर नाही हुए जौने के बाप दादा या परदादा छोड़ी गैले आ ओके बक्सा या सनुख में जोगा के धैल जा। थाती उहे हुए जौन इनार या पोखरा के रूप में हमार पूर्वज दे गैले उ आज भी हम मन के शान आ पहचान के रूप में बा। उ भले नहीं खे बाकी उनके निशानी आवे वाला समय में रही आ उनके याद ताजा होत रही। ऐसे गांव जवार के लोग लाभ लेते बा, पशु पक्षी या राही बटोही भी लाभान्वित होलें। जेकरे गांव के पोखरा ठीक ठाक बड़हन बा व्यवस्थित होला उ अपने पता में बतावेला। गांव के उत्तर जवन बड़का पोखरा बा आ उमे पुरैन पात पसरल बा उहे हमार गांव हो। आ गांव के घुसते जवन पक्का कुआं बा ओकर जगत ऊंचा बा उहे गांव हो। जैसे जैसे सभ्यता के विकास शुरू भइल लोग अपने सुविधा के ध्यान में राखत अपने खैले पहिरले आ रहले के जोगाड़ करे लागल। ई सभे जानता कि मानव के मूलभूत आवश्यकता रोटी कपड़ा आ मकान हो। रोटी पहले चाही फिर कपड़ा आ बाद में मकान। बाकी ए तीनों से जरूरी है जल। कहल भी गइल बा जल ही जीवन है। बरसात में तो पानी भरपूर हो जाला, अन्य मौसम में खास करके गर्मी में पानी के कमी हो जाला। गढ़ा तालाब आ इनार सूखले के कगार पर आ जाला आ कबो कबो सूखियो जाला। पहले के लोग शायद यही के चलते पोखरा या इनार के जरूरत समझल। जे सक्षम रहे आगे आयल आ जन सहयोग से पोखरा खनावल। जहाँ कम जगह रहल वहाँ कुआं खनावल। एमे एक कुछ इनार पोखरा निजी रहे सार्वजनिक जवन रहे ओकर लाभ तो सभे ले। बाकी जवन निजी या अपने जमीन आ हद में रहे ओपर ओकर मर्जी चले। राजा महाराजा लोग के दरबार में ई दूनू रहे। सुने के मिले ला कि राजा रानी ओकरे जल में स्नान करें। सार्वजनिक इनार पोखरा पर तो लोग के भीड़ लागल रहे। नहाइल धोवल कपड़ा फींचल आ पशु के

पानी पियावल अनाद भरल। इनार के जल स्तर नीचे चल जात, घिरनी के सहारे रसरी खींच के पानी भरावल। कबो कबो तो इनार पर उतना भीड़ लागला कि पनियाहरिन अपने बारी के इंतजार करत घंटन बाद लौटे। कहाऊ थ जन धन ही धन आ जल ही में जल होला। जल आपन रूप बदले रहेला, ठंडा होके बर्फ गर्म होके भाप बन जाला। तालाब पोखरा आ कौनो जलाशय के जल गर्मी में भाप बन के ऊपर चल जाला। हाँ, वह ठंडा होके बरखा के रूप में जमीन पर आवेला। समतल में कुछ देर पता ना चले, बाकी तालाब पोखरा में भरी के इकट्ठा हो जाला। यह क्रम लगातार चलत रहेला, जौने के जल चक्र कहल जाला। आज तो कुआं आइनार के कमी हो गई बा, आज जरूरतों कम बा, पहले एक जरूरत रहे तो जगह जगह रहे। करे पहचान खातिर अलग अलग नाव रहे, कोनो खेतवा तर के, कोनो बगीचा में के, कोनो चंवर में के, कोनो पुनरका इनार, कोनो नौका इनार, कोनो भुतहवा इनार। वो बेरा सिंचाई यही इनार से होखे। एकरा खातिर किसान के हमार मालिक से पूछ के समय लियाओ, खाली रहता एकर उपयोग सिंचाई में होखे। ना तो जवाब मिले चार दिन बाद पटैत फलाने के जवान दे चुकल बानी। ज़्यादातर सिंचाई कूड़ी ढेकुला अरहट से होखे। कबो कबो तो किसान भाई अपने आपसी सहयोग से कच्चा कुआं खोन के आसपास के खेत सींच लें, और बाद में वही माटी से पाटी दें। भोजपुरी के नामी गिरामी साहित्यकार जेकर गीत कुइयाँ के ठंडा पानी पीपल के छाँव रे, अहियो बट परदेसिया सवेरे मेरे गाँव रे, ये गीत के माध्यम से ये बतावल गईल बा कि हमारे गांव में जवन कुआं बा ओकर जल इतना शीतल बा कि परदेसी के हिया जुड़ा जाई। एगो निर्गुण गीत के बानगी देखी, बाबा मोरे रहलें तो पोखरा खनैलें, ऐसे साफ हो जाला कि जवन पोखरा बा वन के ना बाबा के खुनावल ह, अब कहाँ खुनाता। केहू गीतकार इहो लिखले बा, बादल आके घुमड़ गईल बा, ताल तलैया उमड़ गईल बा। ब्याह संस्कार में नहावन होला, जब बर माँ कनिया नहाले तो सांकेतिक पोखरा खुनाला। आ वो बेरा औरत लोग जवन गीत गावेला बानगी के तौर पर सुनल जा, यही के पोखरा खुनावे वाले घाट बनावे वाले। अरे केकर होला नहावन, सुहागे के पानी हरदी के रसम के माटी इनार पर कोड़ल जाला। फुआ माटी कोड़ेली, औरत सब झूम के गावेला। ब्याह के अंतिम चरण ह, कलश खोना इहो वही इनार पर होला। हाथ के कंगन खोलाला आ विष्णु स्वरूप वर और कन्या स्वरूप लक्ष्मी नहाली। बेटी पतोह के इनार ससुरा जाए में खोइछ दियाला, ओकरे साथे यही इनारे के फफनल दूब के फुनगी तूर के डराला। पूर्वांचल के एगो प्रसिद्ध त्यौहार छठ पूजन यही पोखरा के किनारे घाट पर संपन्न होला। औरत लोग साँझ आ भोर के अर्घ पोखरा के पानी में ठेहुन भर हली के घंटन खड़ा रहेली। सूरज भगवान के ध्यान लगावेली, घाट के किनारे बनल अपने अपने बेदी पर बैठ के पूजा करेली, दिया बारेली आ छठ माई के गीत गावेली। तीज त्यौहार जैसे जितिया वगैरह में औरत लोग पोखरा के जल में स्नान करेली। पितर पक्ष में एक और घाट पर लोग एक पखवारा पितरन के याद करत जल देला। जौने गांव में ऐसन पोखरा बा वहाँ के लोग आपन भाग मनावेला, जहाँ नइखे वहाँ के लोग तरस के रह जाला। आज घर घर नल हो गईले, इनार उपेक्षित हो गई बा, भाई भाई के बंटवारा यही को भाजन के शिकार हो गई। आसपास के लोग बहारन आ साग भाजी के छाटन वो में डारी डारी के भर दहले बा, भर निकचौले बा। अब ओमें तो नैसे नाम भरी के रही गईल बा, यही हाल पोखरा के बा। केहू महापुरुष रहल जे कल्याण खातिर खुनावल, बाकी हाय रे सोच ओहू पर लोग के कुदृष्टि हो गईल। विस्तारीकरण के चलते हाय सुख चार ओर से लोग भरल शुरू कर दिहल। आज इहो आधा तीसरी होके अपने हाल पर रोवता, एकरे चलते जल के संकट होइल गईल। वो में रहे वाला तमाम जीव पर खतरा मंडराए लागल। ई पोखरा अब कूड़ादान होके रह गईल बा। घर के अवशेष कौनो चिन्हित खाद गड्ढा घैले के अलावा खांची होके छोटी कुटिया के उतना दूषित
का

0: देता कि ओकर पानी मवेशियन नहीं खे पूछत। जल संकट देखते ओकरे संरक्षण बदे सरकार ध्यान भइल। आज ओके चिन्हित कर के नया सिरा से खुनावल रहल बा आ साथे साथे मजदूरन के रोजी मिल रहल बा। ई काम निरंतर चल रहल बा। जवन पोखरा गढ़ही से भी बदतर हो गई रहे आज चारू ओर घाट बन गई, बैठे के चबूतरा बन गई। अब ओ पुर नियम के आत्मा के शांति जरूर मिली। स्थानीय निकाय के भागीदारी से सौंदर्यीकरण भइल आ जनमानस के मन हरिहर हो गई। ई बात अलग बा कि जल प्रदूषण से कई तरह के बीमारी के संकट आ गई बा, बाकी सरकारों पीछे नहीं खे। हर घर नल जल के व्यवस्था चल रहल बा। इनारन के सफाई हो रहल बा। ओके ऊंच करके जाली से ढकल जा रहल बा। पोखरा से जलकुंभी या सेवार निकाल के मछली पालन बड़े पट्टा पर दिहल जा रहल बा, जौने से राजस्व में बढ़ोतरी हो रहल बा। किसान सिंघाड़ा के फसल लगा के लाभ उठा रहल बा। नदियन के ओर भी सरकार के पुरहर ध्यान बा। एकर सफाई करके स्वच्छ बनौले के योजना भलीभूत होता। गोरखपुर के नौका विहार आजकल आकर्षण के केंद्र बा। आजकल हजार पर्यटक आ रहल बाने, नौकायान के आनंद ले रहल बाने। यही तरह के व्यवस्था कुशीनगर में रामाभारा स्तूप के लोग भइले से पर्यटक के संख्या बढ़त जा रहल बा। जवन बीत गई लोके छोड़ल जा आ आगे के सोचल जा। इनार के पोखरा के लावारिस ना अपन असंपत्ति मानकर रक्षा कैल जा, खुद जागरूक भइल जा आ आसपास के लोगन के सोच जगावल जा। न अपने कूड़ा फेंकल जा, न केहू के फेंके दिहल जा। जनमानस में ई जागरूकता पैदा कैले के जरूरत बा कि जौने तरह राष्ट्रीय संपत्ति के हानि पहुँचौले से राष्ट्र के क्षति हुई, अर्थव्यवस्था चरमराई, वहीं तरह ग्रामीण संपत्ति भी केहू के नाही सबके हो। ई सबके जरूरी भी बा आ एके सबके लाभ भी बा, भले परोक्ष में हो बाकी बा। नौकी पीढ़ी के साथ बात कैल जा, अपने समय पर इनार आ पोखरा के स्थिति आ उपयोग की चर्चा कैल जा, उनके सोच बढ़ावल जा, जल प्रदूषण के कारण आ निवारण पर बात कैल जा। जन जन एक बात में समझ जाई आ इनार पोखरा के महत्व बुझा जाई। गांव से इनार पोखरा न तो तम होई न अपने हालत पर आंसू बहाई।
1: गांव से खत्म होत इनार और तालाब। अभी आप सुने थे भोजपुरी वार्ता, वार्ता करते देवानंद गौड़। मीडियम वेव 330.03 यानी 909 किलोहर्ट्ज़ पर तथा FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रादेशिक संगीत, इसके अंतर्गत आइए सुनते हैं बंगला लोकगीत।

0: তার সাথে আহারা মার সাথে ছিল মাখামাখি। কত ভালোবাসতাম তারি হৃদয়ে পুরি রাখি।
1: प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत आप सुन रहे थे बंगला लोकगीत। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आपको आज प्रसारित होने वाले अपने केंद्र से कुछ खास कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। रात्रि 8 बजे हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे कहानी वृद्धाश्रम। कहानीकार होंगे जयशंकर मिश्र। सुगम संगीत की महफिल सजेगी जगजीत सिंह की गाई गजलों से। कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 8:15 पर। फिल्म संगीत का वक्त होगा

प्रसारित होंगे। जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियां।

0: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।

0: जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है, लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार हैं स्टीफन हॉकिंग के। महात्मा गांधी के अनुसार युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं, गिर जाएं, लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं।
1: निश्चित रूप से बहुत।
2: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांदा में 710 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 229 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन सरकार ने बुंदेलखंड में बदली विकास की तस्वीर। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में अनियमितता के मामले में पुलिस ने तेज की जांच। 8 आरोपियों समेत संदेह के दायरे में आए परिजनों के 30 बैंक अकाउंट सीज। प्रदेश सरकार 12 जुलाई को लगाएगी 35 करोड़ पौधे। प्रदेश के वन राज्य मंत्री अरुण सक्सेना ने कहा, हरित क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। और प्रदेश में कई जनपदों में भारी वर्षा से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने 11 जुलाई तक बारिश का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बांदा में 710 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 229 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र, चेक और आयुष्मान कार्ड वितरित किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड के विकास का सपना डबल इंजन सरकार ने साकार किया है। सरकार इस क्षेत्र को यूपी के सबसे बड़े औद्योगिक शहर बीड़ा के रूप में विकसित कर रही है।
3: मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं कि हमारे बुंदेलखंड के विकास के लिए, यहां की विरासत के संरक्षण के लिए जो भी प्रोजेक्ट शासन के संज्ञान में आएगा, उसको आगे बढ़ा करके बुंदेलखंड को धरती का स्वर्ग बनाने का काम हम लोग करेंगे, आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे।
2: मुख्यमंत्री ने बांदा में वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा का अनावरण भी किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने आज अपने चित्रकूट दौरे के दूसरे दिन कानून व्यवस्था और विकास परियोजनाओं की समीक्षा कर अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने भगवान श्री कामतानाथ के दर्शन किए और पावन कामदगिरी की परिक्रमा कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे में अनियमितता के मामले में पुलिस की विशेष टीम ने जांच तेज कर दी है। पुलिस ने 8 आरोपियों समेत संदेह के दायरे में आए परिजनों और रिश्तेदारों के करीब 30 बैंक अकाउंट सीज कर दिए हैं। पुलिस ने आरोपी अनुकल्प मिश्रा के चाचा को हिरासत में लिया है। इसके साथ ही इनायत नगर स्थित एक सर्राफा प्रतिष्ठान के संचालक को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इस बीच श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी महाराज ने बताया कि संत समाज ने ट्रस्ट के फैसलों पर संतुष्टि जताई है। उन्होंने बताया कि ट्रस्ट ने मंदिर में चढ़ावा गिनती स्थल का निरीक्षण किया है और ऐसी व्यवस्था की जा रही है जिससे भविष्य में कोई अन्य घटना दोबारा न हो सके।
4: इस बात का विश्वास रखिए कि हम लोग इस कार्य को अब अधिक दक्षता के साथ करेंगे, किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे और जब यहाँ का सीईओ नियुक्त हो जाएगा उसके पश्चात

0: तो सारी कार्य पद्धति में एक निखार आएगा।
1: श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन के लिए जारी किए जाने वाले वीआईपी पास की व्यवस्था में बदलाव किया गया है। ट्रस्ट के महासचिव रहे चंपत राय, ट्रस्टी अनिल मिश्रा और गोपाल के रेफरेंस आईडी सस्पेंड कर दी गई है। इसके चलते उनके माध्यम से विशेष दर्शन पास जारी नहीं हो रहे हैं। नई रेफरेंस आईडी अभी तक जारी नहीं की गई है। ऐसे में पहले से जारी किए गए विशेष पास मान्य किए जा रहे हैं। नए पास नई रेफरेंस आईडी जारी होने के बाद बन सकेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने आज मिर्जापुर में पार्टी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर संगठनात्मक गतिविधियों पर चर्चा की। मीडिया से बात करते हुए श्री चौधरी ने अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी।
2: मंदिर बनने के बाद उसका एक प्रभावी ट्रस्ट बना हुआ है, ट्रस्ट की ही देख रेख में होता है, सरकार का उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है और निश्चित तौर से जो भी ट्रस्ट का हेड है वो भी जवाबदेह होगा और जो जांच में दोषी पाया जाएगा निश्चित तौर से कड़ी से कड़ी सजा।
1: एक राष्ट्र एक चुनाव पर पीपी चौधरी की अध्यक्षता में गठित संयुक्त संसदीय समिति 10 से 15 जुलाई तक पणजी और लखनऊ का दौरा करेगी। इस अध्ययन दौरे का उद्देश्य क्षेत्रीय स्तर पर संवाद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना तथा विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक विचार विमर्श करना है। समिति इस दौरान उच्च संवैधानिक पदाधिकारियों, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, राजनीतिक दलों, अधिवक्ता संघों और विभिन्न पेशेवर संगठनों के साथ परामर्श करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट नीतिगत नेतृत्व के लिए उत्तर प्रदेश को 17वें एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2026 से सम्मानित किया। नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में यह सम्मान प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही को प्रदान किया गया। इस मौके पर कृषि मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज कृषि के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश का खाद्यान्न उत्पादन 543 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 750 लाख मीट्रिक टन हो गया है। देश के कुल उत्पादन में अकेले यूपी 22% योगदान कर रहा है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश सरकार की ओर से 12 जुलाई को 35 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। इस महाअभियान के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में एक पेड़ मां के नाम लगाएंगे। प्रदेश के वन राज्य मंत्री अरुण सक्सेना ने कहा कि सरकार हरित क्षेत्र को बढ़ावा देने को लेकर प्रतिबद्ध है और ये कीर्तिमान आसानी से हासिल करेगी।
3: 35 करोड़ का लक्ष्य बड़ा है, लेकिन उत्तर प्रदेश और माननीय योगी जी की सरकार और यहाँ की जनता के लिए बहुत बड़ा नहीं। हमने पिछली बार भी 35 करोड़ का टारगेट था तो हमने 36 करोड़ पेड़ लगाए थे एक ही दिन में, तो हमारे लिए 35 करोड़ का लक्ष्य बड़ा जरूर है लेकिन बहुत बड़ा नहीं है, हम इस पे कहीं ज्यादा पेड़ लगाएंगे।
1: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में आज कानपुर के छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। इस मौके पर विद्यार्थियों को 1 लाख से अधिक डिग्रियां और 51 पदक प्रदान किए गए। पदक पाने वालों में 9 छात्र और 42 छात्राएं शामिल हैं। इस मौके पर आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए किट का वितरण और 800 बालिकाओं का HPV टीकाकरण कराया गया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि अब तक लगभग 3 लाख बालिकाओं का निशुल्क HPV टीकाकरण कराया जा चुका है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 की प्रोविजनल उत्तर कुंजी को लेकर अभ्यर्थी 14 जुलाई तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार ने जानकारी दी है। TET परीक्षा 2 और 3 जुलाई को प्रतिदिन 2-2 पालियों और 4 जुलाई को प्रथम पाली में सम्पन्न हुई थी। भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय ने प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश के कई जनपदों में बारिश ने आम जनजीवन को प्रभावित किया है। राजधानी लखनऊ समेत फर्रुखाबाद, मुजफ्फरनगर, संभल, नोएडा, अयोध्या, चित्रकूट, बिजनौर सहित कई जिलों में आज बारिश हुई। बारिश और जलभराव के चलते संभल और मुजफ्फरनगर में जिला प्रशासन ने आज स्कूलों में अवकाश घोषित कर लिया। अमरोहा में बारिश और बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद गंगा का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे कई गाँवों में जलभराव की स्थिति

0: उत्पन्न हो गई है। बाढ़ की आशंका को देखते हुए यहां 11 बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं। लगातार बारिश के कारण गंडक नदी कुशीनगर के खड्डा में खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। लखनऊ स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि 11 जुलाई तक प्रदेश में कई स्थानों पर भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
1: पिछले 24 घंटों के दौरान वेस्ट यूपी में हेवी टू वेरी हेवी रेन के साथ कहीं कहीं एक्सट्रीमली रेन हुई है, और अगर आगे आने वाले दिनों में बात करें तो ये उत्तर मध्य उत्तर प्रदेश और उसके बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर आगे बढ़ेगा। यद्यपि यह उत्तर उत्तर कमजोर होता जाएगा, परंतु इसके प्रभाव से कल जो है यूपी की तरफ आने पर और थोड़ा कमजोर होने पर वर्षा की मात्रा में थोड़ी कमी आएगी, लेकिन भारत में बहुत भारी उत्तर प्रदेश में कल 10 जुलाई को भी जारी रहेगा, और इसके बाद 11 जुलाई को पश्चिम उत्तर प्रदेश में तौर पर कमी आ जाएगी और तराई इलाकों में या कहीं भारी वर्षा तक सीमित जाएगा।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 12 में 710 करोड़ रुपए से लागत की 229 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा डबल इंजन सरकार ने बुंदेलखंड में बदली विकास की तस्वीर। मंदिर के छावे में अनियमितता मामले में पुलिस ने तेज की जांच। 8 आरोपियों समेत संदिग्ध के दायरे में आए परिजनों के 30 बैंक अकाउंट सीज। प्रदेश सरकार 12 जुलाई को लगाएगी 35 करोड़ पौधे। प्रदेश के वन राज्य मंत्री अरुण सक्सेना ने कहा, हर क्षेत्र लड़ाने को लेकर प्रतिबद्ध है सरकार। और प्रदेश के कई जनपदों में भारी वर्षा से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने 11 जुलाई तक बारिश का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के अनुपम वार्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को भूम कर देना।

0: मैक्रोफोन चाहिँ लङ चेन्ज से बोल रहे हैं।
1: मीडियम वेव 303.03 मीटर यानी 909 किलो हर्ट्स पर तथा FM 100.1 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।
2: गुनगुना रहे हैं भंवरे खिल रही है कली कली।
1: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
3: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
1: करिए अपने मनपसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
3: प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
1: गाने के बोल,
3: गीतकार
1: और संगीतकार
3: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
1: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
3: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास। गाते
1: गाते
3: गुनगुनाते सुनिए सुबह 10:05 पर।
1: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।
4: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।

आइए अब सुनते हैं फिल्म लापता लेडीज का ये गीत, शोना मोहपात्रा की आवाज में, गीत प्रशांत पांडे का लिखा हुआ।

0: फिल्म मैदान का ये गीत अभी आपने सुना, जिसे लिखा था मनोज मुंतशिर ने, आवाज जावेद अली और ऋचा शर्मा की। फिल्म संगीत में वक्त हो चला है एक छोटी सी अंतराल का।
1: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
2: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
1: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
2: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
1: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 और STD कोड 022।
2: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
3: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
4: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
5: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
5: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
5: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
4: For details log on to www.ddindia.com।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: हॉरर्स ऑफ द हार्ट इस फिल्म का ये गीत आइए सुनते हैं ईशा गौर और फरहान साबरी की आवाज में, संगीत पुनीत दीक्षित का।

फिल्म आखमीचोली का ये टाइटल सॉन्ग अभी आपने सुना सचिन जिगर और मिक्का सिंह की आवाज़ में, संगीत सचिन जिगर का था। आइए सुनते हैं फिल्म फाइटर का ये गीत।

0: फिल्म फाइटर के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज पर तथा FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है हिंदी कार्यक्रम। हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत आइए सुनते हैं कहानी वृद्धाश्रम। कहानीकार हैं जयशंकर मिश्र।
1: रंजना काफी दिनों से बीमार थी, आज मर गई। आश्रम के सभी लोग स्तब्ध थे। मैंने पहली बार आश्रम में रहने वाली एक औरत को मरते हुए देखा, क्योंकि मुझे आश्रम में आए हुए कुछ महीने ही हुए थे। एक महीने से रंजना मेरे काफी निकट आ गई थी। यहाँ की हर औरतों की आंखों में दर्द तैरता था, लेकिन रंजना की आंखें जैसे दर्द ही उगलती थी। रंजना को दो बेटे थे, दोनों को वह बहुत बार सूचित कर चुकी थी, परंतु उससे मिलने उसका कोई बेटा नहीं आया। एक दिन उसने भीगे कंठ से मुझसे कहा, देख लेना सुमन, मेरे मरने के बाद भी मेरे बेटे मुझे आग देने भी नहीं आएंगे। आश्रम के संचालकों ने रंजना को मरने की खबर उसके दोनों बेटों को दे दी थी, परंतु कोई बेटा नहीं आया। मैं भीतर तक कांप उठी थी, क्योंकि सामने रंजना की लाश पड़ी थी। अब कितना इंतजार करें, चलो श्मशान चलते हैं, आश्रम के कर्मचारी आपस में बात कर रहे थे। अब इनके बेटों की प्रतीक्षा करना बेकार है, चलो अर्थी उठाते हैं। थोड़ी ही देर में लोग श्मशान की तरफ चल दिए। मुझे लगा कि रंजना की जगह मैं हूं। सब मेरे बेटे प्रकाश के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे और वह नहीं आया। मैं लेखिका थी, मेरे मन मस्तिष्क में विचारों के बादल उमड़ घुमड़ रहे थे। मैं सोचने लगी, माता पिता बिना स्वार्थ के अपने बच्चों से प्यार करते हैं। वृद्धावस्था जीवन का अंतिम सोपान है। वृद्ध माता पिता जब घर में बैठकर आराम कर सकते हैं, लेकिन आजकल अधिकांश बच्चे अपने माता पिता को घर पर नहीं रखना चाहते। उनसे छुटकारा पाने के लिए उन्हें वृद्धाश्रम भेज देते हैं। मुझे ऐसा लगा कि मेरे बेटे प्रकाश के नहीं आने पर लोग मुझे अपने कंधे पर उठा लिए। आश्रम की सभी औरतें अपनी आंसू पोंछ रही थी। रंजना के रूप में मुझे अपने जीवन का अंतिम सच उजागर होता हुआ दिखाई दे रहा था। मुझे लगा जैसे रंजना की मौत ने मेरी दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। मैं एकाएक चीख पड़ी। सब लोग मेरी ओर देखने लगे, लेकिन मैं चीखती ही जा रही थी, नहीं मुझे मत जलाओ, मेरा बेटा प्रकाश आएगा, वही मुझे आग देगा। बेटा ही तो माँ बाप की चिता को आग देता है ना, क्या मेरा इतना भी हक नहीं कि मैं अपने बेटे से थोड़ी सी आग मांग सकूं? सब लोग मेरी ओर बढ़कर मुझे शांत करने में लगे थे, लेकिन मैं रोती जा रही थी। मुझे पता नहीं कि मैंने कब दुख के अतिरेक में अपने कपड़े तार तार कर दिए। अरे ये बुढ़िया तो पागल हो गई। हाँ मैं पागल हो गई हूँ। मैं अपने बालों को खींचती हुई जोर जोर से चिल्ला रही थी और अचेत हो गई। सूर्योदय के साथ

सामान्य दिनचर्या की शुरुआत हो गई। एक क्षण में ऐसा कुछ घट जाता है जिससे किसी व्यक्ति की पूरी दुनिया ही बदल जाती है। कल की वेदना और संतरास की जाल से मैं मुक्त नहीं हो पाई थी। जिंदगी भी न जाने कितनी लंबी होती है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। न जाने कितने प्रसंग दर्द की तहों में बंद हैं। मैं नहीं चाहती थी कि किसी भी एक दर्द की तह को खोलूं, पर मेरे चाहने और न चाहने से क्या होता है। उम्र के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गई हूं तो सभी पिछली दर्द की तहें एक एक करके खुलना चाहती हैं। इसका उत्तर मेरे पास नहीं है। कभी कभी अपना चेहरा आईने में देखती हूं तो मुझे स्वयं पर तरस आता है। मैंने कहां से अपनी जिंदगी की शुरुआत की और आज कहां पहुंच गई। बचपन में सुनी एक कहानी याद आ गई। दो बूढ़े पेड़ आपस में बात कर रहे थे। एक ने कहा, एक समय था जब सभी लोग धूप से बचने के लिए मेरे ही छाया में आते थे। उस समय मेरी छाया घनी थी, मैं फल भी खूब देता था, लोग लकड़ियां और पत्ते भी ले जाते थे। दूसरे पेड़ ने कहा, जो तुमने किया वही हम सभी लोग करते थे, लेकिन अब न तो हमारे पास घनी छाया है, न पत्तियां हैं और न फल, इसलिए हमारे पास कोई नहीं आता है। अगर हम मानवीय जीवन पर दृष्टिपात करें तो यह कहानी उन वृद्धों की सच्ची दास्तां बयान करती है जो अपने जीवन के संध्याकाल में वृद्धाश्रम की शरण में हैं, क्योंकि ये शारीरिक रूप से अस्वस्थ होकर अपनी संतानों से दूर एकाकी जीवन जी रहे हैं। मैं आश्रम में बैठी हूँ, सभी औरतें सो गई हैं, सबकी आंखों में निरवता और सूनापन कैद है। न जाने कितने नींद कैसे आ जाती है, शायद ये अपने सूनेपन, एकाकीपन और निरवता को अपनी नियत समझकर खामोश बैठ गई हैं। लेकिन मैं यहाँ नई नई आई हूँ। अभी कुछ महीने पहले मेरा इकलौता बेटा प्रकाश यहाँ वृद्धाश्रम में छोड़कर गया। प्रकाश जब मुझे आश्रम में छोड़ने आया था तब मैंने उसके चेहरे को ध्यान से देखा था। मुझे यहाँ छोड़ने का जरा भी दुख उसके चेहरे पर नहीं झलक रहा था, बल्कि एक निश्चिंता का भाव उसके चेहरे पर स्पष्ट दिख रहा था। ये चेहरा भी मन के सभी भाव खोल देता है। माँ, तुम तो मेरी मजबूरी जानती हो, मेरी पत्नी किसी तरह आपके पास नहीं रहना चाहती। मैंने उसे समझाया, लेकिन वह रहने दे। मैंने बीच में ही प्रकाश की बात काट दी। क्या करती उसकी बात सुनकर, मुझे आश्रम में आना था, मैं आ गई, शायद यही मेरा अंतिम पड़ाव है। मैंने कहा, तुम मुझसे मिलने आया करेगा ना प्रकाश। मेरा प्रश्न सुनकर प्रकाश एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। मैंने साफ अनुभव किया कि वह हिचक रहा था, लेकिन उसने कहा, आऊंगा माँ, तुम चिंता मत कर। लगभग 3 महीने बीत गए मुझे इस आश्रम में आए हुए, परंतु वह मुझसे मिलने कभी नहीं आया। मैं अक्सर अपने कमरे की खिड़की से सड़क देखती रहती हूँ। न जाने कितने चेहरे मेरे इर्द गिर्द मुड़ाते रहते हैं, लेकिन मेरी आंखें जिस चेहरे को देखना चाहती हैं, वह चेहरा इन तमाम चेहरों में कहीं नजर नहीं आता। मेरी आंखें सड़क की तरफ टकटकी लगाए रहती हैं, लेकिन कहीं प्रकाश नजर नहीं आता। वृद्धाश्रम में आश्रय, भोजन और चिकित्सा की व्यवस्था रहती है। जिनकी अपनी संतानें नहीं होती उनकी तो वृद्धाश्रम में आने की मजबूरी होती है, और जिनके बच्चे विदेशों में रहते हैं उनको भी वृद्धाश्रम के अलावा कोई और विकल्प नहीं होता है। ऐसे लोगों के लिए तो वृद्धाश्रम वरदान है, उन लोगों के लिए अंतिम आशा की किरण और पड़ाव है। आज इतनी रात गए मुझे अपना बचपन याद आ गया। कहते हैं बचपन बड़ा सुंदर होता है, हजारों चिंताओं से मुक्त, खेल खिलौनों में मस्त रहता है जीवन, परंतु मेरे हिस्से में तो कुछ

0: भी नहीं था। मेरे हिस्से में था तो स्कूल जाने से पहले और लौटने के बाद घर गृहस्थी का भारी बोझ। जब मैं बड़ी हुई कॉलेज जाने लगी तो मन इंद्रधनुषी सपने बुनने लगा, यथार्थ के धरातल से पैर उठकर आसमान की ओर भागने लगे। वह पल भी आया जब मेरे सपनों को साकार होने की बारी आई। दुल्हन बनकर मैं ससुराल गई, वहां जाने पर मेरे सपने टूट गए। जब मेरे पति ने पहली ही रात में बता दिया कि मैं दूसरी औरत से प्यार करता हूँ, मैंने तो अपनी माँ बाप की मर्जी रखने के लिए तुमसे शादी की है। जब तक सास ससुर जिंदा थे, बहू बहू कहकर प्यार दिखाते थे, मेरे पति भी दिखावटी प्रेम करते थे। सास ससुर की मृत्यु के बाद मेरे पति अपनी दूसरी पत्नी को घर पर लाने लगे। तब तक मेरा लड़का प्रकाश 1 वर्ष का हो गया था। मेरा पति तो मेरा नहीं हो सका, लेकिन मेरा बेटा मुझसे दूर न हो जाए यह डर मुझे हमेशा लगा रहता था। मेरे पति अक्सर उस स्त्री को लेकर घर पर आते, मुझसे खाना बनवाते और आवभगत करवाते। अपने दिल पर पत्थर रखकर चुपचाप मैं सब काम करती थी। आज मैं सोचती हूँ कि किसके लिए मैंने सब कुछ सहा, इसलिए कि मेरा बेटा मुझे वृद्धाश्रम में लाकर छोड़ देगा। घटते जीवन मूल्यों से वृद्धाश्रमों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। वृद्धाश्रम बनाने के पीछे बढ़ता शहरीकरण और आधुनिक जीवन पद्धति है। आजीविका कमाने के चक्कर में देश विदेश गए बच्चे अपने नैतिक मूल्यों को भूलते जा रहे हैं। हमारी भारतीय संस्कृति भी पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित होती जा रही है। संयुक्त परिवारों का विघटन और एकल परिवारों का बाहुल्य बढ़ता जा रहा है। हमारी मानवीय संवेदनाएं मरती जा रही हैं। जेनरेशन गैप काफी बढ़ गया है। मैं घर का सारा काम करती थी, प्रकाश के बच्चों को संभालती थी, तब प्रकाश और उसकी पत्नी माँ माँ करते रहते थे। लेकिन मेरे शरीर की शक्ति चुक गई तो सबके लिए मैं बोझ बन गई। मेरा बेटा मुझे वृद्धाश्रम में छोड़कर चला गया। उसने मेरी मानसिक वेदना का अनुभव नहीं किया, मेरे मन की गहराइयों में मेरे बेटे ने नहीं देखा। मेरे साथ उसकी पत्नी बदसलूकी करती थी, तब वह दूर खड़ा होकर तमाशा देखता। मैं सोचती कि पगले, किससे तू दूर भाग रहा है, जिसने तुझे 9 महीने अपनी कोख में रखा, जिसका खून तुम्हारे शरीर में दौड़ रहा है। पति तो मेरा कभी नहीं हो सका, परंतु प्रकाश तो मेरा खून है। उसे मैंने अपने खून से पाला है, वह तो मेरा बेटा है, मेरा अपना है। वह क्यों आश्रम में छोड़कर चला गया? उसकी पत्नी से मेरी कोई लड़ाई नहीं थी, घर के सभी काम काज करती थी। आज मैं अशक्त हो गई तो मेरे साथ परायों जैसा व्यवहार होने लगा। जो हाथ तुमको सहारा देते थे और जब उन हाथों को सहारे की जरूरत पड़ी तो तुमने अपना हाथ खींच लिया। बेटा, बुजुर्ग बोझ नहीं होते, जिम्मेदारी होते हैं, उनको निभाना चाहिए। मेरे मन में उद्वेग बढ़ने लगा, मन के अंदर मुक्ति की चाह प्रबल होने लगी, मुझे अपने से भी नफरत होने लगी। कहा जाता है ना, जब दुर्दिन आता है तो अपना खून भी साथ नहीं देता। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मेरे खून ने ही मेरा साथ छोड़ दिया। अब तो वृद्धाश्रम ही मेरा पड़ाव है, यहीं जीना है और यहीं मरना है।
1: कहानी वृद्धाश्रम। अभी आप सुन रहे थे जयशंकर मिश्र से ये कहानी। ये था आज का हिंदी कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं।
2: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद

0: कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: होगी बदलाव की अब शुरुआत, सुधरेंगे तेरे हालात। मत हार मान, तू है देश की शान। तू कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। दूरदर्शन किसान, एक नया टीवी चैनल जहां होंगी बातें बदलाव की और आपके कल के बेहतर शुरुआत की। दूरदर्शन किसान, छेड़ो बातें बदलाव की।
2: पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
3: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत।
4: गुनगुना रहे हैं भंवरे, खिल रही है कली कली।
3: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
5: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
3: करिए अपने मनपसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
5: प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
3: गाने के बोल,
5: गीतकार
3: और संगीतकार
5: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
3: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
5: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास। गाते
3: गाते
5: गुनगुनाते सुनिए सुबह 10:05 पर।
3: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।
2: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

तेरे सुम संगीत में आज के फनकार हैं जगजीत सिंह। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं इस कलाम से, तेरी बेरुखी तेरी मेहरबानी यही मौत है यही जिंदगानी।

ये सुनते हैं कुंवर महेंद्र सिंह बेदी शहर का ये कलाम। फूल भरे हैं दामन दामन, लेकिन वीरां गुलशन गुलशन। अक्ल की बातें करने वाले क्या समझेंगे दिल की धड़कन। आवाज जगजीत सिंह की।

अभी बरसेंगे हर तरफ जलवे, तुम निगाहों का एहतमाम करो। आइए एक बार फिर सुनते हैं कुंवर महेंद्र सिंह बेदी शहर का ये कलाम जगजीत सिंह की आवाज़ में।

0: हुस्न वालों का एहतराम करो। जी हाँ दोस्तों, दिल को सुकून देने वाली ये गज़लें हम फिर सुनेंगे, लेकिन लेते हैं कि छोटा सा अंतराल।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
4: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करे अपने सपने साकार। BTech पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA B फार्मा M फार्मा और D फार्मा में एडमिशन्स ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।

दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका कार्यक्रम सुगम संगीत में। आज आप सुन रहे हैं जगजीत सिंह की गाई गजलें।

अभी वो कमसिन अभी है हम पर शबाब यादा। कुंवर महेंद्र सिंह बेदी शहर का ये कलाम अभी आपने सुना।

0: कुंवर महेंद्र सिंह बेदी शहर के इस कलाम के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आप सुनेंगे समाचार जो हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने शांतिपूर्ण और स्थिर हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अधिक विकास अधिक उपलब्धि के मंत्र के साथ दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनना चाहता है। मेलबर्न में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने IVF केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उनमें इस्तेमाल होने वाले मुख्य पुर्जों पर मूल सीमा शुल्क में छूट दी। ईरान ने अमरीका पर बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। जवाब में बहरीन, कुवैत और कतर में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए। और फीफा विश्व कप के पहले क्वार्टर फाइनल में आज रात फ्रांस का मुकाबला मोरक्को से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी महत्वपूर्ण बदलाव का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक सहयोग ढांचे को अंतिम रूप दिया। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दोनों देशों ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर ऐतिहासिक संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। वार्षिक रक्षा मंत्रियों के संवाद को संस्थागत स्वरूप प्रदान किया तथा समुद्री सुरक्षा सहयोग का प्रारूप जारी किया।
2: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
2: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि रणनीतिक प्रौद्योगिकी और संसाधन सुरक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया भारत साइबर महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी तथा आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी को कार्यान्वित किया गया है। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का

0: आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। ये वो भारत है जो कहता है ग्रो मोर अचीव मोर। हम 140 करोड़ एस्पिरेशन से भरे राष्ट्र है, हम अधीर है, बेसब्र है, हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, लेकिन हम जल्द से जल्द दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनना चाहते हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत में चिप से लेकर जहाजों तक के विनिर्माण का तंत्र विकसित किया जा रहा है।
1: आज चिप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है पीपल फर्स्ट, यानी नागरिक देवो भव का मंत्र। ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया।
0: इस अवसर पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि इस आयोजन की ऊर्जा स्पष्ट रूप से महसूस की जा सकती है। एक रिपोर्ट।
2: भारत ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते सामान्य कूटनीति से कहीं आगे बढ़ चुके हैं। ये मार्बल स्टेडियम में गूंजती तालियां और लोगों के उत्साह से बयां होता है। प्रधानमंत्री मोदी का एक महत्वाकांक्षी और विकसित भारत का दृष्टिकोण, जिसमें वैश्विक विनिर्माण में कामयाबी से लेकर ऑपरेशन ब्रह्मा के अंतर्गत अहम मानवीय मदद तक शामिल है, साबित करता है कि भारत मानवता के हित में लगातार काम कर रहा है। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण सेतु बताया। इससे ये साफ होता है कि भारतीय समुदाय दोनों देशों की व्यवस्था और रणनीतिक रक्षा गलियारे को मजबूती दे रहा है, जिससे हमारा साझा भविष्य सुरक्षित और समृद्ध बना रहे और हम आपसी भरोसे से जुड़े रहें। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज कहा कि तीसरा वार्षिक भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। विदेश सचिव ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि शिखर सम्मेलन में भारत को ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित करने को अंतिम रूप दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की बेहद सफल राजकीय यात्रा का कल समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता एंगस टेलर से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के लिए रवाना होंगे। न्यूजीलैंड में प्रवासी भारतीय समुदाय के आर्थिक योगदान पर आधारित एक रिपोर्ट आज ऑकलैंड में जारी की गई। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर न्यूजीलैंड के राजस्व और जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा न्यूजीलैंड में भारत के उच्चायुक्त सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
3: ऑकलैंड में वाइटाकरे इंडियन एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक समारोह में न्यूजीलैंड में बसे भारतीय समुदाय के आर्थिक योगदान पर आधारित एक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था में भारतीय समुदाय की बढ़ती भागीदारी और उसके व्यापक आर्थिक प्रभाव का आकलन किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय समुदाय उद्यमिता, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, आतिथ्य, खुदरा व्यापार तथा अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए इन्फोमेट्रिक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ब्रेड ऑल्सन ने कहा कि भारतीय समुदाय न्यूजीलैंड के सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले समुदायों में से एक है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार, ऑकलैंड।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में

0: आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने IVF केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति का गठन सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी ART क्षेत्र में अनियमितताओं के कारण किया गया। ये समिति IVF क्लिनिक, ART केंद्रों और गैमीट बैंकों को नियंत्रित करने वाले नियामक ढांचे और संबंधित कानूनों की व्यापक समीक्षा करेगी। इसमें महिलाओं के प्रजनन अधिकारों, गरिमा और सुरक्षा की रक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशा मेनन इस विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता करेंगी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बदलने के लिए बुनियादी विज्ञान में मजबूत आधार होना अत्यंत आवश्यक है। भुवनेश्वर में राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के 15वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। एक रिपोर्ट।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा कि वैज्ञानिक क्षमता विकसित भारत की आधारशिला है। नाइजर के 15वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाने, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और टिकाऊ विकास सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी विज्ञान में मजबूत नींव का होना बहुत जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये ऐसे युवा शोधकर्ताओं को तैयार कर रहा है जो जलवायु परिवर्तन, सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसे उभरती वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। प्रस्तावित कानून में धर्म की परवाह किए बिना विवाह, तलाक, विरासत, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों को शामिल किए जाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि समिति राज्य सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपने से पहले प्रस्तावित कानून के कानूनी, संवैधानिक और सामाजिक पहलुओं की जांच करेगी। सरकार ने स्मार्टफोन, लैपटॉप, पहनने योग्य स्मार्ट उपकरणों और स्मार्ट TV जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डिस्प्ले असेंबली, लिथियम आयन सेल और इंडक्टर कॉयल मॉड्यूल के निर्माण में उपयोग होने वाले सामान पर मूल सीमा शुल्क में छूट देने का फैसला किया है। ईरान ने अमेरिका पर आज बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि ये कार्रवाई उस पर हमले समाप्त करने की अमेरिकी सेना की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुई। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर हवाई हमले किए। ईरान ने भी खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगी देशों को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की। ईरानी मिसाइलों ने कुवैत और कतर को निशाना बनाया। इन हमलों से पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त करने का अंतरिम समझौता खतरे में पड़ गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया है। उत्तराखंड में कल तेज वर्षा और कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में शुक्रवार को तेज वर्षा होगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। पहले मुकाबले में आज रात 1:30 बजे बोस्टन में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कल देर रात स्पेन और बेल्जियम आमने सामने होंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 मैच आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल में खेला जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला में 2-0 से पीछे भारतीय टीम को सीरीज ड्रॉ कराने के लिए हर हाल में आज का मैच जीतना होगा। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में चेक गणराज्य की कैरोलिना मुखोवा ने महिला सिंगल्स के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। कैरोलिना ने सेमीफाइनल में अमेरिका की कोको गॉफ को हराया। दूसरे सेमीफाइनल में मार्टा कोत्स्युक का मुकाबला लिंडा नोस्कोवा से होगा। पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल मुकाबले कल खेले जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम

0: Countrywide. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्रीवाइड। इसके अंतर्गत सुनिए भारत में नवाचार, उच्च कौशल रोजगार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने वाले ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं महासचिव डॉक्टर रंजीत मेहता। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक।
1: एक ओर भारत दुनिया में सबसे तेज गति से विकसित हो रहा देश है, दूसरी ओर दुनिया के तमाम देशों को भारत तकनीक, प्रतिभा और आगे बढ़ने के लिए उन्नत अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है, जिससे हमारे श्रोता अपेक्षाकृत थोड़ा सा कम परिचित हैं। और यह है क्षेत्र भारत में वैश्विक क्षमता केंद्र। ये वैश्विक क्षमता केंद्र वस्तुतः क्या है, किस रूप में भारत ही नहीं दुनिया में अपना योगदान दे रहे हैं, और एक ओर प्रतिभा को उचित अवसर मिल रहा है, नए नए नवाचार हो रहे हैं और बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन हो रहा है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत दुनिया के बड़ी बड़ी कंपनियों को आगे बढ़ने में योगदान दे रहा है। कुछ इन्हीं विषयों पर हम आज चर्चा करेंगे अपने इस अंक में। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा के लिए आमंत्रित हैं डॉक्टर रंजीत मेहता, सीईओ और सेक्रेटरी जनरल पीएचडी सीआईआई। स्वागत है आपका डॉक्टर मेहता।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ की ओर से आयोजित जीसीसी बिजनेस समिट को संबोधित किया।
3: Today, the greatest competitive advantage lies in generating knowledge, applying technology, and solving complex problems. That's what the GCCs are. It's not as if it's the slightly upgraded version of your backroom, back off, or office space, the BOPs. No, this is a completely different domain. It has a lot of technology, no doubt, but the new human intervention, human skills and the human knowledge which gets crystallized, what makes this century going to stand out in the name of GCC?
1: शुरुआत डॉक्टर साहब हम यहीं से करना चाहेंगे कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा में हमारी जो वैश्विक क्षमता केंद्र हैं वो किस रूप में योगदान दे रहे हैं, और उससे भी पहले समझना चाहेंगे आम जुबान में आम लोगों के लिए ये वैश्विक क्षमता केंद्र क्या हैं और किस रूप में यहाँ प्रतिभा का, तकनीक का संगम हो रहा, बड़ी कंपनियों के लिए हम उत्पाद बना रहे।
2: पिछले अगर दशक में देखें तो भारत एक बहुत ही प्रेफर्ड डेस्टिनेशन हो गया है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के लिए। और जो इससे पहले क्या होता था, भारत में सिर्फ बैक ऑफिस लोग रखते थे, उसमें कॉल सेंटर्स ये सब आते थे, लेकिन पिछले दशक में जिस तरीके से भारत में एक आमूलचूल परिवर्तन हुआ है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और नए नए जो भारत के कार्यक्रम जो कि जैसे मेक इन इंडिया है, स्किल इंडिया है, डिजिटल इंडिया है, ये सारे नए नए जो कार्यक्रम आए उससे जो है एक भारत जो है एक इवॉल्व हो चुका है हाई वैल्यू स्ट्रेटेजिक सेंटर्स के तौर पे, जिसमें सिर्फ एक बैक ऑफिस ऑपरेशन तक ही ये सीमित नहीं है, बल्कि जिसमें रिसर्च होती है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, अब तो एक नया आ गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साइबर सिक्योरिटी है, इंजीनियरिंग है, फाइनेंस, फिनटेक, लीगल सर्विसेज, ऑल जो ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशंस हैं जिसमें जो भी चीजें यूज होती हैं, आज भारत उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण हब बन चुका है। आज भारत में 1800 से ज्यादा ऐसे ग्लोबल कैपेबिलिटीज सेंटर्स हैं जिसमें कि 20 लाख से अधिक लोगों को आज प्रोफेशनल्स को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। अगर आप देखें इसमें जो कि भारत डेफिनेटली एक टैलेंट कैपिटल भी है, आज अगर आप देखें भारत जो है 65% जो भारत की जनता है वो 35 साल से कम उम्र के लोग हैं, तो भारत एक यंग कंट्री है, एक यंग कंट्री होने के नाते हमारे पास टैलेंट पूल है, बट

0: टैलेंट पूल होने के साथ साथ हमने पिछले करीब दशक में देखा है कि भारत एक स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। आज जो भारत का आप देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2016 में जब स्टार्टअप इंडिया का लॉन्च हुआ था, तब भारत में सिर्फ करीब 300-400 रजिस्टर्ड स्टार्टअप थे, लेकिन आज जब हम ये बात कर रहे हैं, 1.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप जो है भारत के अंदर है, और भारत जो है दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। ये इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि जब आप इनोवेशन की बात करते हैं, इनोवेशन कैपिटल बनाने की बात करते हैं, क्योंकि टैलेंट कैपिटल तो है ही भारत विश्व का, लेकिन एक इनोवेशन कैपिटल बनाने की दिशा में भी भारत जो है आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स बनने जा रहे हैं, इसमें जो है आगे चल के मैं समझता हूं आगे चल के सिर्फ एक कॉस्ट आर्बिट्रेज, क्या कॉस्ट के बेसिस पे कि भारत में लेबर सस्ती है, इस बेसिस पे ही आप अपना एक कॉम्पिटिटिव जो एडवांटेज है उसको आप नहीं ले सकते। आगे चलने के लिए हमें एक वर्ल्ड क्लास टैलेंट की जरूरत है, और उसमें कितना हम इनोवेशन करते हैं, कितना हम उसको ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को इसमें इंटीग्रेट करते हैं, इस पे डिपेंड करेगा। और जब हम एक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनाने की बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं उसके जो तीन मुख्य पिलर होंगे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के। पहला पिलर मैं समझता हूं एक स्किल, कि क्या हमारे पास स्किल सेट्स हैं आज भारत में। आप टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है, आप देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, जेनरेटिव एआई आ चुका है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, रोबोटिक्स है, सेमीकंडक्टर है, इस साइड डेटा एनालिटिक्स है, साइबर सिक्योरिटी और सस्टेनेबिलिटी भी ऐसी एक नया एक स्टेप आ चुका है, जिससे जो है हर इंडस्ट्री अपना ट्रांसफॉर्म हो रही है, एक चर्निंग हो रही है इंडस्ट्री में, क्योंकि भारत ने ऑलरेडी 2070 तक नेट जीरो होने का अपना एक कमिटमेंट कर चुके हैं। अगर आप लंबी दिशा में अगर आप देखना चाहते हैं, तो उसमें ट्रेडिशनल जो एजुकेशन है जो हम करते आ रहे हैं वही सफिशियंट नहीं होगा, बल्कि इस दिशा में हमें अपने एजुकेशन को भी ले जाना है, तो जिससे कि भारत में एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑलरेडी भारत की आ चुकी है, भारत के अंदर इकोसिस्टम तैयार करना है जिसमें कि कॉन्टिन्यूअस लर्निंग हो, जहां पे कि इंडस्ट्री, अकेडमिया, गवर्नमेंट सब साथ मिलके जो है जो हमारी वर्कफोर्स है उसको जो है हमें फ्यूचर रेडी बनाना है।
1: श्रोताओं, देश की राजधानी दिल्ली में आज भारतीय उद्योग परिसंघ की ओर से एक महत्वपूर्ण सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर केंद्र कई सारी बातों पर चर्चा हुई, बहुत सारे विचार रखे गए, और सबसे बेहतर हमारे विशेषज्ञ ने जो कहा कि एक ओर शिक्षा, प्रतिभा, कौशल, दूसरी ओर उद्योग, और तीसरी ओर देश की नीतियां इस दिशा में हो कि हम वास्तुतः दुनिया को दिशा दिखा सकें और तीनों का एकीकरण कर सकें। इस अवसर पर सम्मेलन को संबोधित करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव ने कहा,
2: What is it that AI can do to enhance productivity, enhance efficiency and effectiveness across a range of sectors? How is it that India can adapt AI and what is it that India can contribute in this space? And which is why the thought was that India really needs to become the application and AI-based solution capital of the world. And the way in which we can actually roll out using our talent, what is the way in which we roll out AI for the rest of the world? Today, one of the things that many people, many experts do comment is that while there's a lot of investment taking place in building out data centers, in, you know, the chips that need to be done for this, the high bandwidth memory that needs to work in the data centers, on the infrastructure side, there's a lot of effort which is going on into building the models. But ultimately, all these are just the infrastructure piece of the play. What happens with what actually gets deployed at the enterprise level and at various levels? And the deployment of AI in enterprises is still lagging across the world, not just in India, but across the world. And that is truly where I think GCCs in India will come in and play that critical role.
1: डॉक्टर मेहता, यहाँ से दिशाएं स्पष्ट होनी शुरू हो रही हैं कि हमारा भविष्य क्या है और किस रूप में इसे कार्यान्वित करना है। यहाँ पर हमारा सवाल ये होगा कि जो लक्ष्य हम सामने रख रहे हैं कि उच्च कौशल और तकनीक का जो वास्तविक उत्पाद है एआई के ऐप के रूप में, वह किस रूप में पूरी क्षमता के साथ हम दुनिया के सामने रख सकेंगे।
0: अभी सेक्रेटरी ने भी कहा कि कैसे हम स्किल सेट्स को यहाँ पे सिर्फ बीपीओ जॉब्स, हमें बीपीओ जॉब के लिए ही नहीं काम करना है, बल्कि जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स बन रहे हैं उसमें हमें हायर लेवल जॉब्स के लिए जो है अपने आप को तैयार करना है। तो उसमें

0: जो पहला पिलर मैंने बताया स्किल है, और जो सेकंड पिलर है वो होगा इनोवेशन। क्योंकि आप जो नेक्स्ट लेवल के जीसीसी आएंगे, वो सिर्फ यहाँ पे भारत में सिर्फ ग्लोबल मैंडेट को सिर्फ एग्जीक्यूट करने के लिए नहीं होंगे, बल्कि हमें एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट करनी पड़ेगी, इनोवेशन का हब बनाना पड़ेगा, नई नई टेक्नोलॉजीज पे काम करना है, नई टेक्नोलॉजीज डेवलप करनी पड़ेंगी, और उसके लिए हमें एक प्रोडक्ट हब बनाना पड़ेगा जिसमें कि हम विश्व के लिए इसमें प्रोडक्ट को बना सकें। जैसे कि मेक इन इंडिया हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको लॉन्च किया था आज से 10 साल पहले, उसमें कई सारी प्रोग्रेस हुई है। और क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात है, इंडिया के पास एक बहुत ही यूनिक टैलेंट है। आप अगर देखें तो साइंटिफिक टैलेंट इंडिया में सबसे ज्यादा है। आप देखिए जो हमारी एंटरप्रेन्योरियल एनर्जी है, जो प्रोवेस है, आपने देखा कि किस तरीके से कोविड के टाइम में भारत के एंटरप्राइजेस ने पूरी दुनिया में कैसे काम किया। भारत जो है एक फार्मा हब बन गया था कोविड के टाइम में, कैसे नई वैक्सीन हमने जनरेट की। तो एंटरप्रेन्योरियल एनर्जी हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हमारा एक स्ट्रेंथ है। और तीसरा जो हमारा स्ट्रेंथ है इनोवेशन के लिए, वो है हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम। क्योंकि हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम बहुत ही काफी स्ट्रांग हो चुका है। आज हमारे देश में नए नए जो बच्चे हैं 18 साल 20 साल 30 साल से कम उम्र के जो युवा हैं, वो भी आपने देखा यूनिकॉर्न का स्टेटस ले चुके हैं। ऐसी ऐसी कंपनी देश में अभी आई है जिसमें कि 1.5 साल 2 साल के अंदर वो यूनिकॉर्न बन चुके हैं। यूनिकॉर्न वो कंपनी होती है जिसका वैल्यूएशन $1 बिलियन करीब, आज के अगर टर्म में देखें तो करीब 10,000 करोड़ से ऊपर जिसका वैल्यूएशन है, वो एक यूनिकॉर्न मानी जाती है कंपनी। तो ये हमारे देश में एक इनोवेशन का जो एक कल्चर बन चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें फर्दर इसको स्ट्रॉन्ग करना है, इंडस्ट्री एकेडमिया और गवर्नमेंट का कोऑर्डिनेशन करके एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन के साथ एक्सिलरेट करना है इनोवेशन को। तभी हम जो यूनिवर्सिटीज में टेक्नोलॉजी बनाई जाएगी, उसको कैसे हम कॉमर्शियली उसको वायबल बनाएं, इस पे हमें काम करना है, जिससे कि जो विश्व की समस्याएं हैं तो उसको हम भारत में टेक्नोलॉजी डेवलप करके उसको हम कैसे सॉल्यूशन निकालें। जो थर्ड पिलर है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है, वो है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। अब ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस कैसे आएगी? सबसे पहले हमारे यहाँ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, जो कि बहुत कुछ हो रहा है। आज अगर आप रोड की बात करें, भारत जो है विश्व का लार्जेस्ट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आज बन चुका है। तो इसमें ग्लोबल जो इन्वेस्टर्स हैं भारत की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि हमारी पॉलिसीज स्टेबल हैं और हमारा जो एक पॉलिटिकल सिस्टम है बहुत उसमें स्टेबिलिटी है, और हमारे पास आज एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग तैयार कर रहे हैं, उसमें बहुत कुछ हो चुका है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इतने सारे काम हो रहे हैं, और जो भारत का एक रिफॉर्म का जो मुहिम चली है वो बिल्कुल आगे चलती जा रही है। और डिजिटल कनेक्टिविटी की बात करें, जिसमें कि 1.4 बिलियन 140 करोड़ के देश में 100 करोड़ मोबाइल से वो लोग कनेक्टेड हैं, तो डिजिटल कनेक्टिविटी हमारे गांव तक है, लास्ट माइल तक है। ग्लोबली कॉम्पिटिटिव जो हम बनने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हीं सब चीजों से होता है। और इंडिया ने कई ऐसे रिमार्केबल इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे कि डिजिटल इंडिया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसमें समय से पहले ही इन सब चीजों का ऐलान किया था, और आज उसमें कई सारी प्रोग्रेस हो चुकी है। जैसे डिजिटल इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, स्किल इंडिया है, मेक इन इंडिया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ये जो सारे रिफॉर्म्स हैं, इससे जो है हमारे जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स इंडिया में आ रहे हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आर्बिट्रेशन के फील्ड में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के फील्ड में हमने काम किए हैं। इंडिया जो है अपने आप को एक वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग इनोवेशन इकोसिस्टम बनने की तरफ इसमें काम कर
1: हो
0: रहा
1: रहा
0: है।
1: है। डॉक्टर मेहता, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे भारत में नवाचार, उच्च कौशल रोजगार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने वाले ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं महासचिव डॉक्टर रंजीत मेहता। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।

0: एकल वादक के रूप में प्रस्तुति दी है, जिनमें विष्णु दिगंबर जयंती, शंकरलाल संगीत समारोह, सेहर तथा नैना देवी स्मृति समारोह प्रमुख हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा वी ब्रिंग यू अ फ्लूट रिसाइटल बाय पंडित कैलाश चंद शर्मा। पंडित कैलाश चंद शर्मा वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू द वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक व्हाइल ही वॉज स्टिल अ चाइल्ड। Inspired by the sounds that emanated from this instrument made of bamboo, he started learning the flute from Sri Prakash N. Saxena at Gandharva Mahavidyalaya, New Delhi. Later, he also learnt the nuances of the Indian classical music from Pandit Vinay Chandra Maudgalya. The flute became an integral part of

0: ये था पंडित कैलाश चंद शर्मा द्वारा बजाया गया राग मालगुंजी। पंडित कैलाश चंद शर्मा अपने कार्यक्रम का समापन राग मिश्र खमाज से कर रहे हैं। मध्य लय रचना दादरा ताल में निबद्ध है।
1: यू जस्ट हर्ड राग मालगुंजी। पंडित कैलाश चंद शर्मा कंक्लूड्स हिज फ्लूट रिसाइटल विद राग मिश्र खमाज। मध्य लय कॉम्पोजिशन इज सेट टू दादरा ताल।

0: अभी आप सुन रहे थे पंडित कैलाश चंद शर्मा का बांसुरी पर बजाया राग मिश्र खमाज। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे पंडित विनोद लेले। इसी के साथ आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा अब यहीं संपन्न होती है।
1: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
2: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल।

0: मीडियम वेव 330.0 यानी 900 किलो हर्ट्स पर तथा FM 100.1 मेगा हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। यह कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जा रहा था। मीडियम वेव 330.03 यानी 909 किलो हर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आप हमारे प्रसारण FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ के साथ न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार।

0: भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी महत्वपूर्ण बदलाव का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक सहयोग ढांचे को अंतिम रूप दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने आज ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज कहा कि तीसरा वार्षिक भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की बेहद सफल राजकीय यात्रा का समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता एंगस टेलर से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड MCG का भी दौरा करेंगे। दोनों नेता इस अवसर पर ऐतिहासिक भारत ऑस्ट्रेलिया खेल सहयोग रोडमैप का अनावरण भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन तीनों सीटों के लिए 24 जुलाई को मतदान होगा। ये तीनों नेता हाल ही में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। केंद्र सरकार जल्द ही फ्लेक्स फ्यूल वाहनों के लिए E85 ईंधन शुरू करने की योजना बना रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इसकी कीमत E20 पेट्रोल से लगभग 20 रुपए प्रति लीटर कम होगी। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री पुरी ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत देना और सरकार के एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को बढ़ावा देना है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। ईरान ने अमेरिका पर आज बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि ये कार्रवाई उस पर हमले समाप्त करने की अमेरिकी सेना की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुई। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा ने फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में आज नोस्कोवा ने मार्ता कोस्तियू को 6-4, 6-4 से हराया। महिला सिंगल्स का फाइनल मुकाबला 11 जुलाई को लिंडा नोस्कोवा और कैरोलिना मुचोवा के बीच खेला जाएगा। वहीं पुरुष सिंगल्स के पहले सेमीफाइनल में कल आर्थर फेरी का मुकाबला अलेक्जेंडर ज्वेरेव से और मौजूदा चैंपियन यानिक सिनर का सामना नोवाक जोकोविच से होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 क्रिकेट मुकाबला ब्रिस्टल में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में 3 विकेट पर 94 रन बना लिए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड 2-0 से आगे है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। पहले मुकाबले में आज रात 1:30 बजे बोस्टन में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कल देर रात स्पेन और बेल्जियम आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Abhineet Shukla.

हो रहे हैं, यहीं पर संपन्न होती हमारी आज की सायंकालीन प्रसारण सभा। कल प्रातः 5:53 पर हम अपनी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। शुभ रात्रि। जय हिंद।